ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: Good morning. You're listening to RM2 Radio Mastik 6 AM. छह बजे के संक्षिप्त समाचारों के साथ उपस्थित है स्टूडियो में अभी उदय। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार मनीषमा, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। सुबह के 6 बजे की पहली फ्लैश न्यूज में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है। नए रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय या फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। फिलहाल इसके लिए केवल 3 से 6 पॉइंट्स ही काटे जाते हैं। संबंधित मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण किया कि ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर कुल कितने चालान काटे जाएंगे। 71 साल के मारी नुवेली लोरेंट और उनके होने वाले दामाद लिनली आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी बनाया गया। उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बेजटोंबू में लिनली आजी के घर पर छापा मारा था। कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थी। जब्त की गई ड्रग्स की बाजार कीमत लगभग 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान में बातचीत की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला, उसके रेडर सर्वेलेंस टावर को उड़ा दिया। अमेरिका ने इस हमले का वीडियो भी जारी किया है। और अंत में मौसम का हाल।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
1: आम हालत, दक्षिण में पाए जाने वाले बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है, जबकि मास्केरेंस की दक्षिण दिशा से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के उभरने की वजह से ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज सुबह दक्षिण, पूर्व और सेंट्रल प्लेटो पर हल्की सी बारिश होगी, जबकि दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर रह रहकर थोड़ी सी बरसात हो सकेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर में न जाने की मांग की जाती है, खासकर पश्चिमी तथा दक्षिण

यानी लगूनों के उस पार। अगर तापमान के बारे में बात करें तो सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्तीय इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। आज सूर्योदय 6:40 पर जबकि सूर्यास्त शाम के 5:37 पर।

0: भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।
1: नमस्कार, सुबह की बेला है, 6:05 हुए हैं। सुबह का ये प्यारा सा नजराना आप लोगों के नाम करते हैं हम। सुबह का ये नजराना होता है ऊपर वाले की देन, और दिन देते हैं जब ऊपर वाले हमें इस तरह से सुबह का ये नजराना, तो उन्हें शत शत प्रणाम, शत शत धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नई उमंग के साथ, नए एहसास के साथ आप इस सुबह की शुरुआत कीजिएगा, इस दिन की शुरुआत कीजिएगा। मन में सकारात्मकता लिए आप इस सुबह की शुरुआत कीजिए, दिन आपका बहुत ही मंगलमय जाएगा। आप लोगों के लिए खुशहाली की दुआएं हमारे दिल में अवश्य है। सुबह की इस बेला में चलिए हम सर्वप्रथम सुनते हैं वैदिक वाणी कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस के डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री द्वारा।
2: लीजिए सुनिए आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।
3: प्रिय श्रोतागण, सादर नमस्ते। हमारा सौभाग्य है कि आज स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत से पधारे हुए श्रद्धेय प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी। आप खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष रहे हैं और हैं अभी तक, और पूर्व प्रोफेसर गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी हरिद्वार के वेद विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। प्रोफेसर जी सुवक्ता हैं, पूरे भारतवर्ष में आपके व्याख्यान होते रहते हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं। अब तक 20 पुस्तकों का आपने प्रणयन किया हुआ है, ईशोपनिषद पर, रामायण पर, वेद पर, संस्कृत विषय कई पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। हम स्टूडियो में प्रोफेसर जी का स्वागत करते हैं, और श्रोताओं आज का वैदिक संदेश आप प्रोफेसर जी द्वारा सुनिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी।
4: ओम सत्यम बृहद्रितमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञ पृथिवीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नीरुं लोकं पृथिवीं कृणोतु भद्रमिच्छन्त ऋषयस्वर्विदस्तपो दीक्षामुपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु। मित्रों, यह अथर्ववेद के 12वें कांड का भूमि सूक्त का मंत्र है। बहुत सुंदर मंत्र है। इस मंत्र के अंदर भगवान से हम प्रार्थना करते हैं। वेदवाणी ये बताती है कि कोई भी देश कैसे प्रोग्रेस उन्नति कर सकता है। देश का नाम केवल उसकी मिट्टी से नहीं बल्कि उसके निवासियों से होती है कि उनके निवासियों के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। इस वेद मंत्र के अंदर सबसे पहले ऋषि बात कहता है सत्यम, हमारा जीवन कैसा हो, सत्य से युक्त हो। हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे हमारे देश के ऊपर कोई नुकसान पहुंचता हो। पहला गुण देश के निवासियों के अंदर वेद माता कह रही है कि सत्यमय हमारा जीवन हो। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं सत्यम वद, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्वाध्यायान मा प्रमद। पहला गुण राष्ट्र के निवासियों के अंदर सत्य का

होना चाहिए। दूसरा गुण बताया गया है बृहद। बृहद का मतलब है परिश्रम की भावना, मेहनत करनी चाहिए सबको। कोई एक व्यक्ति मेहनत करता है और बाकी सब वैसे ही आलसी प्रमादी बन करके बैठे रहें तो देश का विकास नहीं हो सकता है। ये तो सब मिल करके यदि काम करते हैं तो बृहद परिश्रम की भावना सबके जीवन में होनी चाहिए। रितम का मतलब है यूनिवर्सल लॉज, जो हमारे संसार के अंदर किसी भी देश के अंदर जो ऐसे नियम हैं जैसे सूर्य का उदित होना, चंद्रमा को शीतलता देना, ये सब रितम नियम कहलाते हैं। उग्रम का अर्थ होता है कि हमारे जीवन के अंदर हमारा जीवन ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, कोई किसी प्रकार का कष्ट किसी को न हो, ऐसी बात वेद का मंत्र ये कहता उग्रम। अगली बात कहता है किसी भी राष्ट्र के निवासियों के अंदर दीक्षा की भावना होनी चाहिए। दीक्षा का मतलब है विल पावर, हमारी संकल्प शक्ति मजबूत हो। हमारा ये जीवन का ध्येय होना चाहिए प्रत्येक राष्ट्र के निवासियों का कि कोई भी काम हम करेंगे तो आई विल डू इट, मैं इसको करके रहूँगा, अच्छे काम मैं करके रहूँगा और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाता रहूँगा। इसको हमारे यहाँ दीक्षा कहा गया है। अगली बात इस वेद मंत्र के अंदर कही गई तपह। तपस का मतलब है किसी भी काम के करने में कोई भी बाधा आती है, कोई कष्ट आती है तो उसको सहन करना। मान लीजिए एक बच्चा कोई स्कूल में पढ़ता है, कोई कष्ट है उसको, कोई दुख है, तो हमारा ये कर्तव्य होना चाहिए कि बेटे आप अपने पढ़ाई के अंदर किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना आने दो, आगे बढ़ते रहो। जीवन में हर क्षेत्र में बाधा आती है लेकिन उस बाधा को, उस विपत्ति को हटा करके आगे बढ़ने का नाम ये व्रत कहलाता है, ये तपस कहलाता है, ये दीक्षा कहलाती है। रितम सत्यम तपह, रित का आचरण, सत्य का आचरण। और अगली बात कही गई है तपह ब्रह्म। ब्रह्म के मतलब है कि हमारा जीवन जो है आस्तिकता से ओतप्रोत हो, हम अपने जीवन के अंदर बहुत निराश न हो, हताश न हो, हमें आगे बढ़ने के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। कुछ ऐसे गुण इस वेद मंत्र के अंदर बताए गए हैं। अगले मंत्र के अंदर भी बड़ी सुंदर बात कही गई है कि हमारे ऋषियों ने किसी भी राष्ट्र की उन्नति करने के लिए दो और प्रमुख गुण बताए हैं, भद्रमिच्छन्त ऋषयस्वर विदस तपो दीक्षाम उपन। तप और दीक्षा की बात उन्होंने कही कि हर फील्ड में चाहे कोई भी काम हो उसमें तपस्या की भावना, मेहनत की भावना, परिश्रम की भावना, ये बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। इसलिए मित्रों अथर्ववेद का ये भूमि सूक्त का पहला मंत्र बहुत ही कमाल का है कि राष्ट्र, कोई भी नेशन डेवलप तभी हो सकता है जब राष्ट्र के निवासियों के अंदर, उनमें रहने वाले लोगों के अंदर ये सारे कुछ क्वालिटीज़, कुछ गुण होने चाहिए। सत्य का आचरण हो, बृहत का मतलब है परिश्रम की भावना हो, उग्रम का मतलब है हर व्यक्ति ओजस्वी हो, तेजस्वी हो। हमारे यहाँ तो ये प्रार्थना की जाती है सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुनिया का कोई भी राष्ट्र का निवासी कोई दुखी न हो, कोई हताश न हो, कोई निराश न हो, उस सब का स्वास्थ्य उत्तम हो। हमारे यहाँ इसलिए ये बात कही जाती है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी दुनिया जो है एक फैमिली की तरह से है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है सारी दुनिया एक कुटुंब माने एक फैमिली की तरह से है। जैसे फैमिली में बच्चे रहते हैं, पत्नी है, पति है, माता पिता हैं, सब मिलकर के काम करते हैं, ऐसा ही हमारे यहाँ पर पूरे जितने भी देश हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनके निवासियों के लिए बहुत प्यारी शिक्षा दी गई है। हमारी औषधियाँ अच्छी हो, हमारी वनस्पतियाँ अच्छी हों, हमारा जितना भी देश की नदियाँ अच्छी हों, और हम इसलिए प्रार्थना करते हैं द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति, अर्थात द्युलोक में शांति हो, अंतरिक्ष लोक में शांति हो, पृथ्वी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उनके अंदर भी पीस हो, उनका भी माइंड अच्छा हो, किसी प्रकार से कोई आपसी मतभेद न हो, भाईचारा सबके साथ मिल करके रहें। ये वेद का मंत्र यूनिवर्सल ब्रदरहुड की शिक्षा देता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेद का जो ये नॉलेज है, वैदिक वाणी का ये जो संदेश है, वो यही हमको सिखाता है कि हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व भ्रातृत्व की भावना रखें, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखें। जो लोग केवल अपना अपना हित सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं, वो कृपण होते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले होते हैं उनके लिए सारी दुनिया एक फैमिली की तरह से होती है। हमारे भाई भी आपस में प्रेम से रहें, हमारी बहनें आपस में प्रेम से रहें, किसी प्रकार का कोई वैमनस्य की भावना हमारे जीवन के अंदर न हो। इसलिए अथर्ववेद का ऋषि कहता है

0: है, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षण माँ स्वसारम उतस्वसा, भाई भाई से द्वेष की भावना न रखें, बहन बहन से देश की भावना रखें, आइए हम सब मिल करके एक परिवार में जैसे रहते हैं ऐसे ही राष्ट्र के अंदर हम रहें, जिस राष्ट्र के अंदर हम रहते हैं उस राष्ट्र को हम सर्वोपरि जाने सर्वोपरि माने, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं निरा पशु और मृतक समान है। जननी जन्म भूमिश्च सर्वगादपि गरीयसी, जिस राष्ट्र के अंदर हम रहते हैं जिस देश के अंदर हम रहते हैं उसके प्रति हम वफादार बन करके रहें श्रद्धालु बन करके रहें, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके बताई गई है। तो वेद का ये संदेश यूनिवर्सल है, सार्वजनिक है, सार्वकालिक है, सार्वभौमिक है। हमारे ऋषियों ने कहा था कि सारे लोग जो हैं वो सत्य का आचरण करें, सब लोग मेहनत करने की भावना सबके अंदर में हो, सबके अंदर सबके सुख की भावना हो, भाईचारे की भावना हो, हम एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम के साथ रहें। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मैं प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखूं, कोई मुझे हीन दृष्टि से न देखें। समाज के अंदर रहने वाले राष्ट्र के अंदर रहने वाले सब लोग एक हैं, एक समान होने चाहिए। ये वेद का मंत्र बहुत ही सुंदर उपदेश देता है, आइए इस वेद मंत्र को हम अपने जीवन के अंदर अपनाएं। सत्यम बृहद धृतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयंती, ये पृथ्वी को धारण करने वाले ये तत्व हैं। पृथ्वी तो जड़ है लेकिन राष्ट्र के अंदर जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं से किसी देश का निर्माण हो सकता है, इसलिए हमारे अंदर ऐसे गुण होने चाहिए और हम अपने राष्ट्र को जिस भी देश में हम रहते हैं वो राष्ट्र हमारा सर्वोपरि है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, और हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्र देवो भव, अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति, अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा भेद की भावना रखना, ये दुनिया में सबसे बड़ा उपदेश वेदवाणी के माध्यम से दिया गया है। अथर्ववेद का ये जो 12वें कांड का ये जो सूक्त है, पहला ही जिसका ये मंत्र मैंने अभी आपके सामने रखने का प्रयास किया, इसमें लगभग 60-62 मंत्र हैं, इसमें पूरे की पूरी नेशन बिल्डिंग की जो है वो थ्योरी बताई गई है, सिद्धांत बताया गया है, वृक्षों में वनस्पतियों में औषधियों में प्राणी मात्र के प्रति हमारा भाईचारा हो तभी हमारा इकोलॉजी सिस्टम भी बहुत सुंदर बन सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। आप सब ने मेरे विचारों को बड़े ध्यान से सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, धन्यवाद आप सबका। ओम शांति शांति शांति।
1: श्रोताओं, अभी आपने आदरणीय प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री जी को सुना, कार्यक्रम को सजाया श्रीमती अंजू ने, आपने सुना, सबको धन्यवाद, नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम वैदिक वाणी।

0: MBC Radio, 24 hours a day.
1: इस समय सुबह के 6:17 हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस आप लोगों के लिए विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्यूपीप के निवासियों को सूचित करता है कि गाफ्रे स्ट्रीट, रूट जॉर्डन, ऑगस्ट एनुफ स्ट्रीट, लिसले जेओफ्रे स्ट्रीट, बेनांदिन दे सेंट पियर स्ट्रीट, दारूटी दे ग्रैंड प्रे स्ट्रीट, कॉलेज लेन और आसपास के इलाकों में आज रविवार 7 जून को सुबह 8:30 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर फोंजुसाक खुशतेया के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि बाजाल्ट में और आसपास के इलाकों में वामोंग मोसेलमलंडन टावर के एक भाग में आज रविवार 7 जून को ही सुबह 8:30 से दिन के 3:30 तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। गांवे के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसेल मोनू दाली, जेरानियम रोड

0: और अदोल्फ डुप्लेविट्स इलाकों में आज रविवार 7 जून को सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। कोंफुको के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि टुकू रोड, रिजर्वर रोड, एम्पासनलोल, आइरिस लेन नंबर 1, नंबर 2 और मोसेलमा ऑंग्रे कातान दोहा प्राइमरी स्कूल, बीआरए गंगादीन मेटल इंडस्ट्री, वेनन लेन, बाजा लेन, मोसेलमा रामाना और कोंफुको रोड के एक भाग में, बिस्नाथ लेन के एक भाग में और गालिया रोड के एक भाग में तथा कॉन्स्टेंटिन लेन में और आसपास के इलाकों में आज रविवार को सुबह अगले रविवार 14 जून को सुबह 8:30 बजे से दिन के 5 बजे शाम के 5 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। गौबे के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि वैंप के रोड, गौबे और ट्राइबल एसेट और मोविला के आसपास के इलाकों में आज रविवार 7 जून को दिन के 11 बजे से 2 बजे तक मरम्मत कार्य होंगे और इस वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर इन सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही ये काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे अपना इंतजाम करने की मांग करती है। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 6:21 हुए हैं। सुनते हैं आज का सत्यात प्रकाश पर आधारित ये वार्ता। सुनिएगा मॉरिशस आर्य रवि वेद प्रचारिणी सभा के आचार्य केदू जी की प्रस्तुति में।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारण सभा की ओर से प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप समस्त श्रोताओं को मेरा सप्रेम नमस्ते। आज का विषय है सत्या प्रकाश के द्वितीय समुलास में बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा एवं चरित्र निर्माण। एक बच्चा ही एक देश का भविष्य का नागरिक बनता है। अतः यदि हमें एक स्वच्छ समाज में रहना है तो हमें अपने बच्चों का शारीरिक आत्मिक एवं मानसिक निर्माण ठीक रूप से करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी ने इस विषय पर बहुत ही विस्तृत रूप से सत्या प्रकाश के द्वितीय समुलास में वर्णन किया है। वे लिखते हैं, प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान। धन्य वह माता है जो गर्भाधान से लेकर जब तक पूरी विद्या न हो तब तक सुशीलता का उपदेश करें। अर्थात एक बच्चे का शारीरिक विकास के साथ साथ उसका चरित्र निर्माण माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। इस कारण सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुलास में दोनों माता पिता को उपदेश दिया गया है कि गर्भाधान से पहले, बीच और बाद भी सात्विक और पौष्टिक पदार्थों का ही सेवन करें तथा सुशीलता व शांत स्वभाव को अपनाकर सभ्य व्यवहार करें। जब बच्चा गर्भ में हो तो माता को अति सावधानी से भोजन करनी चाहिए। इस प्रकार का भोजन सेवन करें जो बुद्धि, बल, रूप, आरोग्य, पराक्रम, शांति आदि गुणों को प्रदान करें। माता जिस प्रकार व्यवहार व विचार करती हैं उसका प्रभाव गर्भस्थ शिशु पर पड़ता है।

अतः गर्भवती माता का यह परम धर्म होता है कि वह सदा सदाचरण करें, हमेशा सत्य बोलें और अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथों को पढ़ें तथा अच्छे धार्मिक एवं सकारात्मक लोगों का संग भी करें, जिससे उनके विचार में भी सकारात्मकता भाव उत्पन्न हो। माता की मानसिक स्थिति का पूरा प्रभाव गर्भ में स्थित बच्चे पर पड़ता है, अतः संतान का चरित्र निर्माण का प्रारंभ माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। जन्म के बाद भी माता का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। बालक को 5 वर्ष तक माता अपने सानिध्य में सुशिक्षा प्रदान कराती हैं। माता बच्चों को वर्णों का सही उच्चारण सिखाएं, जिससे उनका उच्चारण स्पष्ट हो। साथ ही साथ संतान को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि वे कभी भी कुचेष्टा न करें, सदा सदाचरण करें और बड़ों का सम्मान भी करें। जीवन में शिष्टाचार बहुत महत्व रखता है। किससे कैसी व्यवहार वर्तनी चाहिए यह भी जानना अति आवश्यक होता है। सुंदर वाणी का प्रयोग करते हुए बड़ों एवं छोटों का आदर सम्मान करना बच्चों को सिखाना चाहिए तथा जो सम्माननीय बड़े लोग जैसे माता पिता विद्वान दादा दादी आदि हैं उनके साथ कैसे व्यवहार करनी चाहिए ये सब माता सिखावें। बचपन से ही बच्चों को शिष्टाचार सिखानी चाहिए, इससे उनको सुसंस्कार की प्राप्ति होती है तथा समाज में मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद जी और एक मुख्य विषय को द्वितीय समुलास में प्रस्तुत करते हैं कि संतानों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे वे कभी भी अंधविश्वास की बातों पर न फंसें, कभी भी पाखंडी धूर्त लोगों के जाल में न आने पावें, क्योंकि भय से अविद्या उत्पन्न होती है तथा अविद्या से कभी भी किसी का कल्याण नहीं हुआ है। एक बालक के लिए 3 मुख्य गुरु होना अति आवश्यक है। शतपथ ब्राह्मण का वचन प्रस्तुत करते हुए ऋषि लिखते हैं, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। यदि एक बालक के 3 उत्तम शिक्षक अर्थात माता पिता एवं गुरु धार्मिक विद्वान हो तो निश्चित रूप से वह बालक ज्ञानवान होता है। ऋषि लिखते हैं, जन्म से 5वें वर्ष तक बालकों को माता, 6ठे वर्ष से 8वें वर्ष तक पिता शिक्षा प्रदान करें और 9वें वर्ष के प्रारंभ में द्विज अपने संतानों का उपनयन करा के आचार्य कुल में भेज देवें। कहने का भाव यही है कि जन्म से माता संतान को सुशिक्षा प्रदान करें, परंतु विद्यालय में प्रवेश होने से पहले पिता का भी कर्तव्य होता है कि वह संतान को शिक्षा प्रदान करें। पिता भी समय निकालकर बच्चों को व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करें, तभी संतान गुरु से विद्या प्राप्त करने योग्य होता है। आज की आधुनिक युग में भी सत्यार्थ प्रकाश की द्वितीय समुलास का बड़ा महत्व है। हमारा भविष्य हमारे संतान पर आश्रित है। यदि वे सुशिक्षित होने के साथ साथ संस्कारी एवं सदाचारी होवें तो निश्चित रूप से राष्ट्र का विकास हो सकता है। माता पिता को अपने बच्चों को यदि कुछ देना है तो वो है उनका समय, स्नेह एवं सुशिक्षा। बच्चों का मस्तिष्क कोरा कागज के समान रहता है, जो उनको सिखाया जाएगा वही वे ग्रहण करेंगे। सुसंस्कार देकर माता पिता एवं अध्यापक संतानों का सुनिर्माण करें ताकि वे भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सकें। एक सभ्य समाज में ही रह करके ही समाज उन्नत हो पाता है। इसलिए संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करते हुए ऋषि दयानंद जी लिखते हैं, मात्रा शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा।
जो

0: माता पिता अपने बच्चों को विद्या की प्राप्ति न कराते हों, वे अपने संतानों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। उनके संतान समाज में हमेशा तिरस्कृत होते हैं, जैसे हंस के बीच में बगुला। अतः हम अपने संतानों के लिए कुछ समय निकालकर धार्मिक शिक्षा एवं व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करें, यही सभी अभिभावकों का परम धर्म है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: ₹819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: अपने घर ही मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 6:30 हैं। रविवार 7 जून 2026 के प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में सबका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का लिया गया है निर्णय। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन दियापाल सिंह का मानना है कि मॉरिशस को खाने पीने की चीजों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए अपने प्रयासों को और करना होगा ज्यादा तेज। आज 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में सभी के लिए स्वस्थ सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। और विदेश में ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर ढावा बोला, उड़ा दिया उसके रेडर सर्वेलेंस टावर को। नमस्कार और आदाब। प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ, समाचारों को देते हैं विस्तार। जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का निर्णय लिया गया है। नई रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। फिलहाल इसके लिए केवल 3 से 6 पॉइंट्स ही काटे जाते हैं। संबंधित मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण किया कि ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर कुल कितने चालान काटे गए हैं। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार सड़क सुरक्षा की दिशा में इस तरह का मूल्यांकन पहली बार के लिए किया गया है। अब से हर 6 महीने में ये समीक्षा की जाएगी ताकि जरूरत पड़ने पर अलग अलग नियमों के उल्लंघन पर काटे जाने वाले पॉइंट्स की संख्या को बदला जा सके। ज्यादा विस्तार नितुषा जिहा के साथ।
4: 10 जून से गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने पर पकड़े गए चालक के ड्राइविंग लाइसेंस पर अधिकतम 10 अंक दर्ज किए जा सकते हैं। ये कदम मुख्य रूप से उन चालकों को निशाना बनाता है जो गाड़ी चलाते समय फोन हाथ में लेकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हैंड्स फ्री उपकरणों और वाहन में लगे स्क्रीन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।
5: Et non, qui s'est vu potable hands-free, est-ce qu'il s'agit d'un danger, les années se faire?
6: Les années, en effet, vous pensez. Quoi qu'il y ait meilleur, qui s'est vu avec normal, potable normal. Mais me pensez, il est toujours, parce qu'il est sur l'attention, il n'est pas 100% de la route.
5: Et vous utilisez le téléphone hands-free au volant?
7: Non, je n'utilise pas du tout. On dit manque de concentration.
4: साल की शुरुआत में लागू किए गए पेनाल्टी पॉइंट सिस्टम को और

0: कड़ा किया जा रहा है।
1: Ça, amendement qui peut rentrer en vigueur à partir du 10 juin, c'est qui concerne seulement ban ça qui peut servir téléphone handheld. Mais dire on peut trapper téléphone là dans l'armée, soit on peut recevoir un message, on peut faire un message, ou bien on peut faire une call, ou bien on peut recevoir une call. Le moment qui vous trappe dans l'armée, soit pour get message ou bien pour faire un call, recevoir une call, là il vient une offense. Sous section 123AE du Road Traffic Act.
0: वहीं वाहन चलाते समय टेलीफोन पर बात करने के लिए हैंड्सफ्री उपकरणों के उपयोग पर फिलहाल रोड ट्रैफिक एक्ट के तहत 3,000 रुपए का जुर्माना निर्धारित है।
1: Sien jimun pe servi un kit mélib, li pe conduire sur le toit, ou bien un hands-free equipment, microphone, tout ça, li pe une amende de 3000 roupies. Li toujours une offense. Il y a une amende de 3000 roupies, mais il n'y a aucun point qui monte sur la licence.
0: Chahe hands-free call ho, ya vahan chalate samay haath mein phone lekar baat karna, dhyan bhatakne ka har ek second gambhir parinam la sakta hai.
2: और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात की चर्चा की है कि बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने कम से कम यही इच्छा जताई है। एएमबी के महानिदेशक नवीन दयापाल सिंह का मानना है कि मॉरिशस को खाने पीने की चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। उनके अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की जा चुकी है, जैसे कि सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करना, किसानों के लिए मजदूरों की उपलब्धता आसान बनाना, बीजों और खादों पर सब्सिडी देना, लैंड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए खेती के लिए और ज्यादा जमीन उपलब्ध कराना। हमारी सहयोगी शैली नियाबन ने एएमबी के महानिदेशक नवीन नदियापाल सिंह से बात की, उनको सुनते हैं विवरण याचना मिश्रा का।
3: मंत्रालय खेतीहरों को पानी दिलाने के लिए काम कर रहा है, कर्मचारियों और खाद तथा बीज आदि के लिए सब्सिडी पर भी काम कर रहे हैं। यही उम्मीद है कि बजट में खेतीहरों के लिए कई कदम प्रस्तावित हो ताकि स्थानीय पैदावार को बढ़ावा मिले। वर्तमान में देश अपनी खाद्य आवश्यकताओं का लगभग 60-70% आयात करता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महाप्रबंधक के अनुसार सरकार का लक्ष्य इस निर्भरता को धीरे धीरे कम करते हुए मध्य अवधि में आयात के स्तर को लगभग 40% तक लाना है। SIT, रोजबेल शुगर स्टेट, लैंडस्कोप आदि के जरिए कई ऐसी जमीन है जो हम खेतीहरों को प्रदान कर सकते हैं जो कई सालों से खेती करते हैं। हम 2030 तक आलू, प्याज आदि को लेकर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड भंडारण क्षमता को मजबूत करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। स्थानीय उत्पादन में अपेक्षित वृद्धि को समर्थन देने के लिए शीत भंडारण यानी कोल्ड स्टोरेज क्षमता के विस्तार की एक परियोजना प्रस्तावित की गई है। एग्रो प्रोसेसिंग के तहत हम उन खेतीहरों की पैदावार लेंगे जो अधिक मात्रा में हैं और जिनके जाया होने का खतरा है। हम सामान को प्रोसेस करेंगे। बेलरीव में हम इन सामानों को आम जनता तक सही दाम में भी पहुंचाना चाहते हैं। इन निवेशों से उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, विशेष रूप से चक्रवात, सूखे या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं और समस्याओं जैसी परिस्थितियों के दौरान।
2: इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज तथा एग्रो प्रोसेसिंग की परियोजनाओं के लिए सरकार को लगभग 375 मिलियन रुपए की बजट का प्रस्ताव पहले से ही भेजा जा चुका है। और जिस तरह से हमने सुर्खियों में इस बात का उल्लेख किया है कि आज 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है, इसी संदर्भ में सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं। इस साल का विषय रखा

0: कहा गया है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेव फूड एवरीवेयर, यानी बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। निर्मा नारायण रेड्डी की रिपोर्ट पर विवरण याचना मिश्रा का।
1: विशेषज्ञों के अनुसार खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन तक पहुंच मिलनी चाहिए। मॉरिशस में कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं, जिनमें कीमतों में वृद्धि और आयात पर निर्भरता शामिल है। न्यूट्रिशनिस्ट इतिसाम पोदो के अनुसार संतुलित आहार कई बीमारियों को रोकने में मदद करता है, जबकि स्वस्थ भोजन तक सीमित पहुँच स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। वे बताते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को किसी भी वक्त खाना पीना मिल सकता है जो उसके लिए पर्याप्त मात्रा में हो, पौष्टिक हो और सुरक्षित हो। चार स्तंभ हैं। पहला है खाद्य सामानों का उपलब्ध होना, आर्थिक और वास्तविक पहुंच, उसका पौष्टिक होना, स्वच्छ होना और स्वस्थ होना, और आखिरी है खाद्य सामानों को लेकर स्थिरता बने रहना। कई नागरिकों के लिए खाद्य सुरक्षा एक प्रमुख चिंता का विषय बन गई है, विशेषकर जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण। कई लोग मानते हैं कि अपने बजट के भीतर संतुलित आहार बनाए रखना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो पाया है। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा देश के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है, क्योंकि स्वस्थ और सस्ते भोजन तक पहुंच अभी भी कई मॉरिशनों के लिए एक बड़ी चिंता है।
0: बढ़ते साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखते हुए मॉरिशस अपने कानूनों को और मजबूत कर रहा है। डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, डिजिटल सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाने और कानून को नई तकनीकों के हिसाब से ढालने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट में बदलाव लाया गया है। ये सुधार देश में डिजिटल बदलाव को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यानी कि ITU के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में पूरे अफ्रीका में पहले स्थान पर है और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। हमारी सहयोगी जेनिल येल्लप्पा ने मंत्री अविनाश रामतोहल से बात की, विवरण याचना मिश्रा का।
2: En fait, un document qui est capable de bouger électroniquement et être reconnu, être vérifié par un système douanier.
1: जो दस्तावेजें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इधर से उधर भेजी जा सकती हैं और कस्टम्स विभाग द्वारा जिनका परीक्षण किया जा सकता है, जैसे विदेश से भेजी जाने वाली दस्तावेजों को लेकर आदि, ये अनुमति देता है कि क्लियरेंस मिल पाए। ओरिजिनल दस्तावेजों की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, इससे खर्च भी कम होता है। अफ्रीकी इलाके में पहली बार ऐसी पहल आगे आई है। हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट पर काम किया जो 2000 में अमल में लाया गया, लेकिन इसमें सुधार की सख्त ज़रूरत थी जो हम ला पाए हैं। इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में आसानी होगी।
0: इकहत्तर साल

0: के मारी नुएली लॉरेंट और उनके होने वाले दामाद लिनले आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी बनाया गया। उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बिजटोंबो में लिनले आजी के घर पर छापा मारा था। कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थे। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत लगभग 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। इंटरमीडिएट कोर्ट को यह तय करना है कि डेप्यूटी पोस्टमास्टर कविदेव न्यू के चरित्र से जुड़े सवाल इस मामले में स्वीकार्य है या नहीं। मजिस्ट्रेट मगाली लॉम्बिया ओंरी 10 जुलाई को अपना निर्णय सुनाएंगी। ये मामला 5 जून को फिर से आगे बढ़ा जिसमें कविदेव न्यू पर गैर इरादतन हत्या यानी कि नेग्लिजेंट मैनस्लॉटर का आरोप है। ये मामला अगस्त 2020 में पुद्रदोप के पास टगबोट से गाइटों के पलटने से जुड़ा है जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। अभियोजन का कहना है कि खराब मौसम के बावजूद जहाज को समुद्र में भेजने का निर्णय हादसे का कारण बना है, जबकि बचाव पक्ष ने कुछ सवालों की स्वीकार्यता पर आपत्ति जताई। आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया है। ज्यादा विस्तार पूजा सुकालू के साथ।
1: कविदेव नेवूर पर सगाईतों टग बोट के डूबने के संबंध में लापरवाही से बिना इरादे के हत्या का आरोप लगाया गया है जो अगस्त 2020 में पुद्रदोप तट पर हुई थी और जिसमें 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी। सगाईतों को एमवी वाकाशियो के पुएतेदेसनी में फंस जाने के बाद समुद्र तट की सफाई संबंधी अभियानों के लिए तैनात किया गया था। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उन प्रश्नों पर आपत्ति जताई जिनका मकसद ये पता लगाना था कि जब कर्मचारी उनके आदेशों से असहमत होते थे तब आरोपी किस प्रकार प्रतिक्रिया देते थे। दूसरी ओर अभियोजन पक्ष का मानना है कि इस पहलू को समझना दुर्घटना की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये पहलू जरूरी है। अभियोजन के अनुसार कविदेव नेवूर ने खराब मौसम और समुद्री परिस्थितियों के बावजूद टगबोट समुद्र में ले गया जिससे कथित तौर पर जहाज पलट गया और चालक दल के 4 सदस्यों की मौत हो गई। उनका बचाव वकील नीलकंठ दल्लू कर रहे हैं जबकि कविदेव नेवूर ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है।
0: विदेशी स्तर पर जो आज सुर्खियों में है वो अमेरिका और ईरान के बीच की कोशिशों के ईरान और अमेरिका में बातचीत की कोशिशों के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया और पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला, उसके रेडर सर्वेलेंस टावर को उड़ा दिया। अमेरिका ने इस हमले का वीडियो की भी जारी की है। भारत और अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी इस समय हवाई द्वीप में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर गहन चर्चा कर रही हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये 29वें दौर की वार्ता है और इसमें सैन्य सहयोग को और ज्यादा गहरा बनाने के लिए रास्तों की तलाश की जा रही है। रूस के दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में शनिवार सुबह यूक्रेन के बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले के बाद निवासियों को अपने घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। ये हमला रूस के काफी अंदर तक वार करने की कीव की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बैठक प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। और अंत में मौसम का हाल। आम हालत, दक्षिण दिशा में पाए जाने वाले बादलों का एक झुंड हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहा है जबकि मस्कोविंस के दक्षिण दिशा से एक जोरदार एंटीसाइक्लोन के उभरने की वजह से ठंड महसूस की जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान।

आज सुबह दक्षिण पूर्व तथा सेंट्रल प्रांतों पर हल्की सी बारिश होगी, जबकि दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। रात के दौरान ऊंचे इलाके पर रह रहकर थोड़ी सी बरसात हो सकेगी। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार लगभग 3 मीटर वाली लहरें उठेंगी, अतः दूर समंदर खासकर पश्चिमी तथा दक्षिणी लगुनों के उस पार न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्रांतों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 20 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाके पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। आज सूर्योदय 6:40 पर जबकि सूर्यास्त 5:37 पर।

0: चलिए आखिर में फिर से डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई को और सख्त करने का लिया गया है निर्णय। रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करते पकड़े जाने पर चालकों के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन दयापाल सिंह का मानना है कि मॉरिशस को खाने पीने की चीजों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, इसके लिए अपने प्रयासों को और ज्यादा करना होगा तेज। आज 7 जून को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जा रहा है। इसी संदर्भ में सभी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व पर दिया जा रहा है विशेष ध्यान। और विदेश में ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। पलटवार में अमेरिका ने भी ईरान के कई ठिकानों पर धावा बोला, उड़ा दिया उसके रेडर सर्वेलेंस टावर को। तो देश विदेश की इन्हीं खबरों एवं मौसम संबंधी जानकारियों के साथ ही यह प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। आप लोगों ने ध्यान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तकनीकी मदद के लिए हम कादर को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे शोक समाचार।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

आइए शोक समाचार सुनते हैं। Chemin l'hôpital centre de Flaquemont, Chemin l'hôpital centre de Flaquemont, 87 साल की, 87 years old की श्रीमती रावती जोगू, पैदाशी नाम बंधु, और जिन्हें सब लोग रावती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनके बेटे श्री गुरुदत्त जोगू के घर Chemin l'hôpital centre du Flac से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3 रॉ रोड यूनियन पार्क में 88 साल की, 88 years old की श्रीमती दयालक्ष्मी वेंकटा पिल्ले, पैदाशी नाम पोइनुसामी, और जिन्हें सब लोग सती के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के घर रॉ रोड यूनियन पार्क से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। कौन डोमिनिक रोड पेचिराफ्रे में 68 साल की, 68 years old की श्रीमती मीला रंजीत, पैदाशी नाम दसवा, और जिन्हें सब लोग मीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विशाल रंजीत के घर कौन डोमिनिक रोड पेचिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पेचिराफ्रे

आज दिन के एक बजे उनके बेटे श्री विनय उड़िया के घर एलिमोंग रोड गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बागोश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। विक्टोरिया रोड थ्रू द डुस में 82

श्री देवेंद्र हरिमन, श्री देवेंद्र हरिमन जिन्हें सब लोग देविन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के एक बजे उनकी पत्नी विधवा संजीता हरिमन के घर विक्टोरिया रोड खुदुदुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। और ब्रांच रोड लाल माटी में 76 साल के श्री केदर सरी की सुन जिन्हें सब लोग सुवेश के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दोपहर के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती बृंदा सरी की सुन के घर ब्रांच रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुबह के 7:15 हुए हैं।
2: स्पोर्ट्स न्यूज़
1: सुनने वाले को विकास रामधनी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। खेल समाचारों में आपका स्वागत है। ये बुलेटिन शुरू करते हैं वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के साथ। तैयारी के रूप में कल इंग्लैंड ने 1-0 से जीत हासिल की न्यूजीलैंड के विरुद्ध। कल कई मैच खेले गए, सो इंग्लैंड 1-0। कोच थॉमस टुखेल ने सेकंड हाफ में एक पूरी नई टीम, पूरे 11 खिलाड़ी, नए खिलाड़ी मैदान पे भेजे। सबको मौका दिया गया और ये मात्र गोल स्कोर किया कप्तान हैरी केन ने। सो इंग्लैंड की जीत हुई 1-0 से। अब एक आखिरी मैच वो खेलेगा कोस्टा रिका के विरुद्ध इसी बुधवार को। फिर गुरुवार 11 जून से विश्व कप 2026 शुरू। सह मेज़बान मेक्सिको का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से रात 11 बजे, ये पहला मैच, ओपनिंग मैच खेला जाएगा। और इंग्लैंड का पहला मैच होगा 17 जून को क्रोएशिया के विरुद्ध। इन सब के बारे में सुनते रहिए। नतीजों की ओर बढ़ते हैं। कल के खेले गए मैचों में सऊदी अरब ने पुएर्टो रिको को 3-0 से हराया। कनाडा 1, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 1, हेइटी 1, पेरू 2। बेल्जियम ने ट्यूनिशिया को 5-0 से परास्त किया। बेल्जियम के लिए लियांड्रो थोसा, देकेले राय, केविन डे ब्रून, लुके बैक्यू और रास्किन का एक एक गोल रहा। सो बेल्जियम छा गया है फिलहाल वर्ल्ड कप में। पालेस्टाइन और केन्या वाला मैच रद्द कर दिया गया। पुर्तगाल ने अपनी ओर से चिली को 2-1 से परास्त किया। पुर्तगाल के लिए गोंजालो ग्वेडेस और ब्रूनो फर्नांडेज ऑन टारगेट। इस मैच के 45वें मिनट पर दोनों ओर से एक एक खिलाड़ी को मिला रेड कार्ड। रोमानिया ने अपनी ओर से वेल्स को 2-1 से हराया। यूएसए 1, जर्मनी 2। ये मैच 2-1 से जीत गया जर्मनी के द नेशनल मानचाफ। काई हावर्ट्स और लेरोय साने का एक एक गोल जर्मनी के लिए। फिर पनामा 1, बोस्निया हर्जेगोविना 1, स्विट्जरलैंड भी 1, ऑस्ट्रेलिया 1। स्कॉटलैंड ने बोलीविया को 4-0 से हराया। इंग्लैंड 1, न्यूजीलैंड 0, कैटा 0, एल साल्वाडोर 0, जमैका 0, दक्षिण अफ्रीका 1। और ब्राज़ील ने आज सुबह ही इजिप्ट को 2-1 से हराया। ब्राज़ील के लिए ब्रूनो गिमारेस और एंड्रिक का एक एक गोल। ब्राज़ील 2, इजिप्ट 1, वेनेजुएला 1, टर्की 2। फिर आज सुबह कुछ अन्य मैच खेले गए जिनमें अर्जेंटीना ने ऑन्जुरास को 2-0 से परास्त किया। अर्जेंटीना के लिए लोटारो मार्टिनेज और सिमेओन का एक एक गोल रहा। और आज भी कई अन्य मैच खेले जाएंगे। इस प्रकार आज के प्रमुख मैचों में डेनमार्क का मुकाबला

Ukraine se hai Croatia versus Slovenia, Greece ka mukabla aaj Italy ke squadra azzurra se hai Morocco versus Norway, Ecuador ka mukabla hoga Guatemala se. Itna sab kuch World Cup ko lekar wahan par bhi kai baatein ho rahi hain, kai charchaein ho rahi hain. Iran ki team ke officials ne kaha ki unko USA mein प्रवेश करने से मना किया गया, खासतौर पे उनके कुछ ऑफिशियल्स को, और इस प्रकार पूरी की पूरी टीम अपने खिलाड़ियों और स्क्वाड सहित अब यूएसए पहुंच चुकी है. वे रहेंगे ठहरेंगे मेक्सिको में, और सभी के सभी स्क्वाड 48 देश पहुंच चुके हैं अभी यूएसए, मेक्सिको और कनाडा में, जहां पर ये सभी मैच खेले जाएंगे इसी गुरुवार 11 जून से. इंग्लिश फुटबॉल की बात करें तो लिवरपूल अभी भी सुर्खियों में है. रियो एनगुमोहा को बायर्न म्यूनिख खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बिकाऊ नहीं है, ऐसा क्लब ने कह दिया. एंडी रॉबर्टसन जा रहा है टोटेनहम हॉटस्पर में, और खबर आज सुबह ये भी आई कि कोडी गाकपो के लिए टोटेनहम हॉटस्पर ने 70 मिलियन पाउंड से अधिक का एक प्रस्ताव भेजा है, लेकिन ये खबर कहाँ तक सत्य है इस बारे में सुनते रहिए. वैसे नए कोच इराउला ने कहा कि उनकी कुछ प्रायोरिटीज हैं, कुछ प्राथमिकताएं हैं, जिनमें वर्ड्स और गाकपो को गेंद सप्लाई करनी है अपने अलेक्जेंडर स्ट्राइकर अलेक्जेंडर ईसाक के लिए, और क्लब के साथ नया कनेक्शन चाहिए. इराउला क्या लिवरपूल को फिर जगा पाएगा, देखते रहिए और सुनते रहिए. टेनिस में 19 साल की रूसी खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा बाजी मार गई. फाइनल में उसने क्वालिफायर माजा च्वालिन्स्का को मजा चखाया 6-3 और 6-3 से. 1992 से मोनिका सेलेस के बाद मीरा एंड्रीवा रोलां गारोस जीतने वाली यंगेस्ट खिलाड़ी बन गई है 19 साल की आयु में. इसलिए मीरा एंड्रीवा को हार्दिक बधाई. आज इसी रोलां गारोस टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष फाइनल खेला जाएगा. अलेक्जेंडर जेरेव का टाइम आ गया. फाइनल में उसका मुकाबला आज इटली के फ्लाविओ कोबोली से है. फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप के मोनाको ग्रैंड प्री रेस की रेस आज लगने वाली है. कल रात पोल पोजीशन के लिए जो रेस लगी उसमें किमी एंटोनेली की जीत हुई, यानी वही आज ये रेस पोल पोजीशन से शुरू करेगा. क्रिकेट में एक और टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ 368 रन बना चुकी है 3 विकेट गंवाकर. ये पहला टेस्ट मैच कल आरंभ हुआ. पहले दिन की समाप्ति तक 368 रन बन चुके थे और केवल 3 विकेट के नुकसान पर, किंतु 2 सेंचुरीज भी बनी. केएल राहुल ठीक 100 रन बनाकर आउट हुआ. शुभमन गिल 103 पर अभी नॉट आउट है. तो दूसरी ओर भारत के युवा सेंसेशन 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को टी ट्वेंटी स्क्वाड में जगह मिल गई है. इंग्लैंड और आयरलैंड 2 का वो हिस्सा बन गया है, और भारत के इतिहास का हिस्सा भी वैभव सूर्यवंशी बन गया. सबसे जवान खिलाड़ी 15 साल की आयु में टी20 स्क्वाड का हिस्सा बन गया है. स्थानीय तौर पर आज रविवार की सुबह 9 बजे से कौबानन ग्रांबुआ के फुटबॉल मैदान में एट असाइड फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू किया जा रहा है. सभी मैच आज सुबह 9:30 बजे से शुरू किए जाएंगे. सेमीफाइनल और फाइनल अगले रविवार 14 जून के लिए रखे गए हैं, यानी सारे प्रीलिम्स और क्वार्टर फाइनल राउंड आज ही संपन्न किए जाएंगे. सुबह 8-9 के बीच रजिस्ट्रेशन जारी रखा जाएगा, और ये 8 साइड टूर्नामेंट आयोजित किया गया है बॉशेरी ग्रांबुआ ला फ्लोरा और रिविया जी पोस्ट के टी बेल्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा. आज सुबह 8 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू. सो वर्ल्ड कप जारी है. फीफा वर्ल्ड कप 2026 गुरुवार 11 जून से 19 जुलाई के बीच. ओपनिंग मैच 11 जून की रात 11 बजे मॉरिशस समय अनुसार मेक्सिको वर्सेस दक्षिण अफ्रीका. सुनते रहिए और मैं आज्ञा दीजिए. नमस्कार और शुभ दिन.

0: 8:30 बजे नाडेस रोड हाईलैंड्स फिनिक्स के हाईलैंड्स राजपूत बाल शिक्षा मंदिर में सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में यज्ञ और भजन का आयोजन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस रविवार 7 जून को मुका आर्य समाज बॉडेजामोहत आर्य समाज में सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।
1: MBC Radio 24 hours a day.
2: इस समय सुबह के 7:10 हुए हैं। आप लोगों के लिए सीबी की ओर से कुछ विज्ञप्तियां पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड प्लेनवेयर के निवासियों को सूचित करता है कि रू कलकत्ता, रू मद्रास, रू सेरोंग, रू महाराता और इन गलियों के आसपास के इलाकों में तथा लारू मागों के एक भाग में आज रविवार 7 जून को सुबह 8:30 बजे से दिन के 1 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। प्लेनवेट के ही निवासियों को सीबी सूचित करता है कि रू कनाल बौतस्त, गुन कारिकाल और असन उसन गलियों में आज रविवार 7 दिसंबर को सुबह 8:30 बजे से दिन के 4 बजे तक इन गलियों में और आसपास के इलाकों में मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। फिर लातू केनिंग के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि अवेन्यू लातू केनिंग, अनिमोन, फ्लक्स, मिल्टीप्लियन, मुगे, जास्मिन, बोइनिया, आद्रियानम, पोचुलाकास, जिनिया, मियोजोटिस, पेटुनिया, क्रोटन, इबिस्कुस, ग्लाएल, आयरिस और जेरानियम एवेन्यूज में आज रविवार 7 जून को ही सुबह 8:30 बजे से दिन के 3:30 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। इस काटी हुई बिजली की सप्लाई को मरम्मत कार्यों के बाद सभी इलाकों में बिना पहले से सूचना दिए ही फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। तो ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से।
3: On the hour, every hour, Radio Mauritius.
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
2: तो बस लेकर आए हैं सुबह का नजराना आपके लिए। समय 7:13 हुए हैं। हमारा आपका साथ है 9 बजे तक। हमें सुरेखा आपका साथ दे रहे हैं। सुबह का ये नजराना आप लोगों के लिए बहुत मंगलमय रहे। सुबह ये है संडे की और संडे की ये सुबह आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहे, बहुत ही सफल रहे, यही हमारी दुआ है। और खुश खुश रहना मत भूलिएगा। खुश रहने का ये मिजाज बहुत प्यारा सा होता है, इसलिए आप भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रहने के बहाने दिया कीजिए। चलिए आप लोगों के मनोरंजन के लिए जो गाने रखे हैं हमने, उन गानों में से एक आपको पहला वाला सुनवाते हैं। ये है वारिस मूवी का गाना। चलिए साथ मिलते हैं, गुनगुनाते हैं, इस प्रोग्राम का मजा लेते हैं।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: इस समय 7:19 हुए हैं। चलिए कुछ और विज्ञप्तियां हैं सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से, चलिए हम आपके लिए पढ़ते हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कौंसुना, कौंदुमास, पावे, पेचित काबान और यूनिटे के निवासियों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से आज रविवार 7 जून को सुबह 8:30 से 9 बजे तक और दोबारा दिन के 2 बजे से 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। और इसी वजह से कौंदुमास में भी आज रविवार 7 जून को सुबह आठ बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बेलमौ के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि क्रीमेशन रोड और आसपास की गलियों में आज रविवार 7 जून को सुबह 8:15 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। पॉइंट डी फ्लैक के निवासियों को सीबी सूचित करता है कि मोसिलमो गल्फ और आसपास के इलाकों में आज रविवार 7 जून को सुबह के 8:15 से शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मोका के निवासियों को सूचित किया जाता है सीबी की ओर से कि मोका रोड, लुक्लेजियो एवेन्यू, मोताई ओरी और कौसामी रोड में आज रविवार 7 जून को 8:30 से शाम के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना पहले से सूचना दिए ही इन सभी इलाकों में काटी हुई बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और उनसे ये भी मांग करती है कि वे अपना इंतजाम अवश्य कर लें। ये थी विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से। इस समय 7:22 हुए हैं। सो चलिए सुनते हैं आज का मंगल विचार।
2: मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से सुनिए। मंगल विचार।

प्रिय श्रोताओं, सादर नमस्ते। तप किसे कहते हैं, तप कैसे किया जाता है और सच्चा तपस्वी कौन होता है, आइए विचार करें। संस्कृत के तपस धातु से तप शब्द बना है, जिसका अर्थ है विशेष प्रयास करना। मनुष्य तीन प्रकार से तप करता है। सबसे पहले वह मन से तप करता है, जिसे मानसिक तप कहते हैं। इस संदर्भ में एक उदाहरण देखिए। एक घर में एक भाई बहन बचपन से ही एक साथ खेलते थे, एक साथ खाते और पढ़ते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते हुए दोनों साथ साथ बड़े हुए। एक दिन भाई ने विवाह किया। बहन ने सोचा कि अब भाई उस पर कम ध्यान देगा, क्योंकि उसे पत्नी पर भी अपना ध्यान देना पड़ेगा। मन में ऐसा विचार आने से बहन को ईर्ष्या हुई। वह भाई की पत्नी को महत्व और अपनापन नहीं दे सकी। भाई की पत्नी को दुख हुआ और ननद एवं भाभी के बीच अच्छा रिश्ता बन नहीं पाया। श्रोताओं, जिस विचार से मन मैला हो जाए, व्यवहार बिगड़ जाए, दूसरों को दुख पहुँचे और रिश्ता खराब हो जाए,

0: ऐसे विचार को मन में आने से रोकना तप है। इसी को मानसिक तप कहते हैं। मानसिक तप के बाद मनुष्य शारीरिक तप करता है। प्रसिद्ध सूक्ति है, तपः क्लेश सहनम्, कठिनाई को सहना तप है। इस बारे में एक उदाहरण प्रस्तुत है। एक युवक इंजीनियर बनना चाहता था। उसने यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। प्रथम वर्ष की परीक्षा में वह सफल नहीं हुआ। एक मित्र ने उससे कहा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तुमसे नहीं होगी, बेहतर है कि तुम किसी दूसरे विषय का अध्ययन करो। इस बोल से युवक ने स्वयं को अपमानित महसूस किया, परंतु मान अपमान की चिंता न करते हुए उसने नए सिरे से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। दिन रात अध्ययन करता रहा। उसे भूख प्यास की सूझबूझ भी न रही। रात को ठंड लगती थी तो उसे पलंग पर कंबल के नीचे जाने का मन करता था, परंतु ठंड को सहकर वह देर रात तक पढ़ता रहता था। भारी कष्ट सहकर उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूर्ण की। यह शारीरिक तप है। महाभारत में कथन है, तपः स्वकर्म वर्तित्वम्, अपने कर्म को प्रवणता से पूरा करना तप है। तीसरे प्रकार का तप है, अपने धर्म को पूरा करने के लिए कष्ट सहना। धर्म का अर्थ है वह कर्म जिससे दूसरों का भला होता है। सूर्य का धर्म है संसार को गर्मी और ऊर्जा देना। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक सूरज अपना धर्म निभाता है। एक ही समय पर उगता है और एक ही समय पर अस्त होता है। किसी भी दिन वह छुट्टी नहीं लेता। वह कभी नहीं कहता कि आज मैं थक गया हूँ, इसीलिए मैं एक घंटा पहले ही अस्त हो जाऊँगा। वह कभी नहीं कहता कि आज रविवार है, मैं देर से उठूँगा। हर समय गर्मी और ऊर्जा देकर सूरज संसार का भला करता है। जो दूसरों के हित के लिए कष्ट सहता है वह धर्मात्मा है और वही सच्चा तपस्वी है। अथर्ववेद कहता है, भद्रम इच्छन्त ऋषयः स्वरविदः तपः दीक्षाम उपनिषेदु अग्रे। भद्रम इच्छन्त का अर्थ है कल्याण करने की इच्छा। ऋषयः स्वरविदः स्वर्गीय ज्ञान प्राप्त करने वाले ऋषियों ने तपः दीक्षाम उपनिषेदु तप और दीक्षा की शरण ली, अर्थात वैदिक ऋषियों ने मानव जाति का कल्याण करने के लिए अपने शरीर को तपाया और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। इस ज्ञान को भावी पीढ़ियों में बांटकर ऋषियों ने अपना धर्म पूरा किया और वे सच्चे तपस्वी कहलाए। श्रोताओं, हम सबसे पहले अपने मन में बुरे विचारों को आने से रोकें, यह पहला तप है। फिर अपने कार्य को पूरा करने के लिए कठिनाइयों को सहकर तप करें और अंत में संसार का कल्याण करने के लिए कष्ट उठाएं। यही सच्चा तप है। हम सच्चे तपस्वी बने। महाराज मनु के अनुसार तप वह जल है जो आत्मा को शुद्ध करता है। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे मंगल विचार डॉक्टर माधुरी रामधारी जी से।

0: सुभगा नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: खुशियों का नजराना मिलता रहे आपको हर वक्त हर पल, जहां आप मुस्कुराना भूल जाए वहां कोई ना कोई बहाना मिल जाए मुस्कुराने के लिए, खुश होने के लिए। ये है सुबह का नजराना और ये नजराना बड़ा प्यारा सा आपके नाम सोनू निगम, श्रेया घोषाल के

आवाजों में गुनगुनाने का मन करता है जो गाना, वो इसी गाने की शान है। इस गाने को हमने दिया है ओम शांति ओम मूवी से।

झलकियां। तो चलिए एक नजर दौड़ाए हैं हमारे प्रोग्रामों के बारे में। रेडियो मॉरिशस में कौन से प्रोग्राम आपके लिए हैं? अभी हम पेश कर रहे हैं आपके लिए सुबह का नजराना, और ये नजराना प्यारा सा आपके नाम कर रहे हैं 8 बजे तक। 8 बजे संक्षिप्त समाचार, माफ कीजिए, भोजपुरी में समाचार होंगे। भोजपुरी के समाचारों के बाद आपके लिए हम पैगाम आपके नाम कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, और उसके बाद जो संक्षिप्त समाचार होंगे उसके फौरन बाद हम आपके लिए पेश करने वाले हैं मंगल आचरण कार्यक्रम। और आज वेदिता पेश करेंगे ये प्रोग्राम। 10 बजे आप संक्षिप्त समाचारों के बाद सुनिएगा आज का उर्दू प्रोग्राम निसार की प्रस्तुति में। फिर संक्षिप्त समाचार 11 बजे होंगे। 11:03 के लगभग तमिल प्रोग्राम सुंदरम पेश करेंगे। 12 बजे तेलुगु प्रोग्राम राजेंद्र की प्रस्तुति में होगा। फिर 1 बजे आप सीताबाई दर्मिया की प्रस्तुति में सुनिएगा आज का मराठी प्रोग्राम। फिर जिन लेकर आएंगे आज का चाइनीज प्रोग्राम 2 बजे। 3:30 बजे आप सुनिएगा रंगारंग प्रोग्राम गुजराती भाषा में रत्ना की प्रस्तुति में। फिर पूजा लेकर आएंगी 4 से 5 बजे तक आप और हम प्रोग्राम। 5 से 6 बजे तक तोहर पसीन प्रोग्राम। 6 बजे आप सुनिएगा आज का समाचार बुलेटिन। 6:30 बजे चाइनीज प्रोग्राम होंग होंग की प्रस्तुति में। फिर 7 बजे आप सुनिएगा तमिल प्रोग्राम पुवानम की प्रस्तुति में। और इसके बाद आप वंदना से सुनिएगा आज का तेलुगु प्रोग्राम 7:30 बजे। 7:50 पर गीत गंगा प्रोग्राम मराठी भाषा में शीर्ष पेश करेंगे। और रोशनी पेश करेंगी आज का भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम 8:10 पर। उर्दू कार्यक्रम महफिले शब समीर की प्रस्तुति में होगा 8:40 पर। फिर 9 बजे आप भोजपुरी तड़का प्रोग्राम सुमिता के साथ सुनिएगा। और उसके बाद 11 बजे आप सुनिएगा आज का पुराने गानों वाला प्रोग्राम सुनहरे पल गिनीशा से। सो ये छोटा सा डिटेल हमारे प्रोग्रामों के बारे में, आप जरूर साथ देते रहिएगा। रेडियो मॉरिशस आपकी सेवा में है, और सेवा में आपके लिए आपके प्रस्तुत है ये वाला गाना। साधना सरगम, रूप कुमार राठौड़ की आवाजें, और विनाशक मूवी का ये गीत, बहुत ही मशहूर अपने जमाने का ये गाना है। लम्हे याद आ जाएंगे आपको।

0: एबीसी टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: हम गुंडे हैं, बदमाश हैं, डॉन हैं, बुरे लोग हैं, हा?
2: और इतनी सी बात के लिए हमारी बहन से शादी नहीं करेगा।
3: है कोई घर में बहन, बेटी, भाई, कोई भी शादी के लायक
2: है ना? लड़की संजना बहन।
4: और हमारे से ज्यादा शरीफ खानदान आपको पूरे शहर में नहीं मिलेगा।
2: प्लीज वेलकम।
0: रविवार 7 जून को NBC 3 पर दिन के 12 बजे स्पेशल फादर्स डे हिंदी फीचर फिल्म वेलकम 2007 की ये मूवी अक्षय कुमार और कटरीना कैफ पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म वेलकम। NBC टीवी प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: अच्छा हुआ मिली, वरना मेरा गेम खराब हो जाता।
5: एक्सक्यूज मी, आपको मेरा नाम किसने बताया?
1: आपका नाम मुझे क्या मालूम, आपका नाम क्या है?
5: अभी अभी तो आपने कहा अच्छा हुआ मिली।
1: ओ, वो मैं अपने बॉल के लिए कर रहा था, अच्छा हुआ मिली। आप भी मिली है क्या?
5: जाइए यहाँ से, एक तो मेरी पेंटिंग खराब कर दी ऊपर से।
1: पेंटिंग? कौन सी पेंटिंग?
6: कहता है बाबू।
0: रविवार 7 जून को NBC 4 पर शाम के 6:30 बजे हिंदी फीचर फिल्म बाबुल 2006 की ये मूवी अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी पर फिल्माई गई बाबुल।

7:50 हुए हैं, चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक लोमड़ी और एक बकरी की कहानी आपको सुनाएंगे आज। एक लोमड़ी जा रहा था, उसे एक कुआं दिखा। उसकी जिज्ञासा बढ़ी, उसने देखना चाहा कुआं कैसा है। कुआं देखते हुए वह ढप्पाक से कुएं में गिर गया। बस वहां से निकलने की कोशिश में लगा रहा लोमड़ी, पर वह निकल नहीं पाया। थोड़े समय बाद एक बकरी आई। वो तो प्यासी बकरी थी। प्यासी बकरी ने कुएं में झांका तो उसने लोमड़ी को देखा। पूछा लोमड़ी से, अबे ओ लोमड़ी, तू अंदर क्या कर रहा है? लोमड़ी ने कहा, यहाँ का पानी इतना स्वादिष्ट है कि इसका मैं भरपूर मजा ले रहा हूँ। उसने बकरी से कहा, तू भी नीचे आ जा, तू भी पी यहाँ का पानी, इसका मजा ले। बकरी ने नदाव देखा, नदाव, वो तो झट से कूद गया कुएं के अंदर। उसने पानी तो पिया, उसे कुछ खास स्वाद नहीं लगा, कुछ खास अलग स्वाद नहीं लगा पानी का, फिर भी उसकी प्यास तो बुझ गई। अब लोमड़ी ने कहा, देखो बकरी भाई, हम ऊपर जाएंगे कैसे? बकरी ने भी सोचना शुरू किया। फिर लोमड़ी ने कहा, तू अच्छी तरह से खड़ा हो जा, टाइटली खड़ा हो जा, मैं तेरी पीठ पे चढ़ता हूँ और उसके बाद तेरे सर पे चढ़ता हूँ मैं, फिर कुएं के ऊपर जा करके मैं बाहर निकल जाता हूँ, फिर बाहर से मैं तुम्हें निकालूंगा। बकरी ने हाँ कर दिया, न सोचा न समझा, बस हाँ कर दिया। और वैसा ही किया लोमड़ी ने, उसकी पीठ और उसके सर के जरिए वह बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने लोमड़ी से कहा, अबे ओ बकरी, तूने न सोचा न समझा, मेरी बातों पे विश्वास कर लिया, अब तू ही सोच मैं यहाँ से तुम्हें कैसे निकालूं। उसने उसे बाबाए टटा करते हुए वहां से वह चला गया। पास ही एक किसान सौभाग्य से अपने खेत में काम कर रहा था और उसने लोमड़ी का सारा तमाशा देखा। उसने गांव वालों की मदद से सीढ़ी के जरिए बकरी को निकाल दिया। बकरी तो बच गया, बस इस बार किसान था, सौभाग्य उसका था। पर इस कहानी के जरिए इतना तो हम ध्यान में रख सकते हैं कि कुछ भी करने से पहले सोचना बहुत आवश्यक है। बिना सोचे बिना समझे कोई कार्य किया नहीं जाता। विद्वानों ने कहा है कि एक कार्य करने से पहले, शायद वो कार्य एक दिन का हो पर उसकी तैयारी में महीनों लग सकते हैं, तैयारी कीजिए, सोचिए समझिए, फिर अपना कार्य पूरा कीजिए।

8 से दिन के 1 बजे तक रक्तदान यानी ब्लड डोनेशन का आयोजन कर रहा है। स्थान है साई बाबा मंदिर, रॉयल रोड, कुटीज।

0: और सुबह का नजराना आपके लिए।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।
0: यहाँ पर हम पेश करेंगे आपके लिए ओम जय जगदीश का गाना, और इसी गाने के साथ हम थोड़ा सा रोकेंगे हमारे कार्यक्रम को। 8 बजे सुनिएगा समाचार भोजपुरी में अभी के साथ।

0: पर चल बा। सब कोई के नमस्ते और आदाब। फजर के 8 बजे के भोजपुरी समाचार सुन जा। गाड़ी चलाए बखत मोबाइल फोन के प्रयोग करे होला आदमी के खिलाफ सरकार अपन कानूनी कार्रवाई के आर जस्ती सख्त करता। नवा रोड ट्रैफिक रेगुलेशन 2026 के तहत 10 जून 2026 से गाड़ी चलाते बखत फोन के इस्तेमाल करे के पकड़े जाए के पर चालक के 5 से 10 पॉइंट काट देवल जाए। संबंध मंत्रालय पुलिस के संगे मिलके ई बात के निमन से देखा था मंजा कि ड्राइविंग के दौरान फोन के प्रयोग करे पर कुल मिला के कितना चालान काटल गल बाती। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार सड़क सुरक्षा के दिशा में ऐसा प्रकार के मूल्यांकन पहला हला हुआ था। बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एगो बड़का और महत्वपूर्ण मुद्दा सकी होय। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन दियापाल सिंह ई बोलन कि मॉरिशस के खाए पिए के जन जन चीज बाते उ दूसर देश पर अपन निर्भरता के चाहेला कमती करे के और अपन कोशिश के आर जस्ती तेज करे के। सिंचाई किसान खातिर काम करवा के खोजे के बिया और खाद पर सरकारी छूट माने सब्सिडी देवे के और लैंड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए खेती खातिर जमीन उपलब्ध करावे के ही ई लक्ष्य सकी पूरा होया। आज 7 जून के हमने मनावत है जा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। सब लोगन खातिर स्वस्थ सुरक्षित और सुलभ भोजन के महत्व परी जस्ती बल देवल जाता। ई हमने के जीव खातिर बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बाते कहे कि ऐसन बखत में जब महंगाई बढ़ ले जाता त और खाद्य आपूर्ति से जुड़ल चुनौती एगो चिंता के विषय बन गल बाती। 3 करोड़ 11 बरिस के मारी नुएली लोरों और ओकर दामाद लिनले आजी के काल एगो बड़ा बड़ा मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स के जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी ठहरावल गल। उत्तरी प्रांत के आजसू अवसर के बगल से काल फजर के बेजितोंबो में लिनले आजी के घर पर ही छापा मारल गल। कुल मिला के 5 पार्सल के जब्त करल गल बाते जिमें 500 ग्राम से जस्ती सिंथेटिक ड्रग्स पावल गल जेकर कीमत 7.7 मिलियन रुपए के बतावल जाता। तो दूसर देश में अमेरिका और ईरान के बीच के ईरान और अमेरिका में बातचीत के कोशिश के बीच फिनों से तनाव बढ़ गल बाते। ईरान तक कुवैत पर ड्रोन और मिसाइल के छोड़ के हमला कर दिलक। पलटवार में अमेरिका भी ईरान के कई गो ठिकाना परी धावा बुल्लक ओकर रेडर सर्वेलेंस टावर के भी उड़ा दिलक। तो एक संगे हमने के भोजपुरी समाचार समाभल। ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: आवा मरनी की खबर सुना जा। C'est même l'hôpital sans deux flaquements. C'est même l'hôpital sans deux flaquements. Char Kori Sad Bariske, 87 ans, Shrimati Rauti Jogu, Paida Shinam Bandhu, Arjinkara Sablog Rauti Kinam Se Jasti Jana Thalanja, Unkar Mrti Hogalbati, Unkar Mati Aj Sanchke Teen Baje, Aj Sanchke Teen Baje, Unkar Beta, Shri Gurudat Jogu Ke Ghare, Shumai L'hôpital, centre de flac, c'est au taque et kariakaram kater bouchon kishmushan bhumi le jawal jai, cremation today at 3 p.m. Railroad Union Park me, 4 crore 8 bariske, 88 ans ke, Shrimati Daya Lachmi Venkata Pillai, paidaishi naam Poinu Sami, और जिनकरा सब लोग सती के नाम से जस्सी जाना थलंजा, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माटी आज दिन के दस बजे उनकर घरवे से उठा के क्रियाकर्म खातिर यूनियन पार्क शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमिशन टूडे 10 AM। कॉन्डोमिनिक रोड पेचिरा फ्रेमें 3 crore 8 बरिस के 68 ans के श्रीमती मीला रंजीत, श्रीमती मीला रंजीत जिनका सब लोग मीला के नाम से जैसी जाना थलन जा, पैदाइशी नाम दुसिया, उनकर मृत्यु हो गल बाते। उनकर माती आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा

श्री विशाल रंजीत के घरे कौ डोमिनिक रोद पिचिकाफे से उठा के क्रियाक्रम खातिर पिचिकाफे मोमास्काल के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड गांव बुआ में चार कोरी सात बरिस के 87 ans के श्री किसुन बंधु जिनका सब लोग श्री किसुन के नाम से जैसे जाना थलन जा उनका मृत्यु हो गल बात है। उनका माटी आज दिन के 11 बजे उनका दामाद श्री दानंद गुगापा के घरे रॉयल रोड गांव बुआ से उठाकर क्रियाकर्म खातिर गांव बुआ के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। लेकाजैन की अपिप में 2 कोरी 16 बरिस के सेकंड सीजन के श्री रविंद्र सिंह जीवन जिनका सब लोग लोल के नाम से जस्सी जाना थलन जा उनका मृत्यु हो गल बात है। उनका माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरवे से लेकाजैन क्योपिप से उठा के क्रियाकर्म खातिर बिगागा के श्मशान भूमि ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड पुजदी फ्लाक में 2 कोरी 9 बरिस के 49 ओं की श्रीमती रेशमा सियापासन पैदाश नाम बलवंत और जिनका सब लोग पूनम के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनका मृत्यु हो गल बात है। उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर घरवे से रॉयल रोड पुजदी फ्लाक से उठा के क्रियाकर्म खातिर मेजिन कौंडी मास के श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टुडे एट 11 AM। बैठका रोड मोगू में 4 कोरी 6 बरिस के 86 ओं के श्री नंद कुमार मनरत जिनकरा सब लोग अनिरुद्ध के नाम से जस्ती जाना थलंजा उनका मृत्यु हो गल बात है। उनकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा उनकर दामाद श्री राजेंद्र देवी दिन के घरे बैठका रोड मोंगू से उठा के क्रियाक्रम खातिर पितों की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टुडे एट 11:30 AM। एनएचडीसी नंबर एक मापू में 2 कोरी 9 बरिस के 49 ओं के श्री राजकुमार गोर जिनकरा सब लोग रोशन के नाम से जस्ती जाना थलन जा उनकर मृत्यु हो गल बात है। उनकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा उनकर घरवे से उठा के माने एनएचडीसी नंबर एक मापू से उठा के क्रियाक्रम खातिर थ्रियोले की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टुडे एट 11:30 AM। रॉयल रोड क्वीन विक्टोरिया में 4 कोरी 10 बरिस के 90 ओं के श्रीमती दुलारी ओगा जिनका सब लोग मामा आनंद महादेव के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बात है। उनकर माटी आज दिन के 12 बजे उनकर बेटी श्रीमती साधना बंधु के घरे रॉयल रोड क्वीन विक्टोरिया से उठा के क्रियाक्रम खातिर बोशों की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टुडे एट नून। रॉयल रोड ब्रिज वेजे में 4 कोरी 5 बरिस के 85 ओं के जनाब अब्दुल नाइम फुंदन जिनकरा सब लोग नाइम के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर इंतकाल हो गल बात है। उनकर जनाजा आज दिन के 12 बज के आधा उनकर बेटा श्री मोहम्मद जावेद फुंदन के मकान रॉयल रोड ब्रिज वेजे से निकाल के दफनाए खातिर बुआ का कब्रस्तान ले जावल जाए फ्यूनरल टुडे एट 12:30 PM। तामागन रोड शामुनी में 3 कोरी 6 बरिस के 86 ओं के श्री सत्याजीत बहादुर जिनकरा सब लोग DMD के नाम से जस्सी जाना थलंजा उनकर मृत्यु हो गल बात है। उनकर माटी आज दिन के एक बजे उनकर भाई श्री प्रीतम बहादुर के घरे तामागे रोड शामुनी से उठा के क्रियाक्रम खातिर कौ गोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जावल जाए क्रमेशन टुडे एट 1 PM। एलेमोंग रोड गुडलैंड्स में 4 कोरी 5 बरिस के

0: 85 ans के श्री राजदन उरिया, श्री राजदन उरिया जिनका सब लोग दर्शान के नाम से जस्सी जाना थलन जा, उनका मृत्यु हो गल बात है। उनका माटी आज दिन के एक बजे, आज दिन के एक बजे उनका बेटा श्री विनय उरिया के घरे अलेमोंग रोड गुडलैंड से उठा के क्रियाक्रम खातिर बुआरूज गुडलैंड की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमेशन टूडे एट 1 PM विक्टोरिया रोड ट्रूडोडूस में चार कोरी दुबरिस के 82 ans के श्री देवेंद्र हरिमन, श्री देवेंद्र हरिमन जिनका सब लोग देविन के नाम से जैसी जाना था लंजा, उनकर मृत्यु हो गल बात। उनकर माती आज दिन के एक बजे, आज दिन के एक बजे उनकर पत्नी बेवा संजीता हरिमन के घरे विक्टोरिया रोड थुडुडू से उठा के क्रियाक्रम का थे हौजवे के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमेशन टूडे एट 1 PM और ब्रांच रोड लालमाटी में, ब्रांच रोड लालमाटी में 3 कोरी 16 बरिस के 76 ans के श्री केदर श्री किशुन, श्री केदर श्री किशुन जिनका सब लोग सुवेश के नाम से जस्सी जाना था लंजा, उनका मृत्यु हो गल बात है। उनका माटी आज दोपहर के 2 बजे उनकर पत्नी श्रीमती बृंदा श्री किशुन के घरे ब्रांच रोड लालमाटी से उठा के क्रियाक्रम खातिर हौजवे की शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रमेशन टूडे एट 2 PM तो जितना जिन परिवार दुख में हवन जाए, दुख के ई बखत में MBC के बगल से सब कोई के हमने सहानुभूति प्रकट कर रहे सर।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

0: 119 किलोहर्ट्ज पर, रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, इस समय सुबह के 8:17 हुए हैं। बेशक अभी अगर वीडियो ऑन किया हो तो आपको बता दें हम कि ये है रेडियो मॉरिशस आप लोगों की सेवा में, और लेकर आए हैं आप लोगों के लिए हम पैगाम आपके नाम प्रोग्राम। पैगाम आपके नाम में आप हमें मैसेजेस भेजिएगा और हमें बताइएगा कि 5251700 पर कौन सा खुशी का मौका है, किन के लिए आप मैसेजेस भेजना चाहते हैं, और ऐसे में हम आप लोगों के मैसेजेस ज़रूर पढ़ेंगे आपके अपनों के लिए। चलिए ज़रा हमारा साथ देने वालों की के बारे में बात करते हैं। माला सुमारू जी सुबह से हमारा साथ दे रही हैं, बहुत ही सुबह सुबह उन्होंने मैसेज भेज दिया है, बड़ी प्यारे प्यारे मैसेजेस, बहुत प्यार से मैसेज भेजे हैं। फिर सूरज शर्मा सजादा जी भी हमारा साथ दे रहे हैं। इधर सुदेवी जी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हमारे साथ हैं। सुदेवी जी की तरफ से उन सभी को हैप्पी संडे विश किया जा रहा है। दीदी ललिता जो त्रियोली रहती हैं, दीदी ललिता जी का जन्मदिन है, और दीदी ललिता जी को जन्मदिन की मंगल कामनाएं भेज रही हैं सुदेवी जी। हमारी पूरी टीम भी आपको वेरी हैप्पी बर्थडे कह रही हैं। ललिता जी, आप हमारा साथ हमेशा देती हैं, ललिता चाची, और आज जन्मदिन के अवसर पर हमारे दिल से ढेर सारी दुआएं निकल रही हैं आपके लिए। आप हमेशा स्वस्थ रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते औरों से बातें करते रहें, और दुआएँ तो आप हमेशा बहुत सारी देती हैं, आप दुआओं का ये भंडार हमेशा लुटाते रहिए। जन्मदिन की मंगल कामनाएं आपको सुदेवी जी की तरफ से तो हासिल है, और साथ में बेटे बहू बेटी दामाद सभी नाती नातिन की तरफ से, आत्मा राम जी की तरफ से, हरीश जी की तरफ से, और दीदी सुनीता शोभा देवीना ज्ञानी की तरफ से, ज्योति की तरफ से, चंदा भी साथ में है, और मालेगा के भैया रवीन, भाभी भारती, भैया सुनील, विदेश, सभी नीसेज की तरफ से, बेटी अनुषा, किरण की तरफ से, आशना, नीरज,

और पूरे राम रतन परिवार, राम गुलाम परिवार, कुवाहू परिवार, हृदय परिवार और कुशल परिवार की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं ललिता चाची।

जन्मदिन की मंगल कामनाओं के साथ बढ़ते हैं और सुनीता जी का मैसेज पढ़ते हैं। सुनीता जी का कहना है कि आज भाभी सीता का जन्मदिन है। दागोचे से सुनीता जी ने भाभी सीता को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। साथ में सीता जी की सासू माँ विद्वंती जी, उनके पति सुधीर, बेटे शान, शुभम, श्यामल, दुशिका और छोटा सा श्रेय उन्हें बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं। सुनीता, संदीप, प्रिया और श्रवण दागोचिया के बिहारी परिवार और क्यूपी के सूरत परिवार सीता जी को शुभकामना आशीर्वाद दे रहे हैं और हमेशा स्वस्थ रहें सीता जी, हमेशा खुश रहें, ऐसी कामना कर रहे हैं, ऐसी मंगल कामना कर रहे हैं।

पैगामों का ये गुलदस्ता है। इस गुलदस्ते में अलग अलग फूल हैं। चलिए हम सभी फूलों को आप तक पहुंचाते हैं। न्यूगोव की फातिमा जी हैं, हमारा साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर आशा जानू जी हैं, अपने पूरे परिवार के साथ हमारा साथ दे रही हैं, हमारे सभी श्रोताओं को हैप्पी संडे विश कर रही हैं। उनके पूरे परिवार की तरफ से ममा कुमारी, नेफ्यूज़ शुभम और ऋषभ की तरफ से, दीदी आरती, जीजू राज और पूरे जानू परिवार की तरफ से सभी को बहुत मंगल कामनाएं और मंगल समय बिताएं, ऐसी दुआ है आशा जी की। अनीता जी फ्री कॉम्फ्लैक से हमारा साथ दे रही हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ मिलकर। और इधर नानी अनीता रामजीतन जी को मंगल कामनाएं भेजा जा रहा है पूरे परिवार की तरफ से। अनीता रामजीतन जी जो फोंजीसा की रहने वाली हैं, उनके घर ट्विन बच्चों का जन्म हुआ है। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत खुशी का मोमेंट है। और वे पहली बार नानी बनी है। वाह, ये तो और भी ज़्यादा खुशी की बात है। नानी बनने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और नानी बनकर आप बच्चों पर प्यार लुटा रही हैं। बच्चों के नाम है आर्य और अरवी, और फिर और दोनों बच्चों में एक लड़का एक लड़की है। वाह वाह वाह, आपको तो पूरा जहां मिल गया। हर कोई चाहता है एक मुट्ठी आसमां, और वो मुट्ठी आसमां आपके हाथों में है। अनीता रामजीतन जी, आप भगवान को बहुत बहुत शुक्रिया ज़रूर कहिएगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पूरे परिवार के सदस्य की बच्चे हमेशा स्वस्थ रहें। आपकी बेटी करिश्मा, दामाद कुमार, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन अंश, शैना, शनाया, आहाना, कैशा, अर्णव, रेहान, सिबालक परिवार, रघुबर, रामजीतन, गुलाम, जगरू और जोलिम परिवार मिलकर आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं दे

उस विधाता की पहचान को पहचानिए, अपने माता पिता को सर आँखों पर बिठाइए जिनकी दुनिया आपके इर्द गिर्द चलती है और जिनकी दुनिया में उन्होंने आपको अपने सर आँखों पर बिठाया था। 8:35 पैगाम आपके नाम, पैगामों का ये सिलसिला चल रहा है और ऐसे में हम हैप्पी बर्थडे कहेंगे अंकुश चताहू जी को। लावेनिया सैंपिया के अंकुश चताहू अपना जन्मदिन मना रहे हैं और दादी इंद्रानी जी ने वाकुआ से उन्हें बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद भेजा है। दादा जी साथ में मिलकर उन्हें बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। पापा रोशन, मामा पद्मिनी, बहन मोक्षदा, पुपुन्नी नीला और नीरू, फिर चताहू परिवार, उचायबो परिवार, सब मिलकर कह रहे हैं वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन अंकुश चताहू।

और साथ में जन्मदिन की शुभकामनाएं हम देते हैं अरुण जी को, बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत स्नेह अरुण जी को जन्मदिन के अवसर पर उनकी पत्नी दिया जी की तरफ से प्राप्त हुई है। और दिया जी का ये मंगल कामना है कि ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और वे हमेशा स्वस्थ और सुखी रहें। हैप्पी बर्थडे टू यू अरुण जी।

पैगाम आपके नाम प्रोग्राम है। आप अपने अपनों के नाम विशेष भेजिएगा हमें मैसेज के जरिए या फोन के जरिए। मैसेज के लिए 5251700 नंबर है और कॉल करने के लिए 4028085 नंबर है हमारा। आपके मैसेजेस आपके अपनों तक हम पैगाम आपके नाम में ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी साथ हमारा दे रहे हैं भाई महेन जी जो पालमा के रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ के लिए। और इधर हैप्पी बर्थडे हम विश कर रहे हैं अमिता सिचन जी की तरफ से। सैंपल की अमिता सिचन जी का कहना है कि कल मेरे भाई धर्मानंद अमृत का जन्मदिन था, सो उनको बहुत सारी मंगल कामनाएं दे रहे हैं पूरे परिवार के सदस्य, सिचन परिवार, सैंपल के अमृत परिवार, नोवेल फ्रांस के और रतन परिवार बुआशेरी के। वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी पूरी टीम की।

सो हैप्पी बर्थडे हम विश कर रहे हैं गीता बाई जी की तरफ से उनके बेटे शिवाजी जी को। शिवाजी जी अपना बर्थडे मनाने वाले हैं ट्यूसडे 11th जून को, तो जन्मदिन आ रहा है। जन्मदिन की तैयारियां पूरे परिवार की तरफ से हो रही है। शिवाजी जी को शुभकामनाएं माँ गीता की तरफ से बहुत प्यार से, बहुत आशीर्वाद के साथ, और उनकी पत्नी श्वेता की तरफ से, बच्चों की तरफ से, श्वेता बाई की तरफ से उनकी पत्नी, बच्चे हैं कृष्णी बाई, दिया बाई और प्यारा सा मल्हार भी उन्हें मंगल कामनाएं दे रहा है बहुत प्यार से, और साथ में उनकी बहन सुधा बाई जी भी उनको कह रही है अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, और यही कहना चाह रहे हैं उनको कि जन्मदिन की मंगल कामनाओं के साथ ढेर सारा प्यार भरा हुआ है, ढेर सारी खुशियों की दुआएँ भरी हुई हैं।

आज बर्थडे मना रही है निमृता जी हृदय संगीत में, और निमृता जी को मंगल कामनाएं पूरे परिवार की तरफ से, उनकी मामा साधना और पापा मुनेश की तरफ से और भाई यादव की तरफ से, और बेशक हमारी पूरी टीम की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू निमृता जी।

और जन्मदिन की मंगल कामनाएं हम रूमिला जी को दे रहे हैं। रूमिला जी जो रहती हैं वाकुआ, उनके पति संजीव की तरफ से और बेटी ऋषिता की तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे।

और हमें रिविया दे क्रेओल से साधना जी ने मैसेज भेजा है कि उनके भाई दिल्ली से यहाँ पर आए हुए हैं, मॉरिशस में उनके भाई दिल्ली से आए हुए हैं कुछ प्यारे पल बिताने के लिए। उनके भाई हैं अजय याग्निक और भाभी कल्पना याग्निक, पूरा याग्निक परिवार आया हुआ है मॉरिशस में कुछ पल बिताने के लिए। आप लोगों का ये पल बहुत ही प्यारा, बहुत ही यादगार रहे और इन पलों को आप अपने दिल में समेट के जिंदगी भर रखिएगा, क्योंकि ये पल बहुत प्यारे होने वाले हैं आपके लिए याग्निक परिवार के सदस्य। तो साधना की तरफ से बहुत मंगल कामनाएं इस छुट्टी के लिए और उम्मीद यही करते हैं कि आपके जीवन में हमेशा ऐसे ही प्यारे प्यारे पल आते रहें।

इस हफ्ते फातिमा जी का कहना है कि उनकी फैमिली में तीन बर्थडे हैं और तीनों बर्थडे बॉयज़ गर्ल्स के नाम तो लिखे नहीं हैं फातिमा जी ने, फिर भी उनकी तरफ से उन सबको मंगल कामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। और अंत में चलिए हम थैंक्स कहते हैं आकाश चेतन मनसुख जी को हमारा साथ देने के लिए। बॉम्बू के आकाश चेतन मनसुख जी अकेले नहीं, अकेले अकेले नहीं, अपनी मामा प्रीति, पापा कृष, बहन उर्वशी और विश्नी, उर्वशी और विश्नी के साथ, जीजू विनेश और क्यूट नेफ्यू के हान के साथ, पूरे मनसुख परिवार के साथ मिलकर हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए, आप लोगों ने साथ दिया इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का साथ हमारे इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ा देता है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ के लिए। और ऐसे में हमारा ये प्रोग्राम यहीं पर अंत में समाप्त

0: टाइम चेक सुबह के 9 बज रहे हैं। सभी को नमस्कार, आप सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आज आप संक्षिप्त समाचारों में

0: महत्व पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है, खासकर ऐसे समय में जब बढ़ती महंगाई और खाद्य आपूर्ति से जुड़ी चुनौतियां लगातार चिंता का विषय या बनी हुई है। इस साल का विषय रखा गया है फ्रॉम बर्डन टू सॉल्यूशंस सेफ फूड एवरीवेयर, यानी बोझ से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। बढ़ते साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को देखते हुए मॉरिशस अपने कानूनों को और मजबूत कर रहा है। डिजिटल लेन देन को बेहतर ढंग से नियंत्रित करने, डिजिटल सेवाओं में लोगों का भरोसा बढ़ाने और कानून को नई तकनीकों के हिसाब से ढालने के लिए हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट में बदलाव लाया गया है। ये सुधार देश में डिजिटल बदलाव को मजबूत करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मॉरिशस साइबर सिक्योरिटी के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी पहचान बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार मॉरिशस साइबर सुरक्षा के मामले में पूरे अफ्रीका में पहले स्थान पर है और दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले देशों में शामिल है। 71 साल के मारी नुएली लोरेंट और उनके होने वाले दामाद लिनले आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद वीकेंड अदालत में आरोपी ठहराया गया। उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बिजटोंबू में लिनले आजी के घर पर छापा मारा था। कुल मिलाकर 5 पार्सल जब्त किए गए जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थी। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत लगभग 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका के शीर्ष सैन्य अधिकारी इस समय हवाई द्वीप में दोनों देशों की सेनाओं के बीच सहयोग बढ़ाने पर गहन चर्चा कर रहे हैं। दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों के बीच ये 29वें दौर की वार्ता है और इसमें सैन्य सहयोग को और ज्यादा गहरा बनाने के लिए रास्तों की तलाश की जा रही है। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। एडमंटन इस्लामिक सेंटर लंदन में 73 साल के 73 years old के जनाब मोहम्मद नाहूर, जिन्हें सब लोग भाई नुआ के नाम से भी जानते थे, वो इंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के 1:30 बजे एडमंटन इस्लामिक सेंटर से निकालकर दफनाने के लिए गार्डन फिरदौस कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। मालाउटिक रोड कैथोबोन में 77 साल के 77 years old के जनाब महबूब बसरदी, जिन्हें सब लोग बाई महमूद के नाम से भी जानते थे, वंतकाल कर गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे उनकी बेगम मिसिज रमीजा बसरदी के मकान मालाउटिक रोड कैथोबोन से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए कैथोबोन स्थित सुन्नी मस्जिद ले जाया जाएगा, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान। फ्यूनरल टुडे एट हाफ पास्ट ट्वेल्व एट हाफ पास्ट नून क्षमा करना नंबर 81 पियतों पेलावाल सैंक्रॉ में 66 साल के 66 years old के श्री चंद्र भूषण हवलदार, जिन्हें सब लोग कृतानन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सपहर के तीन बजे उनकी पत्नी श्रीमती सुबेदा हवलदार के घर नंबर 81 पियतों पियालावाल सैंक्रॉ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन दिस आफ्टरनून एट 3। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: This is Radio Marxist.
2: Assalamu

सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से सादर नमस्ते। मंगलाचरण कार्यक्रम में आपका अभिवादन करते हैं। तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा कार्यक्रम गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है और आज हमने जो विषय रखा है वो है सत्यात प्रकाश और वर्तमान समाज। तो चलिए अभी हम कार्यक्रम जो है इसको शुरू करते हैं इस भजन के साथ।

0: श्रोताओं, आपका हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम मंगलाचरण में। और जैसा हमने कहा कि आज का जो कार्यक्रम है वो गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हमारे साथ आज दो अतिथि भी हैं, उनसे भी मिल लेते हैं। हमारे साथ हैं आचार्य बितुला जी। आचार्य जी नमस्ते।
1: नमस्ते विदिता जी,
0: मंगलाचरण कार्यक्रम में आपका हम स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद।
0: और साथ में है श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला जी, आपका भी हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
2: नमस्ते विदिता जी।
0: और हमारे जो श्रोता हैं आज की इस कार्यक्रम को सुनने के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं, तो चलिए आज का जो कार्यक्रम है हमारा सत्यार्थ प्रकाश पर ही आधारित है। और आज हम आपसे कुछ प्रश्न तो ज़रूर करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि जो सत्यार्थ प्रकाश है ये कब लिखा गया, किसने लिखा और इसमें कितने समुलास हैं?
1: बहुत सुंदर प्रश्न बेटा जी। सत्यार्थ प्रकाश यह ग्रंथ महर्षि दयानंद जी द्वारा लिखा गया है और ये वर्ष 1874 में महीना था जून
0: जी।
1: और दिनांक लिखने का आरंभ 12 जून और लगभग 100 दिनों में यह ग्रंथ तैयार हो गया था।
0: 100 दिनों में
1: 100 दिनों में मात्र। कहा जाता है कार्ल मार्क्स जो है द कैपिटल लिखने में उनको 30 वर्ष लगा था
0: जी,
1: और महर्षि दयानंद जी को केवल 100 दिन लगा, जहाँ पर सामाजिक व्यक्तिगत अर्थात हर प्रकार से हर दृष्टिकोण से जो है उन्नति दिखाई दी इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ का नाम रखा गया है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ होता है सत्य और झूठ दोनों को सामने रखना, बताना है सत्य अर्थ का प्रकाश। और महर्षि दयानंद जी इस ग्रंथ को जब प्रस्तुत किया उस समय की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति जो है लगभग जो जनता जो जानना चाहती है लगभग जो है इसमें अभी भी उसकी आवश्यकता है, इसलिए हमने सत्यार्थ प्रकाश मास के संदर्भ में हमने इसका विषय रखा सत्यार्थ प्रकाश और वर्तमान समाज
0: जी।
1: तो इस प्रकार से है विदा जी, एक छोटा सा हमने यहाँ परिचय दिया सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर।
0: और कितने समुलास हैं इसमें?
1: इसमें 14 समुलास हैं और 14 समुलास के अंत में जो स्वमंतव्य अर्थात महर्षि दयानंद की उनका जो अपना स्वतंत्र विचार है उन्होंने प्रस्तुत किया है जो है 14 समुलासों के बाद
0: जी।
1: इस प्रकार 14 समुलास हैं जो विभिन्न विषय से संबंधित हैं और आज हम यही सेवा में प्रस्तुत करने के लिए आए हैं।
0: तो आज हम ये जो 14 समुलास हैं इनकी कविता को लेकर आए हैं।
1: हाँ, विशेषकर जो है आज जो है थोड़ा सा हम जो है कवितामय रूप से प्रस्तुत करेंगे
0: जी।
1: और ये कविता जो है मूल रूप में कविता रूप में हम प्रस्तुत करेंगे और इसके जो है चौपाई रूप में जो है भी प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें उसकी व्याख्या भी करेंगे
0: जी। तो हम श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला जी से निवेदन करेंगे कि वे कविता जो है उसको शुरू करें और व्याख्या के लिए आचार्य जी आप व्याख्या करेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, व्याख्या करेंगे।
0: चलिए सुनते हैं।
2: सत्य

झूठ तिमिर का नाश, सदा सत्य को सत्य बखाने, अरु मिथ्या को मिथ्या माने, सत्य अर्थ को यही प्रकाशा, होय जगत में सत्य विकाशा। सुन उपदेश झूठ जन त्यागे, सुख स्वरूप सत्य हूँ अनुरागे, मानुष

0: अति सुंदर, अति सुंदर। आचार्य जी
1: आइए हम इसका आप जो है भाव हम समझाते हैं
0: जी।
1: यह सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुलास कविता रूप में प्रस्तुत किया गया। इसका भाव इस प्रकार से जो है सनातन वैदिक धर्म का जो है मूल आज आपके इस सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुलास में प्रस्तुत किया गया है वह यह है परमपिता परमात्मा का नाम ओम
0: जी।
1: ओम आज हम इस कलयुग में हैं, कलयुग से पूर्व द्वापर युग, द्वापर से पूर्व त्रेता युग और त्रेता युग से पूर्व सतयुग
0: जी।
1: सतयुग में हमारी भगवान शिव जी हुए और शिव जी ने स्वयं प्रस्तुत किया है कि ओम नमः शिवाय
0: जी।
1: उन्होंने ये कहा कि मेरा नाम तो लीजिए लेकिन मुझसे पहले परमपिता परमात्मा ओम का नाम लीजिए, फिर बाद में मेरा नाम लेना
0: जी।
1: वो तो परमात्मा है, मैं तो भगवान हूँ। यहाँ इस प्रथम समुलास में एक बहुत बड़ा सत्य है वेदिता जी, जो है परमात्मा और भगवान में बहुत अंतर है। भगवान का अर्थ होता है जो सुख और दुख में बराबर होता है
0: जी।
1: जैसे उदाहरण त्रेता युग में जब दशरथ जी ने कहा श्री राम जी को कि कल प्रातः तू राजा बनेगा तो उन्होंने कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं किए, और जब प्रातः समय हुआ तो कहा कि अब तू वनवास जाएगा, तब उसको कोई दुख नहीं हुआ। अर्थात उनके जीवन में सुख और दुख वो दोनों बराबर। तो जो अभी भी शिक्षा को हम लें कि हमारे जीवन में सुख और दुख आ जावें, हम बराबर रहें, जो सुख और दुख में बराबर रहता है वही भगवान होता है
0: जी।
1: ये भगवान होता है और परमात्मा वो तो आत्मा में जो परम है वो परमात्मा। हम आत्मा से महात्मा बन सकते हैं लेकिन हम आत्मा से परमात्मा नहीं बन सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि परमात्मा जो है और आत्मा आत्मा परमात्मा का अंश है तो हम उदाहरण देना उचित समझते हैं। एक लड्डू को ले लो और लड्डू में से एक टुकड़ा अलग करो, जो गुण जो लड्डू में है वो टुकड़े में भी वही गुण होना चाहिए
0: जी।
1: अगर हम कहेंगे आत्मा परमात्मा का अंश है तो जो गुण परमात्मा में है वो अंश आत्मा में
0: होना चाहिए।
1: ऐसा नहीं है। परमात्मा में क्या गुण है? परमात्मा संसार बनाता है लेकिन आत्मा भी तो शरीर में रहकर केवल घर ही बना पा रहा है
0: जी।
1: तो ये अंतर है परमात्मा और आत्मा। तो प्रथम समुलास में परमात्मा के 100 नामों की व्याख्या की गई है, उनमें से मुख्य नाम ओम है। और हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक घर में जितने हाथ जोड़ करके पूजा करने वाले हमारे अपने हैं वे प्रत्येक अपने घर में प्रातः सायं प्रातः घर से निकले ओम नाम से घर में आए ओम नाम के साथ, फिर देखना जीवन कितना महान बन जाएगा। यह भाव है सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समुलास वेदिता जी।
0: बापरे बहुत अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया। चलिए अब इसी के साथ हम कविता जो दूसरा समुलास है वो सुनते हैं आपसे।

0: सब मिथ्या जाला, भूत प्रेत मिथ्या सब जानी, किसी धूर्त की बात न मानी।
1: चलिए तो अब इसका आप व्याख्या में समझाइए आचार्य जी।
2: जी बेटा जी, अवश्य। यह सत्यार्थ प्रकाश द्वितीय समुलास कविता रूप में, और आप सुनिए इसकी जो व्याख्या। सत्यार्थ प्रकाश जो है दूसरे समुलास में जो मुख्य बात आई है वह यह है, धन्य है वह संतान, इनके माता पिता और आचार्य हो धार्मिक विद्वान। विदिता जी,
1: जी
2: आज जो हैं हम सब विद्वान हैं
1: जी,
2: आज हम सब विद्वान हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन क्या पढ़ना है? आज हम सब

0: पढ़े लिखे हैं, क्या पढ़ना है या हमें फिर से सीखना है? क्या पढ़ना है, फिर से सीखना है?
1: क्या पढ़ना है,
0: क्या पढ़ना है? पढ़े लिखे तो हम सब हैं, क्या पढ़ना है, फिर सीखना है? तो हमें क्या पढ़ना है? हमें सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है। तब हम जानेंगे कि माता पिता आचार्य अगर चाहते हैं संतान की हर प्रकार से उन्नति हो, तो अब सबसे पहले हम तीनों को विद्वान के साथ धार्मिक होना चाहिए
1: जी,
0: जो हमारे जीवन में अभाव है। तो धार्मिक विद्वान होने से वो संतान बहुत भाग्यवान कहलाती हैं, अर्थात उनका जीवन बहुत सरल हो जाता है। और इसी भाव को यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि हम अपने संतानों को अच्छा और बुरा दोनों शिक्षा दें। हम उनको कभी केवल अच्छाई दें और बुराई की शिक्षा ना दें, तो वो बच्चा हमेशा वो डर डर के जिएगा। एक बार उनको जब बुराई का ज्ञान हो जाता है, उसको पता है ये तो बुराई है, जब उसे कहेंगे देखो ये है, ये अच्छा है और ये बुरा है, उनको दोनों का ज्ञान हो गया
1: जी।
0: ज्ञान हो गया। लेकिन अगर हम उसको नहीं बताते हैं तब वो डर में पूरा जीवन बिता देता है। और कहा जाता है बच्चा जो है बचपन से लेकर जन्म से लेकर के जो 5 वर्ष की अवस्था है, जो वो सीखता है पूरा जीवन उसी को वो विकसित करता है, डेवलप करता है। तो बहुत सावधानी से हमें यहाँ पर होना चाहिए कि कैसे उसको क्या, यही विशेष कर ये बात बताई गई है। और माता पिता और आचार्य को धार्मिक होना चाहिए। आज ये हमारे समाज की बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा अभाव है। और इसलिए कहा कि वर्तमान समाज और सत्यार्थ प्रकाश, वर्तमान समाज को सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे नियम के जो हैं ये बातें अपने जीवन में महत्व दें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी सुदृढ़ और हर प्रकार से उन्नत होवे।
1: बहुत खूब, चलिए इसके साथ एक और कविता सुनते हैं।
2: गुरु

0: अर्थात
1: अर्थात बहुत आवश्यकता है मनुष्य के जीवन में, वह यह है ज्ञान। माता पिता हमको मनुष्य का जन्म दे देते हैं
0: जी,
1: परंतु हमको ज्ञान कहाँ से मिलता है, वह है आचार्यों के यहाँ
0: जी।
1: और हमारे जो हैं जो गुरुकुल पद्धति, हम इस देश में रह रहे हैं, गुरुकुल पद्धति नहीं है, परंतु इतना तो ये है कि हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए घर से बाहर निकालना ही है
0: जी, जी, जी।
1: चाहे हम माता पिता कितने शिक्षित क्यों ना हो
0: जी।
1: उनको निकालना होगा, निकालना होगा, ये घर से निकालना। वेदिता जी मुझे एक बात याद आ रही है, जो है हिंदी में 60 को बोलते हैं 60 और 8 को बोलते हैं 8, 8 तो 8 ही हैं, तो 8 जो है की अवस्था में और 60 की अवस्था में
0: जी,
1: अर्थात जब मनुष्य अपने जीवन में जब 8 की अवस्था में
0: 8 साल
1: है,
0: के होते हैं,
1: 8 वर्ष के होते हैं, साल
0: और
1: 60
0: के होते हैं,
1: और 60 के होते हैं, तो 8 और 60 दोनों को घर छोड़ने का विधान है। ये सनातन वैदिक धर्म ये प्राचीन में है, अभी उतना लागू नहीं होता।
0: पहले तो गुरुकुल हुआ करते थे, जितने भी बच्चे थे वो गुरुकुल में रहते थे, सेवा करते थे, उनको बहुत कुछ सिखाया जाता था, तो अभी तो सब बच्चे घर में रहते हैं,
1: घर में रहते हैं। और 60 वहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम का विधान अभी आएंगे, थोड़ी बात याद आ गई,
0: मैं सन्यासी बन जाते थे और
1: तब भी घर से निकलते थे,
0: घर से निकलते थे,
1: निकल देते। अब घर से कौन निकले, कोई बात नहीं, फिर भी जो है अपने घर में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर कहा कि शिक्षा अर्थात कैसी शिक्षा होनी चाहिए, भूमि से लेकर ईश्वर पर्यंत, कि वह हमारे बच्चा जो है उनको परिपूर्ण शिक्षित होनी चाहिए
0: जी।
1: और इसके लिए एक पद्धति बताए हैं, इस पद्धति में बताए हैं कि सबसे पहले जो है कि आप बाह्य शुद्धि, क्योंकि विद्या जो है बहुत पवित्र है, वेदिता जी बहुत पवित्र हैं, हमारे सरस्वती देवी हैं और हमें बहुत पवित्रता अपनानी चाहिए जिससे कि हम उसको ग्रहण करें। तो यहाँ पर कितना सुंदर श्लोक बता रहे हैं, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मन सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्जानेन शुद्ध्यति। इसका भाव यह है, शरीर को हम जल से शुद्ध करते हैं।

0: मन को सत्य से, विद्या तप से, और जो है आत्मा बुद्धि से।
1: जी
0: कितनी सुंदर बातें आ गई हैं। तो धन्य वह जो है परिवार जो इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए अपने बच्चों को वो शिक्षित करते हैं और इस प्रकार से तीसरे समोल्लास का यहाँ संदेश है कि बच्चे लड़का हो या लड़की भी, पिताजी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, लड़का हो या लड़की दोनों को जो है शिक्षा से वंचित न रखें, दोनों को। दोनों को ऐसा समय था कुछ से, उसमें अधिक चर्चा नहीं करेंगे इस पर, बस अभी कहेंगे कि हाँ अहो भाग्य है कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाने का अवसर मिल रहा है और पढ़ाइए। मैं मानता हूँ जिस एकेडमिक शिक्षा है उसको लीजिए, लेकिन जो है सायंकाल जो है अपने घर में अपने बच्चों के साथ जो है अपनी भाषा संस्कृत भाषा में संध्या कीजिए। अपने गुरुकुल तो नहीं रहा, अपने घरों को गुरुकुल बनाइए शिक्षा को लेकर के।
1: जी, तो प्रिय श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंगलाचरण, जिसे गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आचार्य बितुला जी जो हैं वो व्याख्या कर रहे हैं उन कविताओं की, यानी कि जो 14 समोल्लास हैं उनको कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो चलिए अभी हम चौथे समोल्लास की ओर बढ़ते हैं और सुनते हैं कविता।

0: जी आचार्य जी,
1: सत्यार प्रकाश चौथा समुलास, ये चौथा समुलास जो है चौथा अर्थात चार संख्याएं, चार जो है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये हमारे जीवन के चार लक्ष्य हैं जो गृहस्थ आश्रम में जो गृहस्थी है ये परिपूर्ण करता है। अर्थात इसमें बात बताई गई है ब्रह्मचर्य अर्थात विवाह जो है विवाह संस्कार तब हो जब शिक्षा समाप्त हो जाए तब
0: जी, जी, जी।
1: और वहाँ पर जो है विवाह संस्कार के बारे में बता रहे हैं गुण कर्म स्वभाव, ये दोनों विद्या जी बराबर होना चाहिए। मैं पुनः बोल रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश और वर्तमान समाज, वर्तमान समाज को ये बात देखना है, देखनी चाहिए कि जो है कि लड़का लड़की जो विवाह संस्कार में बंधने जा रहे हैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं दोनों का गुण कर्म स्वभाव बराबर है, ये मुख्य बात इसमें आई है मुख्य बात। और एक विशेष बात मैं बार बार कहता हूँ विद्या जी, वह जो विवाह की बात जब आती है जो विवाह का दिन है किस दिन विवाह करना चाहिए विवाह संस्कार संपन्न करना चाहिए तो वह दिन कौन निश्चय करता है तो वह एकमात्र केवल कन्या अर्थात लड़की हमारी बेटियां वो कहेंगे। सत्यार प्रकाश में स्पष्ट ये बात आई है
0: कि लड़कियां,
1: हाँ लड़कियां उन्हीं को पता चले, उन्हीं को पता चले कि विवाह अभी जो दिन दिवस ठीक है नहीं, क्योंकि बेटा मैं संकेत करना चाहता हूँ समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है, केवल हमारी बेटी को पता होगा उनका स्वास्थ्य अनुकूल है या नहीं
0: जी,
1: इसी
0: जी,
1: को
0: जी।
1: पता नहीं चला बेटा जी
0: तो
1: हम बहुत अनर्थ कर रहे हैं
0: जी।
1: हम पंडित जी को देख रहे हैं, पंडित जी तो अपनी दाई देखते हैं जब वो फ्री है तभी वो विवाह धर लेगा वो, उनको मत सुनो।
0: लेकिन पहले लड़कियां
1: लड़की लड़की अपने माँ से कहेगी कि माँ ये दिवस ये दिनांक ये डेट ठीक है विवाह संस्कार, तब माँ जो है अपने पति से कहेगी और पति अपने संबंधी से कहेगी, इस प्रकार से इस प्रक्रिया से, जिसमें कि वर्तमान समाज में अभी बहुत हमको सत्यार्थ प्रकाश को अभी खोलना है
0: जी।
1: खोलना है ये। और मुख्य बात और है इसमें विद्या जी, जो गृहस्थ आश्रम वो आश्रम है जो बहुत शक्तिशाली ये होता है, इसमें दोनों पति पत्नी को बहुत जो है प्रेम से रहना पड़ता है, जहाँ प्रेम वहाँ वहीं पर शक्ति,
0: प्रेम आदर
1: बहुत एक दूसरे को विशेषकर विश्वास के साथ, यह पर हमारा शास्त्र धर्म शास्त्र मनुस्मृति क्या कहता है संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। इसका अर्थ यह होता है विद्या जी जिस कुल में पत्नी से पति और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती है उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं
0: जी।
1: और जहाँ कलह होता है वहाँ दुख ही दुख होते हैं। कितनी बड़ी बात है
0: जी,
1: कितनी बड़ी बात है, कितनी विश्वास है एक दूसरे पर, कितना विश्वास कितनी प्रेम। इसी बात को त्रेता युग में शूर्पणखा ने ये बात कही श्री राम जी से, तेरे पिताजी के तो तीन तीन रानियाँ
0: जी,
1: तू दो भी, मैं नहीं कहता हूँ कि सीता को छोड़ दो, सीता को भी और मुझे भी स्वीकार कर लो। शूर्पणखा ने प्रपोज किया था राम जी को, श्री राम जी ने कितना सटीक उत्तर दिया था कि मेरे पिताजी के तीन रानियां तीन पत्नियां उसका परिणाम आज मैं जंगल में हूँ, अगर एक होती तो मैं जंगल में नहीं होता
0: जी जी जी
1: हाँ
0: जी।
1: तो इसलिए मैं जो है बुराई को बढ़ावा नहीं देता क्योंकि मेरे पिताजी ठीक हैं वो भी तो मनुष्य मनुष्य गलती के पुतले होते हैं तो मैं बुराई को बढ़ावा नहीं देना चाहता हूँ, जो है मुझे पति पत्नी जो है प्रेम से रहें यही, तो ये बात तब की है और अभी भी ये बात लागू है विचिता जी, क्योंकि मैंने कहा गृहस्थ आश्रम बहुत शक्तिशाली आश्रम है, तीनों आश्रम जो है ब्रह्मचर्य आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम भिक्षा वृत्ति के होते हैं, मांग करके ये लोग जीवन निर्वाह करते हैं, कहाँ मांगेंगे गृहस्थी के यहाँ, और ये सब आकर के गृहस्थी में मिलते हैं। हमारा शास्त्र क्या कहता है यथा नदी नदा सर्वे सागरे यान्ति संस्थितम तथैवाश्रमीण सर्वे गृहस्थे यान्ति संस्थितम, अर्थात जैसे नदी जो है बहती बहती हुई सागर को मिल जाती हैं वैसे सभी लोग आकर के गृहस्थ में सब आश्रम मिल जाते हैं
0: जी।
1: तो कितना महान है ये चौथे समुलास गृहस्थ आश्रम के विद्या जी, आप लोग बहुत उसको स्वीकार करें ये हमारे पूर्ण उन्नति के लिए है विद्या जी।
0: जी तो प्रिय श्रोताओं, अभी के लिए चलिए हम एक भजन सुनते हैं, फिर हमारा जो कार्यक्रम है मंगलाचरण, इसको हम आगे ले चलेंगे।

श्रोताओं, अभी आप एक भजन सुन रहे थे और हमारा कार्यक्रम आप के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है मंगलाचरण। गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस की ओर से हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं आचार्य बितुला जी और श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला जी। तो यहाँ पर श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला जी हमें जो कविताएँ हैं वो सुना रही हैं और उसका व्याख्या जो है वो हमें आचार्य बितुला जी सुना रहे हैं। तो देर न करते हुए चलिए बढ़ते हैं हम पाँचवीं कविता की ओर।

0: जी आचार्य जी।
1: मैंने बताया विद्या जी, सनातन वैदिक धर्म यह वो धर्म है जो इसका इसके जो नींव हैं ये त्याग पर हैं, त्याग पर हैं। क्योंकि क्यों मैं यह धर्म त्याग सिखाता है, क्योंकि जो है अंत में आत्मा तो शरीर से अलग ही हो जाते हैं, यहाँ भी तो त्याग है। तो जो पांचवा समुलास है यहाँ पूर्ण त्याग का विषय है। यहाँ पर त्याग अर्थात अब जो है गृहस्थ आश्रम के पश्चात आपके बेटे के बेटे, बेटी की बेटी, अर्थात अपने आपके बच्चे जो हैं उनके भी बच्चे हो गए। आप जो हैं दादा बन गए, दादी नाना नानी बन गए। अब आप जो हैं आपके पास क्या हो जाता है, अनुभव
0: जी।
1: आपके पास वो अनुभव हो जाता है। हमारा कहा जाता है हमारे यहाँ ज्ञान से बढ़कर और कुछ है तो वह है अनुभव। अनुभव ज्ञान से बढ़कर होता है,
0: एक्सपीरियंस,
1: एक्सपीरियंस अनुभव। और यह अनुभव के आधार पर अब वे जाते हैं लोगों को अपना अनुभव बांटने। कौन? अर्थात ये जीवन का वो अवस्था है, इसको बोलते हैं वानप्रस्थी, जो विशेषकर सत्यार्थ प्रकाश के पांचवें समुलास में आए हैं। और यहाँ पर हम सब जानते हैं हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां हैं और पांच कर्म इंद्रियां हैं। तो ये पांच संख्या में याद दिलाती हैं, पांचवा समुलास में आप अध्ययन करें, पढ़ें और अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हुए समाज के कल्याण के लिए अपना योगदान दीजिए अनुभव के आधार पर। ये बात बताई गई है हमारे सत्यार्थ प्रकाश के पांचवे समुलास में।
0: और छठे समुलास में क्या कहा गया है, चलिए सुनते हैं हम श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला जी को।
2: क्या

0: नशही विघ्न उन्नति बाधाएं सभ्य सभासद योग प्रवीणा निर्भय सम्मति देय स्वधीना।
1: जय आचार्य जी।
2: सत्यार्थ प्रकाश के जो छठा समुलास है, विशेषकर राजा कैसा होना चाहिए, किसको हम राजा बनाएं,
1: जी
2: यहाँ पर बात बताई गई है। हमारी जो है राजा जो है हमेशा वो प्रजा के हित में ही अपना विचार को व्यक्त करें, विशेषकर यहाँ पर बात बताई गई है। और राजा को कौन कौन चुनता है राजा को, तो वो है प्रजा
1: जी,
2: ना प्रजा। और महर्षि दयानंद से एक बहुत सुंदर बात पूछी गई थी कि जो है कि आप बोल रहे हैं ये राजा को प्रजा जो है वो चयन करें, तो ये प्रजा जो है किस आधार पर चयन करें, तो कहते हैं किस आधार पर, शास्त्र के आधार पर। मनु महाराज ने बताएं तो कहाँ से हमको मिलेगा, तो वर्तमान समाज को से।

0: ही राजा चयन करने के लिए सत्यार प्रकाश छठा समुल्लास पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, फिर हाथ जो है सिर पे रख के रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। अगर हम जो है अनुचित व्यक्ति को सत्ता पर जब बिठा देते हैं तो हमें जीवन भर रोना पड़ता है, विचार करके, सोच विचार करके कैसे होनी चाहिए वो राजा, राजा कैसे होने चाहिए। अच्छा आप अगर कोई राजा जो है वो ठीक नहीं है तो ठीक है ना, प्रसन्नतापूर्वक उसको हटा देना है अन्यों को, क्योंकि हम सभी के हित के लिए में है, देश के हित के लिए में है जो है। तो ये सब बातें कहाँ आती हैं, सत्यार्थ प्रकाश छठा समुल्लास
1: जी।
0: मैं पुनः श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर उदाहरण चाहूँगा
1: जी।
0: श्री रामचंद्र जी जो है बांध पे बांध चलाते रहे रावण, और रावण मरता ही नहीं। तो प्रभु राम ने कहा क्या समस्या है ये, क्यों ये चुक जाता है मेरे बाणों से। तब विभीषण बोलते हैं प्रभु रावण का प्राण जो है ये कहाँ है, रावण का प्राण इनकी नाभि में है
1: जी,
0: नाभि में है जो है ना, आप वहाँ बाण चलाओ और ये मर जाएगा। और श्री रामचंद्र जी बाण चलाते हैं रावण के नाभि में और उमर जाता है
1: जी।
0: उमर जाता है। तो मैं भी ये कह रहा हूँ कि हमारे जो राजा ठीक नहीं है, तो राजा इसे नेता राजा उसका प्राण कहाँ है, कुर्सी में है। अरे कुर्सी खींच दो वो मर जाएगा, बस कुर्सी खींचने की देरी है, और किस कुर्सी खींचे कौन, जनता, आपको जानना चाहिए। तो इस बात इस सत्यार्थ प्रकाश के छठा समुल्लास में राजा की बात आई है, राजा कैसे होने चाहिए, हर प्रकार से अपनी प्रजा को देखें। क्यों छठा समुल्लास, जब संध्या करते हैं तो वहाँ पर जो है मनसा परिक्रमा छह मंत्र दिए गए हैं वहाँ पर। इन छः मंत्रों में कहा कि मन से स्वीकार करो कि परमात्मा सर्वत्र है, तो इसे जनता जो है चाहे किसी दिशा में हो, जो है चारों दिशा ऊपर नीचे कहीं भी हो, वे मन से स्वीकार करें कि मेरा राजा जो है बढ़िया है। तो विशेषकर जो है वर्तमान समाज के जो है सर्व उन्नति के लिए सत्यार्थ प्रकाश छठा समुल्लास को हम विशेष से पढ़ें वहाँ पर
1: जी। तो प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ एक भजन सुनते हैं, फिर हम कार्यक्रम मंगल आचरण को आगे ले चलेंगे। चलिए श्रोताओं, यहाँ पर एक बार फिर से हम आप सबों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम मंगलाचरण में, जिसे हम प्रस्तुत करें आपके लिए गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस की ओर से। आचार्य बितुला और श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला हमारे साथ हैं, और अभी के लिए हम बढ़ते हैं अब सातवें कविता की ओर, है ना श्रीमती तपस्या जी।
2: जीता जी,
1: तो चलिए सुनाइए।

0: जी आचार्य जी,
1: सातवां समुल्लास विशेषकर यहाँ पर ईश्वर संबंधित है। वेदों के आधार पर ईश्वर एक है। प्रथम समुल्लास हमने बताया कि ईश्वर जो है वे एक हैं, उनके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार अनेक नामों अर्थात सौ नाम गिनाए वहाँ पर। तो यहाँ पर भी सातवां समुल्लास में विशेष ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं हम कि परमपिता परमात्मा एक ही है
0: जी।
1: सातवां समुल्लास में विशेषकर और उनका श्रेष्ठ नाम ओम है। तो सातवां समुल्लास में क्यों सातवां समुल्लास में आए हैं, हम सब जानते हैं जो सातवां होता है वो परिपूर्ण है। वो परिपूर्ण होता है सातवां, अर्थात सातवां समुल्लास में रखा गया है यह कि ईश्वर को आप जानें, वह एक है और चारों वेदों में वे एक ही ईश्वर के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता माग्रिदः कस्य स्विद्धनम्। कि ईशा वास्यमिदम्, ईश एक ही हैं, वास्य इदम् और वह सर्वत्र वास कर रहे हैं अर्थात सर्वत्र हैं। तो इस प्रकार से सातवां समुल्लास में ईश्वर के विषय में यहाँ बताया गया है।
0: चलिए सुनते हैं अब हम अगला समुल्लास।

0: यह सत्यार प्रकाश आठवां समुल्लास है। आठवां समुल्लास में विशेषकर जो तीन महत्वपूर्ण आए हैं सनातन वैदिक धर्म संस्कृति का यह सिद्धांत है, वह है परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। यह तीनों अनादि है। अनादि का अर्थ होता है जिसका न कभी जन्म और न मृत्यु। आत्मा का न जन्म न मृत्यु, परमात्मा का न जन्म न मृत्यु और प्रकृति का न जन्म न मृत्यु, यह तीन बात बताई गई हैं। और यहाँ पर सृष्टि के विषय में विस्तार से समझाया गया है। और सत्यार्थ प्रकाश आठवां समुल्लास, इसको आठवां समुल्लास में विषय को क्यों रखा गया है? आठ संख्या से हमें यह स्मरण रहे कि जो है योग के आठ अंग हैं, यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान, प्राणायाम, समाधि। इस प्रकार से जो है ये आठ अंग इस सृष्टि में रहते हुए हम अपने इस योगाभ्यास के माध्यम से अपने जीवन को हम सफल बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो है हमको समाज के जो वर्तमान समाज में जो परिस्थितियां हैं देखने को मिल रहे हैं, आज अनेक ईश्वर या संसार जो है समाप्ति की ओर इत्यादि, ये सब बात सही जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश आठवां समुल्लास का विशेष अध्ययन कीजिए।
1: चलिए सुनते हैं अब हम अगला समुल्लास।

0: सत्यार्थ प्रकाश का यह नवा समुलास है। इसमें विशेषकर जो बात बताई गई है वह विद्या और अविद्या। श्रोताओं विशेष ध्यान दीजिए, विद्या का अर्थ यहाँ पर पढ़ना लिखना और अविद्या का अर्थ यहाँ पर जो पढ़े लिखे नहीं हैं, इस प्रकार से यह नहीं है प्रसंग अनुसार। यहाँ विद्या का अर्थ है जो आत्मा से संबंधित है और अविद्या का अर्थ है जो शरीर से, अर्थात जो है हमारा आध्यात्मिक और भौतिक। आध्यात्मिक आत्मा, भौतिक शरीर। आध्यात्मिक विद्या और भौतिक अविद्या, इन दोनों को जो है साथ साथ लेके चलना है, जिससे जो है हमारा जीवन सफल माना जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। विद्या और अविद्या ये विशेषकर प्रकार डाला गया है नौवां समुलास सत्यार्थ प्रकाश के।
1: चलिए सुनते हैं अब हम अगला समुलास।
2: जो नरवेदरु शास्त्र का करता है अपमान, जाति ब्रह्म

0: जो बताए जा रही हैं दसवें समुल्लास में। दसवें समुल्लास में ये बात आई है कि भक्ष्य अभक्ष्य, अर्थात हमें क्या भोजन करना चाहिए और क्या खाना छोड़ देना चाहिए। ध्यान दीजिए, भोजन हम स्वीकार करते हैं और खाना ये हमें स्वीकार नहीं है। तो नवा समुल्लास में ये बात बताई गई है कि जो है हमारा भक्ष्य और अभक्ष्य, विशेषकर आज हमारे जो हैं भोले, हमारे भोले नौजवान युवक युवती लोग जो हैं अभक्ष्य, जो हैं नशीली पदार्थ इत्यादि का सेवन करते हुए वे लोग अपने जीवन के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम उनसे विनम्र निवेदन करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश के दसवें समुल्लास का आप अध्ययन कीजिए, आपको भली भांति पता चल जाएगा कि कैसा भोजन होना चाहिए। और जिसे मैंने बताया कि यह आत्मा और शरीर दोनों के मिलन से जन्म होता है, शरीर का जन्म होता है, और ये शरीर आत्मा शरीर के अंदर होते हुए आत्मा शरीर के माध्यम से और शरीर के अतिरिक्त संसार के माध्यम से, संसार में जो अन्य जीव जंतु हैं इन सब के सहयोग से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो हम देखते हैं जितने भी जीव जंतु हैं ये सब हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए हुए हैं। हम देखते हैं एक ये जो उसको हम बोलते हैं अपनी जो भाषा में उसको बोलते हैं जो एक कीड़े हैं, वो कीड़े हैं वो जमीन में पृथ्वी में वो छेद करते हैं वो छेद से क्या है जो है उस पेड़ के जड़ को शक्ति मिलती है जो है हरा भरा रहने को। अब अगर कीड़े को हम नष्ट कर देंगे तो वो पेड़ हरा भरा नहीं रहेगा, और जब पेड़ हरा भरा नहीं रहता तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इन जीव जंतुओं का पूर्ण सहयोग है हमारे जीवन को हर प्रकार से उन्नत करने के लिए। तो सत्यार्थ प्रकाश दसवां समुल्लास को विशेष रूप से पढ़िए और विशेष ध्यान दीजिए कि हमारा जो है भक्ष्य कैसा होना चाहिए जिससे कि हमारा जीवन बहुत बढ़िया ढंग से सफल होवे। दसवां समुल्लास को हमने इस प्रकार से यहाँ आपको समझाने का प्रयास किया जो बात बताई है दसवां समुल्लास में।
1: चलिए सुनते हैं अब हम अगला समुल्लास।

0: उठाएं, द्विज अर्दस्यु आदिक सारे, अखल देश यावत संसारे। महाभारत तक आरज शासन, सब सृष्टि मानत अनुशासन, उनके संतति असि दुर्भागी, ऐसी सोई फिर नहीं जागी।
1: श्रोताओ, लगभग हम समय के अंत तक आ पहुँचे इस कार्यक्रम में, और हम 11वां समुल्लास प्रस्तुत कर रहे हैं। और 11वां समुल्लास में जो विशेष बात बताई गई है वह यह है कि हम प्रायः जब बोलते हैं कि एक और एक, तो बोलेंगे दो नहीं, एक और एक होता है 11, लेकिन कौन? एक हम आत्मा और एक है परमात्मा। जो आत्मा और परमात्मा के बीच में बहुत ऐसे अंधविश्वास जो इस समुल्लास में बताए जा रहे हैं, वह यहीं पर इस समुल्लास में बात बताई गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, और इससे होने से क्या हुआ कि हम इस प्रकार से सोए, इस प्रकार से सोए कि आज तक हम जागने का पूर्ण प्रयास में हैं, जो है अंधविश्वास के कारण। कहा जाता है कि कुंभकर्ण तो 6 मासी सोते थे, लेकिन जो अंधविश्वास के कारण जाति ऐसे सोए कि जीवन भर इसकी नींद टूट ही नहीं रही है। और इस नींद खोलने के लिए, नींद तोड़ने के लिए सत्यार्थ प्रकाश 11वें समुल्लास। श्रोताओ, समय अभाव है, हम पुनः आपके समय में उपस्थित होंगे। जो हमारा शेष जो है समुल्लास जो बच जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश मास चल रहा है, देश के अंतर्गत हम इसका प्रचार कर रहे हैं। आज हम आपको धन्यवाद देते हैं, आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपने हमारा साथ यहाँ तक दिया। परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना है, सत्य और असत्य को समझने के लिए अपने जीवन में से थोड़ा समय आप दीजिए, और ऋषि मुनियों की पद्धति को अपनाइए, जीवन का कल्याण निसंदेह होगा। हमारा अवभाग्य है कि जो है हमारे

0: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस इस कार्य को आगे चलने में लगे हुए हैं और इन दिनों सत्यार्थ प्रकाश मास अर्थात 1 जून से 30 जून तक हम प्रतिदिन हम घरों में जा रहे हैं, रात्रि सत्संग आयोजन कर रहे हैं गहलोत राजपूत महासभा के तत्वाधान में, और विशेषकर जो युवक युवती हैं उनसे प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं हमारे युवा वर्ग, इस सत्यार्थ प्रकाश के आधार पर हम उनको जीवन का दिशा दिखा रहे हैं। पुनः श्रोताओं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। चमन में रहेगी बहार तो फूल खिलते रहेंगे, जीवन रहे तो हम मिलते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।
1: तो प्रिय श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मंगलाचरण, जिसे हमने गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत किया। हमारे बीच आज स्टूडियो में उपस्थित आचार्य बितुला और श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकालकर आप हमारे इस कार्यक्रम में आए।
0: आपको भी धन्यवाद विद्या जी।
1: और श्रीमती तपस्या शर्मा बितुला जी आपने भी बहुत प्यार से हमें इन कविताओं को सुनाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी धन्यवाद वीता जी।
1: चलिए श्रोताओं तो हमारा कार्यक्रम मंगलाचरण यहाँ पर समाप्त होता है और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने प्रेम पूर्वक हमारे इस कार्यक्रम को सुना। एक और कार्यक्रम तक आगे दीजिए। आप सभी को हमारी ओर से शुभ दिन, नमस्कार।
0: नमस्ते जी।
2: नमस्ते।

0: सभी को नमस्कार। अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। अभी से अभी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार पूनम, श्रोताओं को भी नमस्कार और आदाब। संक्षिप्त समाचारों में स्वागत है। शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। 71 साल के मारी नुएली लोरों और उनके होने वाले दामाद लिनले आजी को कल एक बड़ी मात्रा में सिंथेटिक ड्रग्स की जब्ती के बाद

बीकन अदालत में आरोपी ठहराया गया। उत्तरी प्रांत के आजसू अफसरों ने कल सुबह बिजटोंबो में लिनली आजी के घर पर छापा मारा था। कुल मिलाकर 5 पौसल जब्त किए गए, जिनमें 500 ग्राम से अधिक सिंथेटिक ड्रग्स थी, जिसकी लागत 7.7 मिलियन रुपए की बताई जा रही है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई

0: जाने पर चालकों को के 5 से 10 पॉइंट्स काटे जाएंगे। संबंधित मंत्रालय ने पुलिस के साथ मिलकर इस बात का विश्लेषण किया कि ड्राइविंग के दौरान फोन का इस्तेमाल करने पर कुल कितने चालान काटे गए हैं। परिवहन मंत्री उस्मान महमूद के अनुसार सड़क सुरक्षा की दिशा में इस प्रकार का मूल्यांकन पहली बार के लिए किया गया है। बजट 2026-2027 में खाद्य सुरक्षा एक बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड के महानिदेशक नवीन नदियापाल सिंह के अनुसार मॉरिशस को खाने पीने की चीज़ों के लिए दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी और इसके लिए अपने प्रयासों को तेज करना होगा। उनके अनुसार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई महत्वपूर्ण तरीकों की पहचान की जा चुकी है। सिंचाई की व्यवस्था को बेहतर करना, किसानों के लिए मजदूरों की उपलब्धता आसान बनाना, बीजों एवं खादों पर सब्सिडी देना, लैंड बैंक प्रोजेक्ट के जरिए खेती के लिए और ज्यादा जमीन उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। विदेशी स्तर पर हम देखते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते ईरान ने अमेरिकी सहयोगी देशों बहरीन और कुवैत पर ताबड़तोड़ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इसके बाद मध्य पूर्व फिर से क्षेत्रीय युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। शनिवार को हुआ यह हमला अमेरिका की ओर से शुक्रवार देर रात ईरानी ठिकानों पर की गई हवाई हमले के जवाब में किया गया। इस भीषण हमले के बाद खाड़ी देशों में दहशत का माहौल है। ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब पिछले कई हफ्तों से पर्दे के पीछे चल रही बातचीत और कूटनीतिक प्रयास पूरी तरह से बेपतरी हो चुके थे। तो ये थी अब तक की खबरें, आप लोगों ने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार। कॉन डोमेंग रोड पिछे राफ्रे में 68 साल की 68 years old की श्रीमती मीला रंजीत पैदाइशी नाम दसुआ और जिन्हें सब लोग मीला के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके बेटे श्री विशाल रंजीत के घर कॉन्डोमेंग रोड पिचिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिचिराफ्रे मो मस्काल की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। रॉयल रोड ग्रांबोआ में 87 साल के श्री की सुन बंधु जिन्हें सब लोग श्री की सुन के नाम से भी जानते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनके दामाद श्री दानन गुरापा के घर रॉयल रोड ग्रांबोआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ग्रांबोआ की श्मशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। इन सभी शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस।

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा नहीं। मेरे अजीज सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहु। उम्मीद है अल्लाह तबारक व ताला के फजल व करम से आप खैर व आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, माह ज़ुलहिज्जा हमारे दरमियान जारी व सारी है। आज इस माह मुबारक की 20 तारीख है। आपने गौर किया होगा कि वक्त का काफिला बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। अभी देखते ही देखते ये महीना भी गुज़र जाएगा और नया इस्लामी साल शुरू होगा। माह मुहर्रमुल हराम की आमद होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी हिफ्ज़ व अमां में रखे और रहमत भरी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। सामईन, ये रेडियो मॉरिशस है और फ़िलहाल आप अपना उर्दू प्रोग्राम बज़्म अकीदत समात कर रहे हैं। निसार अख्तर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। हस्ब मामूल आज भी आप लोग अपने पैगामात, अपनी फरमाइशें, अपनी दुआएं हम तक पहुंचा सकते हैं। 5251

1-700-5-5251-7005 पर याद रहे सबसे पहले अपना नाम पता फिर पैगाम भेजिएगा। हमें आपके पैगामात का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। आइए इस बज़्म का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करते हैं। बाग़ौर व अदब समात फरमाइए।

सामईन कराम, अभी आपने कलाम पाक की तिलावत समात फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह, इन दिनों हुज्जाज कराम हज की अजीम रूहानी सफ़र के बाद अपने अपने घर लौट रहे हैं। ये वो लम्हा होता है जब हम उनकी मुस्कुराहटों में रज़ा इलाही की झलक देखते हैं, उनकी आँखों में रूहानियत की रोशनी महसूस करते हैं और उनकी बातों में हज के तजुर्बात की गहराई सुनते हैं। लिहाजा हम सबको उनकी दुआओं में हिस्सा लेने की तरगीब इरशाद फरमाई गई है। आइए सामईन, आज का पहला पैगाम लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वाकवा से मैं शहनाज। आपका प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है, खुदा आपको यूँ ही हिम्मत और ताकत दे और आप कामयाबी हासिल करें। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आमीन, क्योंकि सुबह सुबह इस तरह का पैगाम मिलना

वाकई दिल खुश हो जाता है। अब बहुत बहुत शुक्रिया मैसेज पेश करने के लिए, शुक्रिया इस सारे सवाब मेरे वालिदैन के लिए। अल्लाह ताला आपके वालिदैन को की मगफ़रत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। तो ये रहा ये अगला कलाम, बल्कि ये हम्द बारी ताला आपके नाम।

सामईन कराम, हुज्जाज कराम मदीने से मग़फ़िरत की सनद लेकर अपने घर वापस आते हैं। ये लम्हा खुशी, शुक्रगुजारी और दुआ के हैं। आइए हम उन मुक़द्दस मेहमानों का दिल से इस्तकबाल करें और उनके सफ़र की बरकतों से ख़ुद भी फैज़याब हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हज को अपनी बारगाहे अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। सामईन, अगला पैगाम हमें मोताए ओगी से मौसूल हुआ है। मोहतरमा शिरीन हमें लिखती हैं कि आज मेरी नानी मरहुमा सलमा बुलुक को इंतकाल हुए एक साल गुज़र चुका है। बुलुक फैमिली में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को अपनी बेपाया रहमत के साए में जगह अता फरमाए और उनकी कब्रों को नूर, सकीनत और दायमी रहमत का गहवारा बनाए, आमीन। और आखिर में उन्होंने कलाम की फरमाइश की है, कलाम काफ़ी मशहूर हैं, कब्र जिस दम मेरी तैयार हो जाए। तो आइए अगला कलाम आपके नाम।

तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुना यारब, तौबा की उम्मीद पर हो चुके बहुत गुना यारब, मोहलत तो मिल रही है तौबा की तौफीक भी अता कर। सामईन कराम, उर्दू महफिल बज़्म अकीदत में निसार अख्तर एक बार फिर आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करता है। एक ऐलान गौर फरमाइए। हलकाए कादरी इशात इस्लाम की जानिब से सनीचर 13 जून को 4:15 बजे से शाम के 6:30 बजे तक अलीमिया कॉलेज हाईलैंड्स फिनिक्स के कैंपस में मुबल्लिग़ इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुहम्मद अब्दुल अलीम सिद्दीकी रहमतुल्लाही का उर्स मुबारक मनाया जाएगा। आप सभी को शिरकत की दावत हैं। सामईन कराम, याद रहें आप अपने पैगामात, अपनी दुआएं, अपनी फरमाइशें हम तक पहुंचा सकते हैं 5251-7005 पर। तब तक के लिए ये कलाम आपके नाम।

सामईन कराम, हज का सफ़र हमें सिखाता है कि दुनिया की रंगीनियों से बेपर्दा होकर हम अल्लाह तबारक व ताला के सामने किस तरह आजजी और इनकसारी से पेश आएं। एक हाजी का सफ़र हम सब के लिए मशगले राह है। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि वो हाजियों के दिलों में ईमान की रोशनी, सब्र की ताकत और तकवा की

दौलत भर दे, उनके हर कदम को अपनी रजा का जरिया बनाए और उनकी जिंदगियों को अपनी हिदायत से मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सामीन, अगला पैगाम हमें कौचे मिलिते से मौसूल हुआ है मोहतरमा गुमानी की तरफ से। उनका ये पैगाम है कि कौचे मिलिते में जितने भी लोग, जितने भी मरहूम और मरहूमीन इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। तो हम दिल से दुआ करते हैं कि रब कायनात सभी मरहूमीन को अपनी मगफरत, अपनी रहमत और अपनी दायमी नेमतों में जगह अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और सामईन, आप भी इसी तरह अपने पैगामात, अपनी दुआएं हम तक पहुंचा सकते हैं इस नंबर पर 5251700, 5525170005 पर।

मोहतरम सामईन, हज के बाद हाजियों की ज़िंदगी में एक नया आगाज़ होता है। उनकी रहनुमाई, मशवरे और तजुर्बात हमारे लिए कीमती ख़ज़ाना होता है। हज के बाद हाजियों की ज़िंदगी में जो तब्दीलियां रोनुमा होती हैं, वो ना सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे मुआशरती निज़ाम पर असरअंदाज होती हैं। ये सफ़र इंसान को अल्लाह तबारक व ताला के और करीब ले जाता है। तो आइए सामईन पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। कातबून से मोहतरमा यास्मीन हमें लिखती हैं कि उन तमाम हुज्जाज कराम को मेरी तरफ़ से सलाम जो हज के अजीम सफ़र के बाद वापस आए हैं। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। और ख़ास आखिर में ख़ास एक कलाम की फरमाइश सुरैया और हाजरा के लिए। तो आइए ये अगला कलाम हाजरा और सुरैया के लिए मुलायजा फरमाएं।

सामईन कराम, आइए पैगामात का सिलसिला जारी रखते हैं। अगला पैगाम हमें पोर्टलुई से मौसूल हुआ है मोहतरमा फ़ायज़ा दल्लू की तरफ से। दल्लू कोयगाची फैमिली में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं उनके लिए इसाले सवाब, बिलखसूस इसराफील मरहूम इसराफील माजी के लिए जिनको इंतकाल हुए बस 8 महीने गुजर चुके हैं, अल्लाह ताला उनकी मगफ़रत फरमाए। अगला पैगाम हमें कातबोन से मौसूल हुआ है मोहतरमा वाहिदा जीवन की तरफ से। हुलाश जीवन और बुलाकी फैमिली के लिए एक कलाम, इंशाल्लाह अभी एक कलाम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और कौदिमास पावे से मोहतरम सलीम हमें लिखते हैं कि तमाम मरहूमीन के लिए इसाले सवाब, ख़ास तौर पर दस्त मोहम्मद कुदाबकस और गुलामन फैमिलीज़ में जितने भी लोग इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मगफ़रत फरमाए, आमीन। अल्लाह तबारक व ताला मरहूमीन की ख़ताओं को माफ़ फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके नामाए आमाल को नेकियों से भर दे और उनके हिसाब को आसान और अंजाम को बेहतर अता फरमाए, आमीन। और अगला पैगाम हमें पाए से मौसूल हुआ है जनाब मोहसिन की तरफ से। उन्होंने बस एक कलाम की फरमाइश की है तमाम हुज्जाज कराम के लिए जो इमसाल हज के बाद वापस आए हैं। ये कलाम जिस कलाम की फरमाइश उन्होंने की है वो मरहूम रशीद आज़म साहब की ज़बानी है। तो आइए ये अगला कलाम जनाब मोहसिन के नाम और तमाम हुज्जाज कराम के नाम।

मोहतरम सामईन, इसी आखिरी कलाम के साथ हमारी आज की बज़्म अक़ीदत नशरियात अख्तिताम पज़ीर होती है। उम्मीद है आपने आज के प्रोग्राम को ज़रूर पसंद फरमाया होगा। आपके पैगामात और दुआओं का बेहद शुक्रिया। इसी के साथ हमसे जुड़ते रहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए, आमीन। सामईन, इन्हीं दुआया कलिमात के साथ निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार है। दिल नादाँ को ये रुख्सत गवारा नहीं, मगर यही रस्म दुनिया है। मगर यही वादा है कि अगले इतवार को फिर हमारी मुलाकात होगी। आखिर में हमें एक पैगाम की फरमाइश हासिल हुई है मोहतरमा रज़िया इस एल जी की तरफ से, जो पाए की रहने वाली हैं। वो मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी की एक नात शरीफ़ सुनना चाहती हैं। तो आखिर में आइए ये कलाम आपके नाम, और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह।

0: Number four.
1: ஆல்பம் நோவால வரும் அடுத்து வரும் பாடல்.

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: लीजिए सुनिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ। खौसा के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि आगामी सोमवार 8 जून को दिन के 9 बजे से शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। जैसे ही सभी मरम्मत कार्य पूरे हो जाएंगे, पूर्व सूचना के बिजली की सप्लाई को जारी कर दी जाएगी। सीबीएन सभी असुविधाओं के लिए अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो प्रिय श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियाँ।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्वर तरंग,
2: स्वर तरंग,

听众朋友，接下来为大家送上的是十五的月亮，好，大家一起来收听。

नमस्कार श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए, इस समय शाम के 4:13 हो चुके हैं। हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती हैं पूजा। तो चलिए आज हम और आप कार्यक्रम में कुछ गहरी बात करते हैं। आज का विषय मैंने रखा है जज्बात, जिस पर बीतती हैं वही जानता है। आज हम और आप में हम बात करेंगे एक ऐसे शब्द की जो दिखाई नहीं देता लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी को प्रभावित कर देता है, वह शब्द है जज्बात। कहते हैं जिस पर बीतती हैं वही जानता है, दर्द का वजन कितना होता है। दुनिया तो सिर्फ चेहरा पड़ती है, दिल के अंदर क्या चलता है यह कौन जानता। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन भीतर कहीं टूट रहे होते हैं। लोग कहते हैं इतनी सी बात पर परेशान क्यों हो, लेकिन उन्हें क्या पता

कोई लड़ाई लड़ रही है लड़ रहा हो, कोई चुप से सह लेता है, तो कोई गुस्से से भया करता है, और तो कोई जज्बात से। आइए, आप अगर आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हो, कोई ऐसा जज्बात जो आप हमारे साथ चर्चा करना चाहते हैं, हम और आप कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हैं। और नंबर तो वही है 4028085 पर कथों में सेंक पर आप अपना अनुभव, अपना जज्बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जिस पर बीतती है वही जानता है। इस लाइन अपने आप में बहुत गहरा है। बात करते हैं

0: कहा जाता है माँ अपने बच्चों के लिए एक उस मुस्कान के लिए कितनी रातें जागती है, एक पिता अपने परिवार की खुशियों के लिए कितने सपनों का और अपने खुद के सपनों का गला घोंट देता है, एक बेटी कितनी बार अपने आंसू छुपाकर मजबूत बनने का अभिनय करती है, एक बेटा कितनी बार अपने दर्द को मैं ठीक हूँ कहकर दबा देता है। सच तो यह है कि जिस पर बीतती है वही जानता है। आइए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
1: हेलो प्यारी सुजा जी, नमस्कार।
0: नमस्कार वीना जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ मैं ठीक हूँ, एक अखंड रामायण में गई थी तो अभी अभी घर लौटी हूँ, तो जब रेडियो ऑन किया तो आपकी आवाज सबसे पहले आई।
0: बहुत धन्यवाद।
1: तो हाँ, तो मैंने सुना विषय, यही तो बहुत गंभीर भी है और गंभीर नहीं भी है। क्योंकि देखिए, मनुष्य जो है वो एक संवेदनशील जीव है, उसके हृदय में बहुत सारी संवेदना होती है, जज्बात जो आप बोल रही है हिंदी में हम उसको भावनाएं बोलते हैं, भावना। तो सभी के मन में सद्भावना सब तरह की भावनाएं होती है
0: जी।
1: तो उन भावनाओं के ये हम पे निर्भर करता है कि हम अपनी भावनाएं किस व्यक्ति पर किस तरह से व्यक्त करें, समझ रहे हैं ना
0: जी।
1: और हमेशा क्योंकि देखो हमारे मन में वो करुणा की का भाव है, क्रोध का भाव है, प्रेम का भाव है, मतलब जितने रस है उतने भाव होते हैं। किसी को देखकर हम दुखी हो जाते हैं, किसी को देखकर हम हमें दया आ जाती है, और किसी को देखकर हमें क्रोध भी आ जाता है कभी कभी। ये सब भावना ही भाव ही है ये सब। तो हमेशा हमको सदा मतलब अपनी भावनाओं को और किसी को बोलने से पहले भी अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है। ये जानती है ना, कभी मानो किसी ने आपको कुछ कह दिया या आप आपे से बाहर हो गई या अपने नियंत्रण में नहीं रहा, तो जीभ जो है वो तो दोधारी तलवार है कहा जाता है ना
0: जी।
1: तो काटती ही काटती है, तो संभाल कर बोलना चाहिए। भावनाओं को व्यक्त करने से पहले, जज्बात को बताने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है। सोच कर अगर हम बोलेंगे तो किसी को ठेस नहीं लगेगा, किसी को दुख नहीं दे पाएंगे हम हमेशा। इसीलिए मनुष्य को हमेशा जो भरसक हो सके इसे कहा जाता है कि हमें सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता भी एक भाव ही है, एक भावना ही है हमारे हृदय में किसी के प्रति। हम उसको मतलब उजागर उतना नहीं करते हैं, लेकिन हम वो हम खुद उसे अपने आप में सहम कर उसे प्रयोग करते हैं। मतलब कोई कुछ खराब उल्टा सीधा भी बोल देता है तो हम कैसे बोलते हैं, हमें बहुत पेशेंस है, हमने सह लिया उसकी बातों को इस तरह से। तो हमेशा ये है कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, बोलने से पहले किसी को कुछ भी, क्योंकि भावनाओं

0: आदमी दुखी भी हो जाता है और जैसे भावना से हिंसा भी हो जाती है। हिंसा सिर्फ तलवार शस्त्र से नहीं होता, बातों से भी होता है, भावनाओं से। तो अच्छे से भाव रखें हम सभी, हम सब भगवान के संतान हैं और भगवान ने हमें भावनाएं दी है तो उसे सही जगह पर प्रयोग करना चाहिए जहाँ चाहिए। लेकिन सबसे जो है अच्छा और सद्भावना रखें, किसी के प्रति दुर्भावना न रखें, मेरा यही कहना है। क्योंकि मैं औरों को भी मौका देना चाहती हूँ, ऐसे तो इस विषय पर बहुत विस्तृत विषय है, ये बोल सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं और भी, लेकिन औरों को भी मौका, जैसे कि आप 2-3 मिनट देती है तो मैं उसका आदर करते हुए आपसे यही कहूंगी, सभी को, सभी के हृदय में भगवान सद्भावना दे, सद्भाव दे, सभी सद्भावना में भरे पूरे रहे और सबके लिए मन, सबके दृष्टिकोण अच्छा रहे, कोई किसी के लिए बुरा न।
1: बहुत बहुत धन्यवाद वीना जी, आपने इसका जो है बहुत अच्छी तरह से व्याख्या भी की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कहेंगे शुभ संध्या।
0: पूछ रही है और इसी तरह मैं बोलती हूँ ना, जब आप कोई, मैं आप सोच ही रही थी, जल्दी जल्दी मैं लौटी घर तो मैं सोच रही थी पता नहीं यार कौन सा विषय होगा। मैं कान लगा कर, कभी कभी रेडियो में खराबी आ जाती है तो खर खर आवाज आती है, तो मैं ध्यान से सुन रही थी। तो भाई इसके लिए मैं बधाई दूंगी कि आप बहुत सभी ओर जाते हैं, सभी लोगों से मिलती है, आप जो काम करती है आपका काम ही ऐसा है, लोगों से मिलना जुलना होता है, बगल में वातावरण भी कैसा होता है ये भी आप देखती है, आप सुलझी हुई है, पढ़ी लिखी है, खुशी है, इसलिए आप अच्छी अच्छी जो विषय रखते हैं तो सभी प्रसन्न होते हैं आपसे और आशीर्वाद भी देते हैं, मेरा भी आशीर्वाद सदा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे शब्दों के लिए वीना जी। और आज मैंने जज्बात इसलिए रखा क्योंकि हर कोई नहीं समझ पाता किसी के जज्बात को, सब कुछ बोल देता है, कोई आपसे मिलता है तो बोल देता है हाँ ये तो कुछ ऐसे पल हैं बीत जाएगा, पर जिस पर बीतता है वही जानता है।
0: लेकिन हम इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, अपने मुख खोलने से पहले हमें बहुत सोचना पड़ता है, किसी की, हम अपनी भावना से किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाए, चोट ना पहुँचाए, ये मुख्य बात है।
1: क्योंकि हर किसी को समझना हर किसी की बात नहीं।
0: हाँ ये तो सही है, क्योंकि सबका अपना अपना दुख है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपनी अपनी प्रॉब्लम,
1: अपना एक संघर्ष है,
0: सब अपने अपने जगह में शायद ठीक ही होंगे क्योंकि सभी अपनी अपनी अपनी उलझनों में उलझ रहे हैं।
1: हाँ।
0: सबकी अपनी समस्याएं होती है ना
1: जी,
0: तो इसलिए हम किसी के मन के अंदर तो नहीं झांक सकते, लेकिन जहाँ तक, कभी कभी ऐसा भी होता है पूजा जी कि आपको ये अच्छी भावना से अगर आप किसी भाव दिखाते हैं किसी, तो किसी का जीवन सुधर भी जाता है और उसको रास्ता भी मिल जाता है। ऐसा भी होता है,
1: ये तो है।
0: ठीक है बेटी जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, शुभ संध्या आपको भी,
0: बहुत धन्यवाद।
1: एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो
2: हेलो बहन जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
2: मैं हूँ देवानंद।
1: देवानंद जी आपका स्वागत है हम और आप कार्यक्रम में, और आपका क्या कहना है, कोई अनुभव, कोई जज्बात, कुछ विचार आप बांटना चाहते हो हमारे साथ तो आपका स्वागत है।
2: देखो हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ घटनाएं होती रहेंगी, कोई भी व्यक्ति नहीं है इस संसार में जो कह सकता है कि उसके जीवन में कोई घटना अच्छा या बुरा नहीं हुआ, ये कोई नहीं कह सकता। ठीक, लेकिन मेरा विचार यह है कि हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। किसी का सुनते हैं ना, अरे तुम तो बहुत जज्बाती हो, यानी कि हर छोटी छोटी बात में वो क्या होते हैं, कुछ न कुछ परेशान हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, कुछ न कुछ, कभी किसी ने खूब उसे क्या कहे, बहुत प्रशंसा किया, इससे भी लोग जज्बाती हो जाते हैं, वह अपना संतुलन खो देता है, और कभी कभी कोई बेकार में प्रशंसा करते हैं आपको बस अपने वश में करने के लिए। तो मेरा जो विचार है, सभी के जीवन में घटना आते रहते हैं, लेकिन हमें उन घटनाओं को अपने मन से संभालना पड़ेगा, अपने मन को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, ताकि वे जो कठिन समय हैं या बहुत खुशी के भी समय हैं वो हमको प्रभावित न करे और हमारा जो संतुलन है उसे हम खो न

0: और समय के साथ साथ मानिए जब जज्बात कहते हैं तो ज्यादा हम निगेटिव नकारात्मक दिशा से नकारात्मक
1: भाव को सोचते हैं,
0: भावना से सोचते हैं, यानी कि निगेटिव इमोशंस, डर, भय और कुछ खो गया, इससे हम सोचते हैं। तो समय के साथ बहुत कुछ जो है वो हम पर उतना प्रभाव नहीं करता। मैं नहीं कहता हूँ, चोट भी लग जाते हैं व्यक्ति को तो समय के साथ वो सूख जाते हैं, लेकिन एक निशान छोड़ जाता है। लेकिन मेरा जो विचार है, कोई भी परिस्थिति अपने जीवन में आए उसको हम पर बहुत उस प्रभाव को हमको नियंत्रण में रखना चाहिए और अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए जब तक हमें परमात्मा इस स्थिति पर रखते हैं, और मन को भी बलवान करना चाहिए। कभी कभी जो विपरीत परिस्थितियां आते हैं जीवन में वो हमें बलवान बना देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है, पूर्व में हमने जो एक घटना सोचा था और उस समय जब घटना होता तो बहुत प्रभावित हुए, अब सालों बीतने के बाद सोचते अरे यही घटना जो है इससे मैं प्रभावित था, अरे ये तो बेकार में प्रभावित हुआ। तो जीवन व्यक्ति के जीवन में कठिन परिस्थितियां आते हैं, बहुत खुशी की परिस्थितियां भी आते हैं, तो जीवन हमारा जो है उसे चलना चलते चलते रहना चाहिए। और एक बात और कह दूं, ये जो है शास्त्र की बात है, जो व्यक्ति ने परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है, दो कारण दिए, एक तो भोग के लिए यानी पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उनके फल को पाने के लिए, और दूसरा जो है मोक्ष की प्राप्ति के लिए परमात्मा संसार में। और मोक्ष की प्राप्ति तभी हो सकेगा जब हम अपना मंत्र पूर्व रूप से नियंत्रण में रखते हैं। अब वो सोचो जब जो विषय है जज्बात कह रहे थे, तो अर्जुन कितना जज्बात हुआ था वो कुरुक्षेत्र में, ये सोचो।
1: बहुत अच्छा उदाहरण दिया है आपने, बहुत अच्छा उदाहरण।
0: हम उसके सामने खड़ा है भीष्म पितामह, और उसे भीष्म पितामह पर तीर चलाना पड़ा है। तो सोचो आप अर्जुन की जगह में जाओ, और कोई भी श्रोता सुन रहे हैं अर्जुन की जगह ले लो, तो सोचो वो अर्जुन जो जज्बात था, कृष्ण ने कैसे अर्जुन को ज्ञान से अपने मन को वश में करके कहा अपने मन को वश में करो, तब वही अर्जुन जो अपना सिर सब कुछ नीचे रख दिया था, तब कहा था कि मैं युद्ध करूंगा। जज्बात ठीक है, हम सोचते हैं सभी के जीवन में कठिन परिस्थिति हैं, तो हमें उनको नियंत्रण में कोशिश करना चाहिए। और जीवन का जो उद्देश्य है, परमात्मा ने हमें संसार में भेजा है अपने मन को पूर्ण रूप से बलवान बनाकर उसे नियंत्रण में लाना है। धन्यवाद सभी को, नमस्ते।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद जी, और आपका आपको कहेंगे शुभ संध्या। और एक और श्रोता है लाइन पर, उनका भी हम स्वागत करते हैं। हरीश जी प्रणाम, नमस्ते।
2: नमस्ते पूजा जी,
1: कैसे हैं आप?
2: मैं कहूँगा धन्यवाद ये शब्द, ये विचार, ये विषय रखने के लिए, ठीक हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विना जी ने कहा, जो ये भाई अभी कहा, मैंने बहुत कुछ लोगों से सीखा है। और मेरे भी विचार ये है कि लोगों को समझने से पहले हम अपने आप अपने आप को समझना चाहिए। मैं क्या हूँ, किस तरह से जी रहा हूँ, व्हाट प्रिंसिपल्स इन माई लाइफ, क्या उसूल है हमारी जिंदगी में। और एक बात अभी अभी हमें याद आ रहा है, जब हम पोम्पो में थे, बहुत से पुस्तक पढ़े थे गांधी जी के लिखे हुए, तो एक शब्द हमारे मन में आ गया, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जो है अपने जो जज्बात उभर रहा है उसको हम कंट्रोल करें। तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आत्म अपने शक्तिमान होना चाहिए, अपने आप अपने आत्मा में शक्तिमान होना चाहिए। ये सब हमको मिलता है अगर हम पूजा पाठ में रहते हैं, प्रभु के याद करते हैं, इसी तरह। लेकिन जज्बाती, और एक बात एक भाई ने कहा है, संतुलन बड़ी इम्पोर्टेंट, इक्विलिब्रियम, बैलेंस खुदी पा, व्हाटएवर जो भी हमको जज्बात आता है हमको एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए, हमको बैलेंस के जैसे

0: इसमें तोड़ना चाहिए। क्या क्या अच्छा है, क्या नहीं बुरा है, क्या हमारे ही अंदर कुछ है, क्या हमारे बात है, माने द वे आई बिहेव रॉन्ग, और यह जो बात जो वो हमारे मित्र कर रहा है, जो हमारे वाजे कर रहा है, वो ठीक है। तो हमको सोचना चाहिए, अगर हम सोच विचार करें तो हम जज्बात से उबर नहीं जाएंगे, हम एग्जाजरेट नहीं करेंगे, अपनी जज्बात को कंट्रोल कर पाएंगे, और कोई कैसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव थिंग्स विल नॉट हैपन। और ये भाई ने कहा निगेटिविटी, निगेटिविटी आई हेट निगेटिविटी, निगेटिव से यह निगेटिव, और टू टॉक टू ना फैला बाबू, टू ना फैला बाबू, टू ना बाबू, नो नो नो नो नो नो, हम सब को में कोई गुड है, कोई बाद है, हमारे अंदर में है जिव्य और दिमाग, लेकिन कोई ये समझ नहीं पाते और कोई एग्जाजरेट करते हैं, रिमाल प्लीज रिव्यम वॉज। तो हमको ये संतुलन इक्विलिब्रियम रखना चाहिए, और हमेशा सेल्फ कंट्रोल जितना हो सके अपने जज्बातों को कंट्रोल में रखें, वही तो हमारे जीवन इजी हो जाएगा, हमारे रिलेशनशिप इजी हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी आपके इस विचार के लिए, और आपको कहेंगे शुभ संध्या। एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी हम सुनते हैं। हेलो हेलो,
2: हाँ बेटी, नमस्ते
1: नमस्ते नानी जी, प्रणाम।
2: बेटी।
1: अच्छा हुआ।
2: अच्छा अच्छे हैं।
1: आली बोला।
2: हाँ तो लोग अच्छा हुआ ना।
1: अच्छा
2: परिवार लोग सब कोई अच्छा बात। किस किस बारे में बेटी बात करा था वह?
1: आज हमनी जज्बात पे, हमनी भावना पर हमनी बात करा था ऐसा।
2: अच्छा बात। अब कैसे परिवार कोई चल आई, कोई अतिथि आई तो के आदर से बैठाई बा, पूछ पाछ कर बा, निमन से ओहू निमन से बतीहन, कोई चा पानी के तैयार कर बा, तब बड़ी भाग से कोई के घरे कोनो परिवार आवेला, और नहीं तो कहाँ कोई आई। हम तो खुशी रही ला हमारे घरे कोई परिवार आई तो कुछ बातचीत कर अब सा, कुछ कोई जो नवा नया नया बात बतियाब सा, जो उनकर यहाँ बीतल है यू बतिया, नवा हमारे यहाँ जो भल बा हम बतियाब, ऐसे ऐसे बातचीत कर बता तनी जीवन में खुशी लगेला, अच्छा लगेला। और का बोल जस्ती बात बहुत अच्छा बा, अतिथि आवे तो के आदर करे के बैठावे के निमन से, पूछ पाछ करे के चाह पानी देवे के, यही बोलत है बेटी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद नानी जी। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो नमस्कार।
3: हेलो नमस्ते पूजा जी।
1: नमस्ते विजय जी, कैसे हैं आप?
3: सब ठीक बा, तू ठीक हो ना?
1: अच्छा बोला।
3: हाँ जितना जना सुनता था, जितना हमके परिवार पर सबके प्रणाम बोलते हैं, और बड़ा निमन में विचार जन सब भाई हरीश भी निमन बोलक, धन्यवाद बोलते हैं, देवानंद भाई भी, अति भाई बहन भी जी अच्छा बतीलक में है। एगो चला हमारे विचार जन हमारे पे सुनल बोलते हम बस कि हमने पगमा जब करे रहे थे चला ध्यान डाले के सुने के निमन से मैं दूसर के एक बार जगह हमने अपन अपन जज्बात के चला हम काबू में रखेंगे, आर धले गो जज्बात के जब पोगमा रखे धले गो खुफिया सटे ढेर कोई बात तो जज्बात संगे खेले लंस बाजने खेल लंस। एगो एगो एगो एग्जाम दे होते धले तू बहुत खुफिया खल धले गो एगो पोगमा मन कर धले विश्वास कर सब निमन से बीत गल, जब फिनाल में तो जज्बात से खेल लंस धले धले धले धले कैसे जितना अपन देपा सब कर सब प्रोग्राम कर सब हो गल, अब थोड़ा दिन में तो जज्बात से खेल सर धले तोर संगे भले बाजने कर लंस तो कोफियांस के धले टूट देलन सा। कितने बार हम देख लें हमरे पर बीतल भाईला तब ये बोला नहीं अपन अनुभव छा देखे हमरे पर बीतल बा कोनो को तैयारी कर देनी में सब कोफियांस सब होगल बात विचार सब निमन से होगल मैं कोफियांस टूट देलन सा मैं ऐसा ढेर बाटे ढेर कोई जज्बात से हमने के जज्बात बा जन के कोफियांस से खेलन सा बहुत इंसान ऐसे बाटे और कैसे को भाई वक्त अपन जज्बात छा कंट्रोल करे हमने ये कुछ बोलेगा गाड़ी कुछ बोलेगा इतना बहुत सोचे हमने ये बस कि अभी के जीवन जहाँ पर बाटे हई कॉन्फियंस हई भरोसा सौ पूसा नहीं बा अभी अभी जो जो जो दुनिया में जीते हमने सौ पूसा नहीं क्या कोई से कॉन्फियंस करेंगे कैसे रहा गाड़ी में सब दिल देते दे

0: लिखा के दे रहे बबी नहीं बा ऑप्शन निशान नहीं बटे अभी जो दुनिया में जत इसे धले को ज चला बहुत सोच समझ के चला हम ये चले गए हम हमार हमार विचार हमार जो पेशोनिल हमार लोग का था पैसा ने उपगाम रख लेवा था हमेशा हर समय के उपगाम रख लेंगे चला कुछ सीखे के कुछ चला लिसो निकाले के पोगामों में बस कि हमने के दोस्त लोग जितना जाना वो लोगों सोच के बोला तुम सा बड़ा बड़ा विद्वान हमने के प्रोग्राम सुना था और अपन विचार देव तुम सा बस कि हमने फोर्स में टेलीफोन लेके नहीं बच्चा आप अपन रेडियो डाल के सुनो ऑप्शन है ना ऐसा नहीं को प्रोग्राम के अच्छा हमने के अपने जीवन में उतारे के अच्छा ना सुने के कहा हमने जब हमने के दोस्त बोला था टे भी जज्बात से खिले वाला ढेर बा ढेर समझना ना ढेर इंसान बा मैं हमने बहुत सबके नहीं है सब फुसा नहीं बोलते बा अच्छा ला बहुत सोच समझ के अपन पाँव आगे रख चला टे एगो चीज बोले का अच्छा सोचे के और हम अपन अंत में बोलते हैं कोई के लोग कोई के जज्बात से नहीं चला खेले के खेले के बाद ये नहीं चला करे जीवन में जीवन में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा चीज है जब कॉन्फिडेंस जब जज्बात से नहीं कॉन्फिडेंस नहीं तो नहीं बात जीवन नहीं हटे हम हमारे विचार है हटे जितना जना सुना था सब धन्यवाद आपको भी धन्यवाद प्रोग्राम लेके आवेल जीवन में बहुत बहुत धन्यवाद शुभ संध्या आपको
1: शुभ संध्या आपको भी विजय जी और बहुत बहुत धन्यवाद इस विचार के लिए आइए एक और श्रोता है लाइन पर उनको भी हम सुनते हैं हेलो नमस्कार
2: हेलो नमस्कार
1: नमस्कार जी कैसे हैं आप
2: धीरे धीरे चल धीरे धीरे बोल तो अच्छी अभी कैसे अभी लेता हूँ जिसे हौस बा सब आदमी के लिए सब गफरी गौते करे और जिद में हड्डी नहीं है ना जब बच्चे बच चला बहुत अटेंशन करे के प्रिकॉशन लेके एगो ची रह कर बता गलती हो जाए सगरो तो आदमी तोहरा अति करे मजा नहीं खुशी रही और बचाए के चला सीखे के कर सीखे के सुलार से नहीं ना इंटेलेक्चुअल से चाहला जो पहरल बा ओकर लगे सीखबा मानिए सीखबा चल चलन सीखबा भावना सीखबा समझना सत्संग और औसिये आदमी और हब्बी के बहुत डिफरेंस बा ना आगे के आदमी बैठका जाता था बहुत चीज सीखा था हब्बी के आदमी बा बहुत कमती बा बैठका हुए तो मोहिश पे ढेर बन हो गल बा अब मजा लिस्ट डांस खोले के तब तक होता हो गल ना लड़का लोग बड़ा हो गल अब सत्संग कहाँ सीखे ओकरा बोलबा अच्छी जाए के तो नहीं जाए समझ ला और चल चलन चाहला है अच्छी करे के सब आदमी के है अब कैसे वो एग्जाम्पल एक बार एगो गोबर बा आगे में तो गोबरवा ढांग दे बता का होइबा तो गोबरवा चाला सुते हो के जाए के ना हाँ और एगो अभी आदमी को नजर अनपढ़ बता ओका संगे ना सब ढेर फ्री कहते हाँ सब तो नहीं है एगो एग्जाम्पल हो जाए और हर जन एगो सिलों से बहुत बड़का मिक्सिंग होली मोन में ना जब एगो एगो आदमी तोरा कुछ एगो अच्छी कर देलक मालतरे दे देलक सिपात मेनासे कर देलक बिना भेद के अभी तब बा तो आदमी बा उसन तो तू जब सिलों से चल जाए बा तब प्रॉब्लम वो नहीं हुई ना समझ ला और लावी बहुत जोली है हमने के चला जिगे करे के बहुत भगवान के हम हमेशा कलाम बहुत भगवान के प्रिय के ला भगवान सब चीज दे ले बा तू जा देखा कौन सा जिगे कर बा की का कर बा देख तू हाँ तू कर बा हाँ ये हमारे को छोटा संदेश है और सब अच्छी लोग के हमेशा करता है और नमस्ते और एगो निमन सौते डाल दिया बाई सोना नोयन के कम दाबी चीज खा ले पी ले और जीवन में है ये तबा काम कर जिया काम कर खा ले पी ले और घूम एगो फुलवारी में है सामने एक दिन है फुलवारी पर ही छोड़ के जाए के तब बहुत बहुत अच्छी है बहुत सागर के है अब भगवान हमके काई नहीं कौन अति आसमान में डाली बहुत धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और शुभ संध्या एक और श्रोता है लाइन पर आइए उनको सुनते हैं हेलो
3: नमस्ते पूजा जी नमस्ते
1: जी आपका स्वागत है बैक से
3: हाँ हम तो राखूबे देखिए टूमी है ये प्रोग्राम करेला ना हो खाना पीना के
1: पुरानिया पकवान
3: हाँ तो हर वॉइस से हम खुशी रहे सुने के कैम तोरा नहीं देखा तो हम वॉइस वॉइस सुना तो हमारा सब अच्छा लगे
1: धन्यवाद
3: नमस्ते एगो जो विचार निकल रहे हम बहन जी हम जो बोला आजकल सब कुछ को मेरे पहले के जीवन में नहीं जैसे हमारे माता जी पिताजी हमारे दादा पंडित एगो निमन खुशियार परिवार सब के सुना तनी से हमने पीती रहनी से मैं आज

0: सबको मजा हो, कैसे है भैया बोला था एगो मूर्ख आदमी के जाने बा एगो आदमी को गर्भवती में है ये बाको मजा वो न जाने था बचाए वो दूसर करके बचाता तो तू नहीं सब बना तो हटा बोली अच्छा बोली विचार बा ओकर संगे नहीं सब लगे राखोस ओकर तो दूसर करी दे विचार बा पीते ओकरा छोड़ देबा तू अपन जीवन जीबा और हम बोली हर रोज चाहना कॉम्प्रोमाइज बिजला जैसे बोली ला सा हर रोज कॉम्प्रोमिक चाहना करे के हमने के संघर्ष चाहना बहुत करे के जीवन में चाहना जाने ये कि कैसे भी हो कहाँ जाके एगो लस कर कहाँ जाके हमने के एगो लस होई को मजा हमने के जीवन में तो लस हमने नहीं चाहब तो खुशी होई के रहे के ना हमने के चाहना हमने के कुल परिवार में निमन से रह के निमन बोली विचार और आजकल कैसे सब कोई तो सौझे हो गल बा अपन काम धाम अपन व्यवहार से आजकल आदमी लोग के बड़ा बड़ा घर द्वार निमन निमन बड़ा पोस बा बेटी में को मजे हो बोली विचार मुंह से जो निकाले लन सब बहुत अनाप शराब ऐसे अच्छा नहीं बा सब बा पहले के जीवन में तो ऐसे मिजे रहनी सा खाना पीना नहीं रहा खूबे मिजे में बोली विचार तो दिल से तो आ हम सब तो खुश हो जाती है मैं आजकल नहीं कैसे एक भाजी बता से सचमुच है जब एक अच्छी बोली वे जाके बोल बा जाने ला ऐसे नहीं करी ऐसे चला तो उ तोरा बोली आई तो ढेर जाने ला हमारे संगे ऊ को मजे ऊ ढेर
1: ढेर
0: जाने
1: भाषण देवता
0: ढेर भाषण दे एगो निमन ये बोली बोला ओकरा भी अच्छी कर दे कैसे बोले लन सब प्रिवेंशन बैठे जान क्यों तो और आदमी ने समझे ला प्रिवेंशन बैठे जान क्यों ओकरे भोले खातिर ओकरे ओकरे भोलापन खातिर ओकरे को मजे ओकर ओकर पॉजिटिव को दे बोला टाइम तो ऊ तो हमरा नेगेटिव ओकरा सुनाता जब हम ओकरा एगो पॉजिटिव वर्ड बोला टाइम तो नहीं सक बात काल आदमी के आदमी ढेर हो गल बा सौझे गल बा
1: ये तो है।
0: हाँ जो चाहे ना रहे कि मजे जब तक हमने माताजी पिताजी हमने के लेके बा हमने के चला लोग के निमन सीमा सीमा बता के और लड़का लोग के चला निमन आदमी के फिर कौते करके जैसे गो भाई जी बोल ऐसे लक्ष्य लोग के प्रोफिस से हो सब कुछ को मजे जो अच्छा बुरी विचार बा और को मजे हो बूढ़ा आदमी वो के चाहे ना फिर कौते करे दादा दादी नाना नानी चाचा चाची उलोक से दूसर कर दे विचार में जब हो विचार लेके है कि विचार से देखब तो देखब एगो बड़ा अंतर बा हम तो खुश हो गए नहीं है विचार बा सुन के जो डाले हवा बहुत खुश हो गए नहीं अच्छा
1: बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा जी
0: अच्छा शुभ
1: शुभ संध्या आपको
0: शुभ धन्यवाद अच्छा
1: आपको
0: बाय बाय टेक केयर
1: नमस्ते। चलिए राधा जी को सुनते हैं। प्रणाम राधा जी।
2: प्रणाम पूजा जी। आज का विषय क्या है पूजा जी?
1: आज का विषय है जज्बात, भावना, भावनाएं, हमारी जो भावनाएं हैं। और एक लाइन है जो मैंने इस विषय से जोड़ा है और वो है, जिस पर बीतती है वही जानता है।
2: हाँ, जिस पर बीतता है वही जानता है, ये हमारी अंदर की भावनाएं जो हम पर गुजरती है ना। हाँ, मैं समझ सकती हूँ। हाँ, ये एक ऐसा विषय है कि सच में यदि आप दुख में हो तो जो दुखी व्यक्ति है ना वही आपको समझेगा।
1: हाँ,
2: जो सुखी व्यक्ति है आप उसको समझाएंगे तो वो तो व्यर्थ की बात है, वो तो समझेगा ही नहीं कि आप क्या बोल रहे हैं। तो अपनी अपनी भावनाएं जो हमारे अंदर, जो हम पर सुख का हो या दुख का हो, जो भी है उसको हम व्यक्त करते हैं, तो हम ऐसे व्यक्ति के साथ हम व्यक्त करें जो उसको समझे, नहीं तो हमें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि लोग आपका उपहास उड़ाएंगे, सोचेंगे कि आप मूर्ख हैं। कैसे है? अभी कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग हमें किसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल व्यक्ति को ही हमें दोस्ती करनी चाहिए, पढ़े लिखे विद्वानों की। लेकिन कुछ लोग मूर्ख नहीं हैं, जो लोग जिन लोगों को हम मूर्ख समझते हैं ना पूजा जी, वो लोग सरल सीधे लोग हैं। वो जितना समझते हैं, जितना सोचते हैं अपने हिसाब से, वो लोग उतना ही करते हैं। ये इसमें पढ़े लिखे विद्वान होना कोई जरूरी, क्योंकि आजकल जितने विद्वान हैं, जितने हम विद्वान मानते हैं, वही लोग आज ज्यादा जरूरत से ज्यादा गड्ढे में गिर रहे हैं। और जो जो लोग सरल जीवन जीते हैं उनका जीवन तो सरलता से बिकता है। वो जिनको कहना है वो आपको साफ साफ आपके मुंह पर कह देंगे, देखिए आपने ऐसा किया, हो गया उनका काम। उनसे आपको कोई वैर गैर नहीं है, किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं है आपके साथ। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत समझदारी के साथ आपको समझाएंगे, देखो ऐसा कर, लेकिन बाद में देखेंगे तो वही कहाँ है, आपसे भी नीचे है वो। तो इसलिए अपनी भावनाओं को हमें जानना चाहिए, हमें किसके व्यक्त किसके सामने व्यक्त करनी चाहिए, किसी भी आदमी को अपने से

0: कम नहीं समझना चाहिए, ऐसी बात है। ये
1: हम्म,
0: नहीं बोलना चाहिए कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये बहुत विद्वान है, बहुत नहीं, और वो एकदम पढ़ा, वो तो कहते जाहिल है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने सबको बराबर बनाया है, वो आदमी केवल सरल और सीधा है, इतना समझना चाहिए। ठीक,
1: बहुत
0: शुभ
1: बहुत
0: संध्या
1: धन्यवाद,
0: आपको,
1: शुभ
0: बहुत
1: संध्या
0: अच्छा
1: आपको
0: जी,
1: भी,
0: शुभ संध्या
1: और
0: आपको
1: इस
0: भी।
1: विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको राधा जी। श्रोताओं, कहा जाता है हम सभी के पास कुछ ना कुछ तो ज्ञान है, बचपन से लेकर बड़े होने तक। हर दिन जिंदगी, जीवन हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, पर आप लोग जानते हैं कि शिक्षा का असली मतलब क्या है? शिक्षा का वो मतलब है डिग्री या सर्टिफिकेट पाना का नहीं, शिक्षा का वो मतलब है जिस तरह से आप लोग दूसरों को समझते हो और दूसरों के साथ आपका व्यवहार आपके शिक्षा को दर्शाता है। वेदों के अनुसार एक लाइन है, अनो प्रदा कृतवो यंतो विश्वतः। हमारे पास सभी दिशाओं से शुभ, कल्याणकारी और सकारात्मक विचार आए। यह मंत्र हमें खुले मन से अच्छे विचारों को स्वीकार करना, सकारात्मक सोच रखना और मानवता के कल्याण की भावना विकसित करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि हर मनुष्य में एक दयालुता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक ही सोचें। यही आपको आगे लेकर कामयाबी की ओर ले चलेगा। चलिए, लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। धनी जी, प्रणाम।
2: अरे नमस्कार पूजा जी।
1: नमस्कार धनी जी,
2: कैसी है आप? ठीक है?
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
2: जी ठीक चल रहा है, प्रभु की दया से।
1: आप हमेशा ठीक रहें, हमेशा खुश रहें, बस यही
2: आप। एक सेकंड दीजिए मुझे, एक सेकंड।
1: अवश्य।
2: हाँ पूजा जी।
1: हाँ जी,
2: माफ कीजिए।
1: नहीं,
2: देखिए पहले के समय में परिवार मिलजुल करके रहते थे, एक घर में। अनपढ़ अवश्य अनपढ़ थे, सभी लोग पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन मिलजुल कर जीना ये बहुत महत्व है। आज देखिए, आज घर में प्रेम नहीं है, प्रेम महान शक्ति है। इस प्रेम से जीने से एकता रहता है परिवार में, तो बहुत कुछ सीख जाते हैं बच्चे किस तरह से। पहली बात तो यही है कि परिवार में किस तरह से जीना, तो बच्चे सीखेंगे। आज घर, बहुत से घरों में शांति नहीं है, आज लोग अपने नाम शांति भी नहीं रखते हैं। आज तक जो जो जिनके नाम शांति है वो वृद्ध हो गए हैं, तो शांति भी नहीं है घर में, बहुत से घरों में। मिलजुल कर जीना प्रेम से, ये नहीं दिखाई देता है बहुत से घरों में। तो आज आजकल मतलब के लिए जीते हैं लोग, पैसे के लिए। परिवार में फूट है भाई बहन में। बच्चे माता पिता को छोड़कर जा रहे हैं विदेश में जी रहे हैं। वृद्ध लोगों को, माता पिता वृद्ध हो गए हैं, उनको देखने के लिए सिर्फ फोन होता है या नहीं भी होता है। हर चीज बिखर गया है, हर कोई अपने कोने में। यही मुझे कहना था, आज यही उदासी है। उदासीपन ये

0: एक इंसान को अच्छी तरह से जीने नहीं देता है, वो हमेशा समस्या में है, भारी बोझ सर पे है, तो वो कैसे जिएगा आनंद से? आनंद नहीं है घर में, यही मुझे कहना था। धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद धनी जी। आज का समाज बहुत तेज हो गया है, सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखाई देता है, हंसते हुए चेहरे, घूमते हुए लोग, सफलताएं, पार्टियां, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि इन तस्वीरों के पीछे कितने अधूरे सपने, कितनी मजबूरियां और कितने टूटे हुए दिल छुपे हो सकते हैं? जो दिखता है असली में वो असलियत नहीं। जख्म तो अक्सर दिख जाते हैं पर दिल की चोट दिखाई नहीं देती। कुछ लोग चलते फिरते मुस्कुराते तो हैं मगर उनकी रूह कभी हंसती नहीं। आज हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग सलाह बहुत देते हैं लेकिन सुनते कम हैं। हर किसी के पास निर्णय है पर संवेदना नहीं। कोई कहता है अरे ये तो हमेशा कंप्लेन करता ही रहता है, पर क्या कोई समझने वाला है, कोई सुनने वाला है? कभी कभी अपने घर में ही अपने पराए हो जाते हैं, तो जाए कहाँ इस जज्बात को लेकर। किसी को देखकर यह मत कहिए कि वह कमजोर है, हो सकता है वह उन लड़ाइयों से लड़ रहा हो जिनकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। किसी को सुख ना दे सको तो दुख भी मत दीजिए। इसलिए कहा जाता है हर जगह आप प्यार बांटिए, लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंत में बस हमारे कर्म ही रह जाते हैं। ये पोस्ट, गाड़ियाँ, स्टेटस, ये सब कुछ समय के साथ धुंधला हो जाएगा। पर एक और भी सच है, आज के लोग मतलबी हो चुके हैं, इसलिए हर कदम फूंक फूंक कर चलना पड़ता है। जज्बात, जिस पर बीतता है वही जानता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 4028085 पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, अपना एक अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो बेझिझक फोन कीजिए। 4028085 पर आप सभी का इंतजार है।

0: बाबूजी धीरे चलना, धीरे धीरे तो हम चल ही तो रहे हैं, पर ये समय दौड़ता जा रहा है।
1: सब कुछ लुटाए।
0: लाइन पर एक श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। प्रणाम श्यामा जी।
2: प्रणाम पूजा जी,
0: आपका स्वागत है। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
2: अच्छी हूँ। तो मैं ये कहूँगी पूजा
0: जी
2: कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है ना, उनका जीवन जो है दुख सुख से भरा हुआ है, तो वह तो दुख सुख के घड़े में पड़े रहते हैं ना। कभी वे सहनशील होते हैं तो कभी वे आपे से बाहर हो जाते हैं, कभी वे भावनाओं में बह जाते हैं।

0: जाते हैं ना, जब वे भावनाओं में बह जाते हैं तो वे आपे से बाहर हो जाते हैं। जब वे आपे से बाहर हो जाते हैं तो वे क्या करते हैं, भड़क पड़ते हैं ना, है ना
1: जी अवश्य।
0: तो वे अपने आप को काबू में नहीं रख पाते हैं। वे क्या करते हैं, उनके मन में क्या है क्या नहीं, वे जो उनके मन में आता है वो बोलने लगता है। वे चुभने वाली बातें बोलते हैं, जले पर नमक छिड़कते हैं, आग में घी डालते हैं। तो यहाँ पर उनकी बोली विचार आपको घायल कर देती है ना। जज्बात में आकर वे खुद पता नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या बोला। जैसे कहते हैं ना, कटा तलवार क्या जाने, गला किसका कटा और क्यों कटा, ना? तो इंसान को जज्बाती नहीं होना चाहिए, अपने आप को संभालना और हालात को देखकर संभलना है, तभी तो एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम शांति बढ़ेगा ना। और हम में धैर्य होना चाहिए, न कि मुंहतोड़ जवाब देते हैं। जब मुंहतोड़ ही जवाब देते हैं तो वही तो आग में घी का काम करता है ना। और सोच विचार करने के बदले हम मजबूर हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं और बात बढ़ती जाती है। हम मननशील प्राणी हैं, इंसान जो होते हैं मननशील प्राणी होते हैं ना। तो बोली विचार से किसी को दुखी नहीं करना चाहिए, किसी को घायल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पर जो कुछ बीतता है हम नहीं जानते उस पर क्या बीत रहा है। हम तो हमने तो उसे घायल कर दिया ना, बोली से तो घायल कर दिया, उस पर तो बहुत चोट लगी, उन्हें तो बहुत चोट लगी, उससे तो बहुत आघात हुआ ना। तो मैं ये कहूँगी कि जो क्षमा योग्य है, जो क्षम्य योग्य है, उसे क्षमा करना चाहिए, और जो क्षमा योग्य नहीं है तो इस पर तो हमें विचार करना पड़ेगा ना। मेरा यही विचार है पूजा।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी इस
0: बाद में। हाँ मैं सोच रही थी क्या बोलूंगी क्या नहीं, तो फिर भी जज्बात में आकर हम पता नहीं क्या क्या बोले जाते हैं, आगे पीछे नहीं सोचते हैं, बड़ों का लिहाज नहीं करते हैं, नहीं जानते हैं हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, और तोड़ कर भी नहीं बोलते हैं, जो मन में आता है वही हम बोल देते हैं। पता नहीं क्या उनका मन दुख रहा है या क्या हो रहा है, ये हम नहीं समझ पाते हैं ना। अब पता नहीं कैसे आपको लगा,
1: मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्यामा जी, और आपको कहेंगे शुभ संध्या।
0: आपको बराबर।
1: जज्बात जिस पर बीतता है वही जानता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। नंबर वही है 4028085 पर अपना विचार हम तक पहुंचाएं। हम और आप कार्यक्रम में कहा जाता है जो इंसान दूसरों को कमजोर समझता है, आखिर में ये कमजोर नहीं, वो खुद सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो बस सुनने वाला अच्छा चाहिए। लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो नमस्ते आशा जी।
2: नमस्ते पूजा जी, और समस्त श्रोताओं को भी मैं सादर नमन करती हूँ।
1: आपको भी।
2: तो ज्यादा कुछ मैं एक दो शब्द जोड़ना चाहती हूँ आपके विषय पर। सच में पूजा जी, जिस पर बीतती है वही जानता है किस पर क्या बीत रहा है। जैसे कि दिल की कभी कभी कुछ जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि दिल की जज्बातों को बयान करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हम कभी कभी किसी को जो हम अपना समझते हैं, जिनको हम चाहते हैं, उनसे हम अपने दिल की जज्बातों को प्रकट करते हैं तो वही हमारे मजाक उड़ाते हैं, हमारे हंसी उड़ाते हैं। कभी कभी सोचना चाहिए, कुछ लोग मासूम होते हैं, भोले होते हैं, पर उनसे हम अपने जो दिल के जज्बात हैं बोल देते हैं तो वो हमारे हमारे जज्बातों को कदर नहीं करते। और कभी कभी जो कुछ लोग बहुत क्या कहते हैं, दिल के साफ भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं,
1: सच्चे होते हैं
2: दिल के कमजोर भी होते हैं। तो ऐसे लोगों के जज्बातों यानी कि उनके जज्बातों को के साथ खेलना नहीं चाहिए, उनकी कदर

0: चाहिए। और एक बात जानना चाहूंगी पूजा जी, ये जो जज्बात होते हैं ना, कभी कभी हम जिंदगी में सही कदम भी उठाते हैं और जज्बात के राह में भर कर कभी कभी हम गलत कदम भी उठा लेते हैं। कभी कभी आजकल इस युग में हम जी रहे हैं, इतनी क्लेश बढ़ जाता है, इतनी चिंताएं बढ़ जाती हैं, कभी कभी लोग धोखा दे देते हैं, कभी कभी ऐसे मुश्किल खड़ा कर देते हैं जीवन में जो नहीं करना चाहिए। जज्बात की राह में बह कर हम वो कदम भी उठा लेते हैं, अपनी जिंदगी को तक को भी खत्म कर देते हैं। तो कभी कभी कुछ भी परिस्थिति आए, बस ये ध्यान रखना चाहिए, ये जो जिंदगी है वो बहुत कीमती है, ईश्वर ने सुख समझ के हमें यह जीवन दिया है। तो जज्बात के राह में बह करके हमें बस ये देखना है कि हम कुछ गलत कदम न उठाए। अगर मुश्किल भी आती है तो सोच समझ कर उसका कोई ना कोई हल, ईश्वर ने दुख दिया है तो उसकी कोई हल भी उन्होंने दी होगी। बस सोच समझ कर हमें उस सही राह को पकड़ कर ही चलना चाहिए और जज्बातों को, अपने भावनाओं को बस दिल में ही रखकर हमें अच्छी राह पर चलना चाहिए और किसी भी बुरे कार्य को करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बस यही
1: बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी इस विचार के लिए, और आपको कहेंगे शुभ संध्या।
0: आपको भी कहूंगी, शुभ संध्या पूजा जी।

0: पर किसी ने सच कहा है, कुछ आंसू आंखों से नहीं गिरते, वे दिल के किसी कोने में जम जाते हैं। कुछ दर्द शब्दों में नहीं ढलते, वे इंसान की खामोशी बन जाते हैं। और आज जरूरत है कि हम लोगों को जज करना कम करें और समझना ज्यादा सीखें। कहा जाता है कि हम इंसान, हम मनुष्य प्यार के भूखे होते हैं। प्यार न मिले तो आदमी क्या से क्या बन जाता है, और ना भी मिले तो बाहर जाकर इस प्यार को ढूंढता है। और ऐसे में कभी कभी उन लोगों से, बुरे संगत जिसे हम बोलते हैं, मैं पड़ जाते हैं। और ऐसे में कभी कभी किसी की जिंदगी भी बर्बाद हो जाता है। जज्बात वो गहरी जज्बात हैं, भाव हैं, जिसे समझना हर किसी के बात में नहीं, हर किसी के बस में नहीं। क्योंकि आज किसके पास समय है किसी को सुनने के लिए, हर कोई अपनी ही धुन में, हर कोई अपने ही जीवन में व्यस्त है। कोई काम के पीछे, शोहरत के पीछे, तो कोई दौलत के पीछे भागता है। घर में भी पराए जैसा व्यवहार संवाद नहीं। और कभी कभी हम अपने माता पिता को भी नहीं समझ पाते। इसलिए जब तक वो हैं, उनके जज्बात को समझने की कोशिश कीजिए, उनका प्यार, उनका जो है सेवा कीजिए। और ये भी कहा गया है, जब कोई अपने जीवन में दर्द से गुजर रहा हो, आपको सुनाने आता हो, तो आप मुंह मत फेरिए, एक का अच्छा सा कान दीजिए उसको, जो सुनने में भी और परामर्श देने में भी सक्षम हो। लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। हेलो,
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते देवी जी, कैसी हैं आप?
1: ठीक हूँ,
0: मैं भी ठीक हूँ। और आपकी मीठी मीठी आवाज सुनकर मैं और भी ठीक हो गई। चलिए बताइए आपका क्या
1: कहना है। मेरा विचार है कि अगर हमें किसी से अनबन हो गई है, तो हमें अपनी समस्या खुद

0: समाधान करना चाहिए, किसी की मदद नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तो किसी अगर किसी से कहते हैं तो वो कहते ऐसे कहो ऐसे कहो, तो हम उनकी नज़रों में और बुरा बन जाते हैं। हमें खुद अपनी समस्या का हल ढूंढ लेना चाहिए, किसी की मदद नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम और बुरे बन जाएंगे। हाँ, खुद किसी की मदद नहीं लेना चाहिए, बस यही यही मेरा विचार है।
1: नहीं देवी जी, मैं आपको यहाँ पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये सच है कि जब तक आपके आपके पास वो सामर्थ्य है कि आप अपने जो समस्या है आप इसका निवारण कर सकते हैं, तब तक आप अपने, जैसे कहते हैं ना कि हम खुद ही अपने जीवन को संवार सकते हैं या फिर बिगाड़ भी सकते हैं अपने कर्मों से, तो जब कोई सहायता दे या फिर कोई सहायता मांगे भी तो सहायता करनी चाहिए, क्योंकि हर कोई के जज्बात जो हैं, भावना जो है एक जैसे नहीं,
0: एक जैसे नहीं,
1: और हर कोई मजबूत नहीं होता, अंदर से कोई टूटा हुआ भी होता है, जहाँ पर वो खुद उसके पास ना कोई सहारा है ना सुनने वाला है, तो वो कहाँ जाए, तो जो भी मिले वो सुनाता फिरता है, है ना?
0: मेरा मतलब है किसी को यूज नहीं करना चाहिए,
1: यूज भी नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपको बुरी बात है या आपको कोई अपना जज्बात सिखा रहा हो, सुना रहा हो, तो उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसके इसी कमजोरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए।
0: ऐसे ही मैं कहना चाहती हूँ।
1: बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, और आपने भाग लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या आपको, बाय बाय।

श्रोताओं, इंसान को उसकी सफलता से नहीं, उसके संघर्षों से पहचानिए। क्योंकि महलों में रहने वाला भी रोता है, झोपड़ी में रहने वाला भी रोता है। फर्क सिर्फ यही है कि किसी के आंसू दिख जाते हैं और किसी के छुप जाते हैं। आज अगर आपके पास आसपास कोई उदास दिखाई दे तो उसे उपदेश मत दीजिए, बस उसका हाल पूछ लीजिए। कभी कभी एक सच्चा आप कैसे हैं किसी के लिए दवा बन जाता है, शायद उसके पास कोई केयर करने वाला भी नहीं। दुनिया में सबसे खूबसूरत इंसान वह नहीं जो सबसे अमीर हो, सबसे सुंदर हो या सबसे सफल हो। सबसे खूबसूरत इंसान वह है जो दूसरे के जज्बात को समझ सके। किसी के हंसी पर मत जाइए, किसी की खामोशी को हल्का मत समझिए। हर चेहरे के पीछे एक कहानी होता है, हर दिन की कोई अधूरी निशानी होता है। जज्बात खिलौने नहीं होते, जज्बात इंसान की दुनिया होते हैं। और सच यही है, जिस पर बीतती है वही जानता है। इसी सोच के साथ अपने आसपास के लोगों को थोड़ा समय दीजिए, थोड़ी मोहब्बत दीजिए, थोड़ी इंसानियत दीजिए, क्योंकि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज है जो आजकल कम होते जा रही है। आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और अपने अपने अच्छे अच्छे विचार देने के लिए। हर कोई ने अपना अपना विचार दिया है और अपने आप को एक्सप्रेस भी किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर किसी का एक कहानी है और एक कहानी में एक संघर्ष छुपा होता है। आइए, इसी के साथ हमारा आप कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। हम बढ़ेंगे तो हर पसंद कार्यक्रम की ओर। जुड़ रही है हमारे साथ रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।

सबको के नमस्ते और ये प्रणाम घरी मिलाते चलिए। इस समय यह शाम के 5:02 हो गल बाते और त्योहार पसंद कार्यक्रम में सबको के हमनी स्वागत करत हैं जा। और जैसे जाने ला कार्यक्रम में सब बजा भाग ले हुए और ई कार्यक्रम में नंबर तो हुई है 4028085 पर 4295 पर नहीं तो सब बजा मिसाजो भेजे मिसाजवा के नंबर वा है और वो है 2251700005 पर। तो सक बजा हमनी के मिसाज भेजे कोनो लानिवेश बातें जन्मदिन बातें कोनो खास इंसान खातिर या फिर तोहर खातिर गमर के गीत सुने चाहत हुआ तो सक बजा हमनी के टेलीफोने करे। तो चला अभी भाई दिला जी खातिर हमनी गीतवा चलावब सा वो बोलले बातें कि ई जीवन में खाली है ये तरह गलबा खाली पीले जिले भैया जिंदगी में का बात। तो चला ई सुना नयान के गावल गीत हमनी सुनी रहा सा तो हर पसंद कार्यक्रम में

तो ढेर कोई हमनी के टेलीफोने करत हवन जा का का चौदह का थोबा का थोबा सैंक पर 4028085 पर और हमनी हम तो खाली है ये मांग करब कि थोड़ा सा धैर्य रखिए अभी जन है लामिनिया के गीत सुना नुयान के गावल गीत की मांग कर ले बाते और ई गीतवा के मांग कर ले बाते रेहाना जी नोथदाम से माला फाउद सुरेखा और ख़ास तौर पर अनीता जी जो नौकर संगतिया हवन उस थाली से सुनेला और गीतवा के बड़ी पसंद करे लंजा तो चला है गीतवा हमनी चलावत हैं जा तुहार पसंद कार्यक्रम में और फिनों से बोला था ऐसा कि सेकंड सेकंड टेन से 005 पर सकबजा मिसाजो भेजे लाइन नहीं मिलाता था हमनी के सकबजा मिसाजो भेजे व्हाट्सएप के जरिए

तो अनीता जी, हवन त्रियोले से और मीरा मोहन के गावल गीत सुने के मन चाहा था वन। और गीतवा खास तौर पर उकर बेटी दमाद और खास तौर पर लैका फैका सब बाती ना, तो उकर सब लैका फैका के है सब डालब से। और है गीतवा खास तौर पर सिया खातिर और अपन नानी के बड़ी पसंद करेला, तो चला है गीतवा हमी चलावब से। और उकर सब लैका सब परिवार और जितना कोई मीरा मोहन कि ई गावल गीत पसंद करे नंजा, ओ लोग के लाइन नहीं मिलता, तो सब खातिर चतनिया।

ई गीतवा के मांग करले हवन गांव के छोकरी ने खुशी बा शहर में गर्ल शादी करे तो चला अभी जो ना है गीतवा हमनी सुनब सा और जितना कोई गीतवा के पसंद करे लंजा सब कोई के बोलब जा सुन गाव गमट कर नाच और हमनी के संग जुड़े रहिया और जितना कोई के लाइन नहीं मिलता क्षमा प्रार्थी हैं और सग बजा हमनी के टेलीफोन करे फिर से 4028085 पर तो चला है गीतवा हमनी सुनी रहा सा।

तो चला नाम जोरब सा सुनीता जी हवन घोंगुप से होकर बहन विमला जी खातिर और साथ में आशा जानू जी श्यामा रघुनंदन जी और साथ में बाते वीना रामफुल जी और नवीन लक्ष्मण जी होकर पत्नी जी खातिर तो चला है गीतवा हमी चलावत है।

भाई देखा था वो ना कितना दुनिया बदल गल बाते। सास के बोला था तू कहा जनब फैशन है तो फैशन है ये बोलल जला शादी करब नहीं तो करब ध्यान से करइय नहीं तो देखा तमाशा। अब चला एगो और गीत हमने सुनब सा और है गीतवा है महेंद्र जी मंगले हवन अपन सभी परिवार खातिर।

रा, ओकर बेटा खातिर रा, और ओकर सब संगतिया खातिर, सब जगमोहन परिवार के नाम। चला है गीतवा हमने सुनी रा सर देशभर जी के गावल गीत।

भाई गीत सुना था ना, गमट करे गल कर मुर्गी चोरी हो गल। ये बात बोला मुर्गियों के बांध के रखत ना, तो मुर्गा नहीं रोवत। चला अभी जितना कोई अपन जन्मदिन मनावत हवन जा सब कोई के एमबीसी के देने से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खासतौर पर गीता जी पोफेयर से पति रोहित और बेटा जोनहर राजीव के जन्मदिन के अवसर पर उकर पत्नी और बेटा हवन।

गणेश और भाई हवन, विमल, कमल, आदित्य, आरव, छोटा जो है जानवी के देने से ओकर चाचा के जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं देवत हवन। साथ में बाते नानी सुखलाल जी और ओकर बेटी ललिता के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। और साथ में बाते रेणुका और रानी, वो लोग के जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं देवत हवन प्रेमिला जी का उदमास से। और साथ में बाते शांता सुकारी जी से जैमिल फोरेसाइड से सुनत हवन जा, वो लोग के नाम हम नहीं जोड़ ले हैं जोड़ब सा अभी। किरण, भावेश, सुदेश, संजना और गीत चल गल बाते। और साथ में देवत हवन

इंदिरा लोटन जी मॉडल बेसे ओकर सब परिवार खास तौर पर इटाली और लंदन से सुना था वन मीरा मोहन के गीत मंगले रलंजा चतनिया और ये गीतवा चल गल बाते तो चला तुहर नाम जो देवा था तो चला अभी है गीतवा खास तौर पर जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन और खास तौर पर खुशी चिंतामणि ओकर जन्मदिन के अवसर पर ढेर सारा प्यार ओकर दादी डोली पापा हवन उदय और साथ में मामा प्रीति और ओकर छोटा सा नन्हा सा मुन्हा सा भाई या राहुल के देने से ओकर जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं ओकर सब चिंतामणि परिवार के देने से ओकर जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।

हैप्पी बर्थडे जितना कोई आज अपन जन्मदिन मनावत हवन जा पूरे एमबीसी टीम के देने से और पूजा के देने से सब कोई के बोला जा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और अभी खातिर शोभा जी पंपले मुझसे हमनी के सुनत हवन भगले भगले चलाल घरे और बोला हवन कब बात करब तो चला तोहर गीत हमनी चला दे ले हैं सब और है गीतवा खास तौर पर तोहर खातिर

चला आप जन हा ढेर कोई के जन रिक्वेस्ट बाते रह गल बा ता हम सब कोई के नाम जन हा गीत में जोड़ देब जितना सकब चलाए तो चलाओ।

गमट के नाम सुनते ही जितना जुन हमनी के साथ देवत हवन, खास तौर पर शैला दादी गौरव्य सुदेश से और हमनी के प्यारी बसंती जी बम्बासा से हमनी के सुनत हवन, बम्बासा से सुनत हवन और गमट से नाचत आऊ जब हंसे लाना तो हमरो हंसा देवेला।

करतार मंगा के कमर टकरिया, कुछ नहीं बाई जीवनवा में, नाचा गावा मुस्कुरावा, ये तरह गलबा चला। गिरवा के मांग कर ले बाते हाईलैंड से देवी जी, ओकर बेटी आल बाते अंजू, काविशा, अश्मित, अक्षिता, सभी कुंजू ब्यागी और मोहन सिंह परिवार, खास तौर पर काजल जी जो हमने के सुना था वन हाईलैंड से, ओकर दोनों बेटी का तीर आशना और दर्शिनी, साथ में ओकर पति पवन सिंह जी खातिर।

तो चला जन्मदिन की शुभकामनाएं दामाद प्रशांत और सासू माँ की ओर से, सालियों पत्नी और रोकर सभी परिवार की ओर से ओकरा ढेर सारा शुभकामनाएं। और अब हम ही सुनब सा किरिंग करांग, और किरिंग करांग की मांग कर ले हवन। देवी जी और ओकर सब परिवार कुमार विशेषर खातिर और है गीतवा खास तौर पर ज्ञान चताहू जी के ओर से, ओकर भाई ओकर सब परिवार जो हाल हवन विदेश से, की गान कुनाल चताहू और साथ में जेना लवना खातिर सभी चताहू परिवार के नाम।

0: तो चला एक वे संगे हमनी तोहार पसीन कार्यक्रम के अंत तक चला हई जा, जितना कोई साथ दिलन जा सब कोई के बुलब जा, बहुत बहुत धन्यवाद और सब कोई के जन फरमाइश रहल चलाने की कोशिश करलन करनी है और जितना कोई के लाइन नहीं मिलल सब कोई के हम क्षमा प्रार्थी हैं। किनों भी तो हर पसीन में जितना भोजपुरी गीत चलेला वो तक गमटवे के गीत चलेला, सब कोई के बोला आप जा नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और अंतिम गीत खास तौर पर धनी जी खातिर और माला सुमारू जी खातिर, साथ में प्रभा जी हुआ ना, शोभा जी हवन वाकवा से, आशा जानू जी हवन, विजय लक्ष्मण जी ओकर सब परिवार रहे और नवीन लक्ष्मण जी खातिर खीरो संगे चलेला। तो चला सबको की बोला जन नमस्ते और शिवरात्रि।
1: रेलगाड़ी हो हाय रे रेलगाड़ी हो, अरे साबुन के

0: नमस्कार, समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। कौंदियाब स्थित अम्मातु के कोविल में आज गन्ने की कटनी की प्रतीकात्मक शुरुआत के अवसर पर विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने गन्ना खेतीहरों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया और कहा कि जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय अगले बजट की प्राथमिकताएं रहेंगी। मई महीने में दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रही, लेकिन कुछ प्रमुख बाजारों में दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था एफएओ की नवीनतम फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। मॉरिशस में कोलोरेक्टल कैंसर के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार 2023 से 2026 के बीच केवल एक वर्ष में इस बीमारी के मामलों में 56% की वृद्धि दर्ज की गई है। और अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। होर्मुज जलमार्ग में अमेरिकी सेना ने 2 ईरानी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। अब समाचार विस्तार से। कौंजाब स्थित अम्मातु के कोविल में आज गन्ने की कटनी की प्रतीकात्मक शुरुआत के अवसर पर विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम, उनकी पत्नी श्रीमती वीणा राम गुलाम तथा कई सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री ने गन्ना खेतीहरों के समर्थन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया। साथ ही बगासी रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन को और बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। डॉ. नवीन राम गुलाम ने अगले बजट की प्रमुख प्राथमिकताओं का भी उल्लेख किया। जिनमें जिम्मेदारी, एकजुटता, आर्थिक मजबूती और सामाजिक न्याय शामिल है। गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि मॉरिशस के इतिहास, अर्थव्यवस्था और पहचान का भी अहम हिस्सा है। नई गन्ना कटाई ऋतु की शुरुआत के अवसर पर कौंदियाब स्थित कोविल अम्मातुके में आयोजित प्रार्थना समारोह में चीनी उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों और हस्तियों ने भी अपने विचार साझा किए। इस दौरान गन्ना क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों, उत्पादकों के योगदान और उद्योग के भविष्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। मई महीने में दुनिया भर में खाद्य उत्पादों की कीमतें कुल मिलाकर स्थिर रही, लेकिन कुछ प्रमुख बाजारों में दबाव बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य और कृषि संस्था एफएओ की नवीनतम फूड प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कुछ खाद्य सामानों के दामों में कमी आई, जबकि कुछ अन्य सामानों के दाम बढ़े हैं। ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में।
1: अप्रैल की तुलना में मई महीने में एफएओ खाद्य मूल्य इंडेक्स में 0.2% की हल्की गिरावट आई है। हालांकि वार्षिक आधार पर इसमें लगभग 3% की वृद्धि दर्ज की गई। वनस्पति तेलों और दूध से बने उत्पादों की कीमतों में आई गिरावट के कारण ये स्थिरता देखी गई, जबकि दूसरी तरफ अनाज और चीनी की बढ़ती कीमतों में बढ़ोतरी आई है। कई प्रमुख उत्पादक देशों में प्रतिकूल मौसम की स्थिति के साथ साथ ऊर्जा और उर्वरक की बढ़ती लागत के कारण गेहूँ, मकई और चावल की कीमतें बढ़ी हैं। शक्कर के दामों में सबसे ज्यादा 7.5% की वृद्धि दर्ज की गई। ये वृद्धि दुनिया के अग्रणी उत्पादक ब्राजील में फसल की स्थिति को लेकर चिंताओं और भारत तथा थाईलैंड में एल नीनो से जुड़े जोखिमों के कारण हुई है। एफएओ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जियोपॉलिटिकल तनाव, विशेष रूप से होर्मुज जलमार्ग जैसे प्रमुख व्यापार मार्गों पर उर्वरक आपूर्ति को बाधित कर सकता है और खाद्य कीमतों पर और दबाव डाल सकता है। भले ही मंडियों को लचीला माना जा रहा है, इसके बावजूद संगठन वैश्विक खाद्य सुरक्षा के जोखिमों को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग कर रहा है।
0: जैसा कि हम बता रहे थे, गन्ना सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि मॉरिशस के इतिहास, अर्थव्यवस्था और पहचान का भी अहम हिस्सा है। नई

गन्ना कताई ऋतु की शुरुआत के अवसर पर कांस्य स्थित कोविलमातुके में आयोजित प्रार्थना समारोह में चीनी उद्योग से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों और हस्तियों ने भी अपने विचार साझा किए और इस दौरान गन्ना क्षेत्र के सामने मौजूद चुनौतियों, उत्पादकों के योगदान और उद्योग के भविष्य को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया और वहां मौजूद

0: हर साल जून महीने के पहले सप्ताह के दौरान गन्ने की कटनी के आरंभ होने से पूर्व कौंजाबली स्थित अम्मा तुकी कोविल में एक विशेष पूजा की जाती है। प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी भी वहां उपस्थित अच्छी फसल के लिए अम्मा का आशीष प्राप्त करने गए। इस तरह अम्मा तुकी के प्रति भक्ति और साथ में उन्हें आभार प्रकट करने के लिए एक का पहला गन्ना अर्पित किया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नौजवानों को कृषि में संलग्न होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के वास्ते खेतिहरों को दी जा रही सुविधाएं की याद दिलाई। इसके अलावा उन्होंने बागा से रिन्यूएबल एनर्जी विकसित करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
1: D'ici 2032, à partir de bagasse et de déchets, ça pourrait représenter à peu près 20% de nos réseaux électriques. Plus nous produisons d'électricité par le même, moins nous produisons de produits pétroliers, moins ça pour nous. Ce qui fait l'initiative, et me saluer, c'est l'initiative Bolches Biomass, qui peut encourager nous à produire l'électricité à partir de coupe de bois, ce que nous appelons wood chips. Et aussi des autres sources d'énergie renouvelable qui peuvent développer l'énergie solaire. Là aussi, je me donne beaucoup d'incentives qui me gagnent l'impression de vous parler. Et prenez en cours, là, vous trouvez. Vous créez Maurice Durable. L'une récit arrive 23,4% énergie renouvelable dans Maurice. 23,4%, ça veut dire presque encore, presque 25%. Mais en 2014 et 2024, qui n'arrive. Maurice et Durand, out. Au lieu de progresser, nous régulons. Disons, nous régulons là. Jodi, pourcentage énergie renouvelable, les moins que 17%.
0: प्रधानमंत्री ने भावी बजट संबंधी प्रमुख पहलुओं को उजागर किया।
1: Responsabilité. Pas au bout de vie populaire, vous êtes respect, là. Solidarité. Efficacité économique, mais avec justice sociale. Justice sociale veut dire que les gens qui sont en difficulté, ils ont continué de tout parti socialiste faire ça. L'objectif, c'est renforcer l'économie mondiale. Retournons quand nous étions renforcés. Assurer qu'ils continuent à gagner la croissance et pour que nous réussissions seulement. Et dans des conditions, nous devons rester unis et nous devons solidaires.
0: हर साल सवन तमिल बेनेवोलेंट सोसाइटी और ओमनिकेन की ओर से इस तरह की प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। इस तरह इस समारोह से गन्ने की कटनी के सीजन का शुभारंभ हुआ।
2: सर्दियों के मौसम में गैस वाटर हीटर के इस्तेमाल के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ जाता है। गलत तरीके से लगाया गया हीटर, हवा के आने जाने की कमी या खराब पाइप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव का कारण बन सकती है। खासकर बाथरूम जैसे बंद स्थानों में एक छोटी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का रूप ले सकती है। इसलिए हीटर का सुरक्षित इस्तेमाल और नियमित जांच बेहद ज़रूरी है। बेहतर स्वास्थ्य की राह अक्सर हमारी परंपराओं और जीवन शैली से होकर गुजरती है। इसी संदेश के साथ महात्मा गांधी संस्थान के इंडियोलॉजी विभाग ने एक विशेष समारोह का आयोजन किया। इस दौरान आयुर्वेदिक पाक कला और आहार विज्ञान पाठ्यक्रम पूरा करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। साथ ही इंडियोलॉजिकल होराइजन्स न्यूज़लेटर के दूसरे संस्करण की भी लॉन्चिंग की गई और कार्यक्रम के में मौजूद विशेषज्ञों ने स्वस्थ जीवन के लिए पारंपरिक ज्ञान और संतुलित आहार के महत्व पर जोर दिया। और मध्यपुर में कई महीनों से चल रहे युद्ध के बावजूद मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मुद्रास्फीति यानी जीडीपी में कमी और आर्थिक विकास में सुधार के पूर्वानुमान है। ज्यादा जानकारी विधिमा सिबुरन के साथ।
3: The key point to take from here is that even after factoring in the impacts of the Middle East crisis, that Africa's real GDP growth is doing well. It will still be above 4.0% at the end of 2026, even if the conflict continues up to 6 months.
4: मुद्रास्फीति में कमी और आर्थिक विकास में सुधार मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक के ये मुख्य पूर्वानुमान है। महंगाई दर 2026 में 6% से घटकर 2027 में 3.9%

0: प्रतिशत होने की उम्मीद है, जबकि इसी अवधि के दौरान आर्थिक विकास दर 2.8% से बढ़कर 3.8% होने का अनुमान है। ये ऐसे परिदृश्य हैं जो परिवारों को कुछ राहत दे सकते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
1: Le pouvoir d'achat pourra sans doute se stabiliser, notamment autour des produits
0: अर्थशास्त्री मनीषा दुखनी बताती हैं, निश्चित रूप से खरीद शक्ति में स्थिरता आएगी, खासकर जरूरतमंद पैदावारों को लेकर, चाहे खाद्य हो, परिवहन हो या बिजली। कंपनियों के लिए 2026 की तुलना में 2027 में अधिक वृद्धि होगी।
1: Une demande intérieure qui sera potentiellement beaucoup plus dynamique.
0: इन उत्साहजनक संभावनाओं के बावजूद अफ्रीकी विकास बैंक ने रेखांकित किया है कि मॉरिशस अभी भी कुछ आर्थिक असंतुलन का सामना कर रहा है। देश में राजकोषीय घाटे बने रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि देश का खर्च उसकी आय से अधिक रहेगा। बजट डेफिसिट में ये अनुमान है कि हल्की सी बेहतर स्थिति होगी जो बजट से शुरू होगी, जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। ऋण बहुत है और फिस्कल कंसोलिडेशन से हम ऋण को कम कर सकते हैं।
1: De dette assez haut, donc avec la consolidation fiscale, on va aussi potentiellement pouvoir maintenir le cap sur la diminution de notre dette.
0: रिपोर्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि आयात अभी भी निर्यात की तुलना में अधिक बना हुआ है। हालांकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आने वाले वर्षों में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है। हमारे ट्रेड बैलेंस का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल से संबंधित है। लंबी अवधि में कीमत कम हो रही है, जिससे करंट अकाउंट में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी घाटा कम होगा। दूसरी ओर पर्यटन और वित्तीय सेक्टर तथा आईसीटी सेक्टर से निर्यात से आय मिल रहे हैं, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जा सकता है।
2: Continue à apporter pas mal de export earnings, donc de revenus. Ça va contribuer aussi à réduire le current account deficit.
0: रिपोर्ट में मॉरिशस को आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के मामले में अफ्रीकी देशों के बीच एक रोल मॉडल के रूप में भी उद्धृत किया गया है। अफ्रीकी विकास बैंक ने विशेष रूप से टैक्स और अन्य सार्वजनिक राजस्व को प्रभावी ढंग से एकत्र करने की देश की क्षमता और साथ ही इसके वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को प्रमुखता से सामने रखा है।
3: ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त करना कई छात्रों को बेहद पसंद है, लेकिन इसके लिए या अन्य विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिला की प्रक्रिया क्या है या वहां पर डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों से संबंधित रिपोर्ट क्या है, इस पर पेश है ये खास रिपोर्ट अदिति अवतार के साथ।
4: The key point to take from here is that even after factoring in the impacts of the Middle East crisis, that Africa
5: ऑक्सफर्ड या हार्वर्ड से डिग्री प्राप्त करना मूल्यवान माना जाता है, लेकिन इसका दीर्घकालिक लाभ इस बात पर निर्भर करता है कि वास्तव में इसका सदुपयोग कहाँ किया जा सकता है। निवास और नागरिकता नियोजन में विशेषज्ञता रखने वाली संस्था हेनली एंड पार्टनर्स के शोध से यही बात सामने आती है। रिपोर्ट के लेखकों का कहना है कि परिवार अक्सर अपने बच्चों को शीर्ष विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन उनके अनुसार वास्तविक रणनीतिक लाभ दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में करियर बनाने के अवसर में निहित है। देशों का मूल्यांकन 6 कारकों के आधार पर किया जाता है, जिनमें आय क्षमता, जीवन की गुणवत्ता, उच्च स्तरीय रोजगार के अवसर और उच्च किस्म की शिक्षा शामिल है। ये सभी कारक मिलकर एक ऐसे प्रश्न का उत्तर देते हैं जिस पर कोई भी विश्वविद्यालय रैंकिंग के लिए ध्यान नहीं देता, यानी किस देश में विश्व स्तरीय शिक्षा उच्च गुणवत्ता वाले जीवन का आश्वासन देती है। रैंकिंग में शीर्ष 15 देशों की पहचान की गई है। स्थिर आर्थिक वातावरण, विश्व स्तरीय शिक्षा प्रणाली और उत्कृष्ट करियर संभावनाओं, विशेष रूप से निजी बैंकिंग और फार्मास्यूटिकल अनुसंधान जैसे क्षेत्रों के कारण स्विट्जरलैंड 100 में से 86 अंकों के साथ सबसे प्रथम स्थान पर है। सिंगापुर एशियाई पूंजी प्रवाह और वैश्विक व्यापार नेटवर्क को जोड़

0: रखने वाले रणनीति केंद्र के रूप में दूसरे स्थान पर हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां उच्च आय क्षमता और उत्कृष्ट रोजगार के अवसर मिलते हैं। ये अग्रणी विश्वविद्यालयों, वैश्विक वित्तीय केंद्रों और नवाचार संचालित अर्थव्यवस्थाओं के अद्वितीय संकेंद्रण को दर्शाता है। कनाडा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध रोजगार बाजार और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के समर्थन के कारण पांचवें स्थान पर है। अवसरों से भरपूर अन्य गंतव्यों में ऑस्ट्रेलिया शामिल है, जो यूरोपीय संघ का प्रवेश द्वार है। संयुक्त अरब अमीरात, जो धन, कारोबार और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभा का प्रमुख विश्व केंद्र माना जाता है, और न्यूजीलैंड, जिसे अपनी क्षमता प्रणाली और जीवन की गुणवत्ता के कारण व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इस रिपोर्ट का निष्कर्ष ये है कि आय का वैश्विक वितरण दर्शाता है कि किसी व्यक्ति की 80% से ज्यादा आय जन्म के समय निर्धारित परिस्थितियों, मुख्य रूप से उस देश से निर्धारित होती है जिसमें वो रहता है।
1: विदेश में अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान को आज 100 दिन पूरे हो गए हैं। हालांकि संघर्ष विराम और बातचीत के प्रयास जारी है, लेकिन युद्ध पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। इस बीच अमेरिका में इस युद्ध को लेकर जन समर्थन लगातार कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, और कई सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश अमरीकी मानते हैं कि ये संघर्ष देश के हित में नहीं रहा और इसका असर अर्थव्यवस्था तथा महंगाई पर भी पड़ा है। और मध्य अफ्रीका में इबोला का प्रकोप तेजी से फैलता जा रहा है, और नए मामलों में अचानक बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार कोंगो और युगांडा में अब तक 471 पुष्ट मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 84 लोगों की मौत हो चुकी है। और चिंता की बात यह है कि केवल 24 घंटों में करीब 100 नए मामले और 20 अतिरिक्त मौतें दर्ज की गई है। देश विदेश की खबरों के बाद आइए अब रजनी बीकर के साथ मौसम का हाल सुनते हैं।
2: मस्कारेंस के दक्षिण में एक काफी जोरदार एंटीसाइक्लोन है, जिसकी वजह से हमारे इलाके पर मौसम हवादार ही है और हमारे इलाके पर ठंड हवा की लहर चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान लगाया जाता है कि आज रात और कल सुबह के दौरान आंशिक रूप से बादल घिरे रहेंगे और रह कर बारिश होगी, मुख्य रूप से ऊंचाइयों पर। दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। दक्षिण पूर्व की ओर से करीब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी, जिनके झोंके कुछ इलाकों पर 65 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुँच सकते हैं। प्रवाह रेखा के उस पार समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। धीरे धीरे कल से ये कमजोर होने लगेगा। दूर समुद्र में और पश्चिमी, दक्षिणी एवं पूर्वी लगुनों में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 16 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 20 और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 और 22 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान 25 एवं 28 डिग्री सेल्सियस के बीच। शाम 5:37 पर सूर्यास्त, जबकि सुबह 6:40 पर सूर्योदय।

0: ऋषि के साथ ये समाचार समाप्त हुई. इसे अब तक पहुंचाने में हमें फिजान और मोहसिन का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे. जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार.
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: रिश्तेआनंद लेन मौला शो में रिश्तेआनंद लेन मौला शो में 72 साल के 72 ईयर्स ओल्ड के श्री सुभाष चंद्र चौधरी, श्री सुभाष चंद्र चौधरी जो धर्म नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर रिश्तेआनंद लेन मौला शो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की श्मशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM. भरत सिंह स्ट्रीट लफलोहा में, भरत सिंह स्ट्रीट लफलोहा में 53 साल के 53 ईयर्स ओल्ड के श्री मनोज सिंह भरत जो रणधीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई. उनके अर्थ कल दिन के 10 बजे उनकी माँ श्रीमती बिंदु भरत के घर

भरत सिंह स्ट्रीट लाफलोगा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव बुआ की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। जेबे रोड रोजबेल में 65 साल की 65 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती माला वीरापेन पैदाशी नाम कानाई और जो माला नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल दिन के 10 बजे उनके बेटे श्री प्रीतम वीरापेन के घर जेबे रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मारी जानी रोजबेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
3: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस सोमवार 8 जून सूरीनाम आर्य समाज में शाम के 4 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

接下来让我们继续欣赏歌曲，继续锁定晚风歌单，在温柔的调里慢慢享受属于周日傍晚的惬意与安然。

听众朋友，今天的晚风歌单就到这里跟您说再见了。感谢您的收听，下次节目我们再会。

0: रे थोड़ा सर्दी पड़ से जाता रू हंसते मधु पारुआ पूजन करा अंत पड़ाते धरा
1: अरे ये ढेले लाई है तो करो।

0: This is Radio Marches.
1: 您好
2: ，Assalamualaikum.
3: Kim to Mauritius.
4: Namaskar.
5: Shodharandiriki hrudaya purvaka namaskaram.
6: Ungal anaivarukkum vanakkam.
7: Radio Mauritius par dil se swagat hai aap sabhi ka.
8: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर
9: समस्त श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। भजले प्रभु का नाम हमारा सादर प्रणाम स्वीकार करें श्रोताओं। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं भगवान गणेश जी का नाम लेकर। कहते हैं जब मन शांत होता है तब भगवान की आवाज़ सबसे स्पष्ट सुनाई देती है, साथ ही साथ भगवान की शरण में जाने वाला कभी अकेला नहीं रहता क्योंकि उनका आशीर्वाद हर पल साथ चलता है।

भजरे प्रभु का नाम जारी है, आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे शुटाओ। भगवान का प्रेम सागर की तरह विशाल और आकाश की तरह अनंत है। हर धड़कन में भगवान का आशीर्वाद छिपा है, बस उसे महसूस करने की देर है।

भजले प्रभु का नाम कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे प्रभु के द्वार पर झुकने वाला मन हमेशा ऊंचा उठता है। जहाँ विश्वास है वहाँ भगवान का वास होता है। तो आइए कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं चंद प्यारे प्यारे भक्ति गान के साथ।

भगवान का धन्यवाद करें क्योंकि उनकी कृपा अनगिनत रूपों में हमारे जीवन को संवारती है। तो चलिए इसी शुभ विचार के साथ कार्यक्रम को हम समाप्त करने वाले हैं। साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मुलाकात तक आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को हम कहेंगे शुभ रात्रि।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ीद सामीन, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशरियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का आखर मकदम खुलूस कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से हैं। सामीन महतरम, आइए महफिल शब की इब्तिदा इस खूबसूरत कलाम से करते हैं।

हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने मुसलमान भाई की ज़रूरत पूरी करे, अल्लाह ताला उसकी ज़रूरत पूरी फरमाता है। ज़रूरतमंदों को खाना देना, उनकी हाजत पूरी करना, अल्लाह ताला ऐसे शख्स की दुनिया और आखिरत की मुश्किलात आसान फरमाता है।

हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सालन पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा कर लो और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो। इस्लाम हमें पड़ोसियों के हुकूक अदा करने की तालीम देता है। खाना बांटने से मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है और माशरा मजबूत बनता है। मोहतरम सामीन, हम अपने प्रोग्राम महफिल शब के आखिर तक पहुँच चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आज की हदीसों पर अमल करने की तौफीक और ताकत अता करे। मौला करीम तमाम अहले ईमान को अच्छी सेहत अता करे और जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। आइए महफिल शब के आखिर में रसूल अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सलाम का नजाना पेश करते हैं और इसी के साथ ये महफिल ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हमारी मुलाकात फिर होगी। शब बख़ैर और खुदा हाफिज़।

0: Continuous music. RM3.
1: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
0: कंटिन्यूअस म्यूजिक RM3।
2: भोजपुरी तड़का
3: सब संगठनों के अच्छे प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो हमारा मनपसंद रेडियो चैनल रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन। रेडियो मॉरिशस 719 किलोहर्ट्ज और रेडियो मनोरंजन 94.95.6 98.2 मेगाहर्ट्ज पर सबको की स्वागत बात स्वीकार कर जाओ। जय प्रताप सिंह सितालू के प्यार भरा नमस्ते और सलाम। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम आज दिमास के रात दिमास 7 जून 2026 अभी से लेके रात के 11 बजे गमठी गमा जलसा ही जलसा थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के तभी शक नंबर वा जाने रहा कर सको दे उत्साह। और चले पहल का गाना बाप दादा लोग के बोली विनोद सिद्धत की आवाज़ में जितना कोई हमने की सुना था रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर गीत तलो के नाम बाप दादा लोग के बोली।

सचे के भोजपुरी भाषा बाप दादा लोग के बोली के भाषा हमने के पूर्वज के भाषा है, भाषा के चेला हमेशा जीवित रखे के। और फुटबॉल ऐसा एगो खेल है, बड़े ही मजेदार खेल। और आप लोगों में से ढेर कोई खुशिया फुटबॉल देखे के तो ढेर फुटबॉल खेले के। तो फुटबॉल जो एगो गेम है, एक में दूगो टीम रहेला और दूगो टीमों में ओंस ओंस हुए दूगो टीम में रहेला और ये 90 मिनट के खेल है। और खिलाड़ी जो है अगर हाथ से गेंद छू ले तो गोलकीपर अपन क्षेत्र के हाथ उपयोग कर, अगर हाथ से बुरा छू दे लगता फिर नहीं। और फुटबॉल है जो गोल से खेला जाला हाँ कि नहीं। और तो फुटबॉल एगो बहुत ही महत्वपूर्ण खेल है और दुनिया भर में ढेर माना देश में जो है फुटबॉल खेल से तो के हर सेवन के लापे ही मिलेला और लोग के डबल पैसा मिलेला खेल खेले के। और जब फुटबॉल की बात कर रहे थे सर, तभी फीफा वर्ल्ड कप 2026 से शुरू हो 11 जून से 19 जुलाई ले, एक में 48 टीम भाग लियन जा और उद्घाटन मैच मेक्सिको सिटी में हो और एक फाइनल हो 19 जुलाई 2026 के। और शकीरा और बेनाबो ये फीफा वर्ल्ड कप की गीत ऑफिशियल गायन सा दाई दाई या। और याद दिलाते जा कि 2010 में शकीरा ऑफिशियल गीत गाए रहा फीफा वर्ल्ड कप के और गीत के नाम रहा वाका वाका ए ए सामिना मिना वाक करेला न न न अफ्रीका, थोड़ा याद बना। तभी चला फुटबॉल की गीत सुन से नीरज गुप्त मधु के आवाज़ में और गीतवा चलावती इस संगीता मीरन की नाम गीत कर माँ कर भाई दान आजी रक्षिका वंशिका हिमा शांति और गीत रीता सीता लुखा तेर साथ में सब लोगन के नाम जो कोई अभी हमने की सुना था रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। अगर तू खुशी रह सर तेरे खुशे से फुटबॉल देखे के फीफा वर्ल्ड कप जरूर देखे एमबीसी टीवी पर भी कर आए और रेडियो पर भी कर प्रसारण कर अब सर। अभी की चला सुनब जा फुटबॉल के बारे में नीरज गुप्त मधु का बोला था।

एकदम चकाचक जोली गीत रहा। आशा करते हैं तू गीत जरूर पसंद कर ले जा। और अब बात कर सकता सुन पुरानिया पकवान के बारे में। आगे के ज़माना में हमने की दादी नानी लोग अच्छा अच्छा पकवान पकाते थे, जैसे दाल पीठा, दूध पीठी, दूध भात, मार छोंका, ये सब पुरानिया पकवान रहल। और चूल्हा में लकड़ी डाल के पकावत रही सर, और चटनी पिसातल होश काही में चटनी पिसातल जिरपी पिसातल ओकरी मूसर के इस्तेमाल होता है। हमने कि दादा लोग भाई लोग चाचा लोग जाता है जंगल से लकड़ी आने लकड़ी मचान पर रखा तहल और रोज रात के जो है भोजन तैयार हो चूल्हा पर तो पुरानिया पकवान लज्जेदार खाना कहने खुशी रहेला, हाँ कि नहीं। और ऐसे में ग्रीष्म में भोजन करते तो बड़ी सब बना पे चीज सुरुचि शुभ आहार। अगला गीत संजय और सुलेखा बिहारी खातिर कर सब परिवार के नाम जो हमने के साथ जुड़ल हवन जा। और है गीत चलाते शास्त्री बनोमाली के सकल पत्नी कर बेटा बेटी दामाद और सब बनोमाली परिवार के नाम। तब पुरानिया पकवान के कबो नहीं भूले आजकल मॉडर्न खाना वा भैया, फिर भी पुराना पकवान के जो पुराना पकवान के स्वाद आ मुँह में पानी चलावे ला। तो चलो अभी गीत समझा का पकता और गीतवा गए हवन सनी बॉयज यानी कि संजय गोविंद की आवाज़ में।

लटपट मसाला में आलू मसाला डब करता अगर मैं सोया डाल दे बस जोड़ी से लाके जोयों को तो मिली तो कितना जोड़ी हो जरा। हाँ अब बुझावल हम बुझब बुझावल हम बुझिला बुझावल कौन चे देवी ने और बेशक तरह से पूछी राजा देखिए सर जन्म की नहीं कु तो आप कौन सी हा बोले था कु तो आप पीमा कुछ कुछ देर आपो वह झाड़ू पीछी बात मामा वह लाखलोस और वो कौन सन चीज है जो न पानी पीते ही मर जाला तू जाने ला कौन चीज है जो पानी पीते ही मर जाला वह आग और वो कौन सन चीज है और कौन सन चीज है वो जेकर चार गो गोरबा फिर भी वो चल ही नहीं सकेला वो कौन सन चीज है जेकर चार गो गोरबा पर चल ही नहीं सकला वो है मेज यानी कि लाटा बुझावल हम बोली रहते इधर देर बुझावन बा एन बोल दी सोमवार आते हैं कौन चीज तो वो है बेतराब हाँ कि नहीं तो ऐसे तो ढेर बुझावल बा ढेर कोई नहीं जाने ना आगे के जमाना में जब सब कोई रात के भात खा ले होतलन तो सब कोई बैठ के बुझावल बोलते कि दादी नानी लोग बोलता बोलते लड़का लोग कौन ची है जे कोई सही जवाब देवतल लोग के वो कादो मिलतल आजकल कहाँ भाई सब भैया के बुझावल बोली रात तो कोई बात नहीं है तो ऐसे में चला सुनब जा अगला गाना बहुत ही प्यारा संगीत बुझावल हम बोली रहा रंभा राम तो हल्के गावल है गीत और चलावत सेंट टोमास एसएस कॉलेज के सब स्टूडेंट्स टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और वहाँ की रेक्टर ने के नाम और जितना कोई भी रात के हमने सुना था ये तलो के नाम भी तू भी बुझावल बोलिए और बुझावल के ऊपर जवाब दिया जा चल एक साथ सुने की तो

0: झंझट, धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर। एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: और हम इनकी प्रसारण लाइव एमबीसी मोका से जहाँ रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर भोजपुरी तट का दिमाग की रात और गमत की रात जलसा की रात रात के 11 बजे ले। और जब हमने एमबीसी की बात की जा सकता हमने के जो टीवी और रेडियो चैनल है एकदम नंबर वन और ढेर माना चैनल में हमने के श्रोता लोग हमने के एमबीसी टीवी चैनल दिख रहे जैसे कि एमबीसी टीवी वन, MBC TV 2, MBC TV 3, MBC TV 4, MBC TV 5, MBC 7 और Kids Channel। और जहाँ रेडियो की बात है तो RM1, RM2, रेडियो मस्ती, रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। तो बेशक हमने के रेडियो सब सुनते रहिए और हमने के टीवी देखते रहिए, एक से एक लाजवाब प्रोग्राम सजा के आने से 2400 घंटे सातों दिन तो लोग खातिर रबी रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती दोनों चैनल पर चलता है प्रोग्राम भोजपुरी तड़का। अगला गीत है पनिया बरसेला, अविनाश लक्षण गिरा बगीत और हई बड़ी सुरतना पानी नहीं बरसल है, देख सर कि तूफानी मौसम तूफानी सीजन में तूफान भी नहीं आया, कौन कहते हई पहली बार और बा जो है कि मॉरिशस में कोई तूफान नहीं यार ना, हमेशा तूफान नहीं दे रहेगा एक जिसमें भी नहीं दलाल ये सब क्लाइमेट चेंज के प्रभाव। तगड़ा गीत पनिया बरसेला गीत राविश मंदू की कर माँ कर बाप कर भाई भौजी और सब मंदू परिवार खातिर, ये गीत भाई धनी खातिर रह नफलोगा और सोनन चितंकी खातिर गीत चली बहुत बहुत प्यार के साथ पनिया बरसेला।

0: Continuous music. RM3.
1: 819 kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.
2: पनिया बल्सी तक कैसे कम हो कैसे मासों खेपी कर दी बोला तब ढेर बोटा पानी बल्सी लता सब काम जो है थप पड़ जला पर गुदेश में पानी वो चेहरा कहे कि अभी के जलाशय में पानी कमती हो ली जाता हाँ कहे के बड़ी सुतना पानी नहीं बरसल बे जोंवियर से लेके भी जय में चले साज ली से जय हो सात जून गलबा पर उतना पानी नहीं बरसा बस जितना पानी चेहरा मिली क्योंकि पानी जाया नहीं करिए पानी हिसाब से इस्तेमाल करिए बाप रे बाप काहे पानी नहीं बरसल बा इतना बड़ी इसका जनी हो कोची हो भगवान से प्रार्थना इंद्र भगवान से प्रार्थना कर हर पर हमने की चाची नानी लोग कहाँ वन से हर परवरी नहीं गावत हो सके चाची नानी लोग हर परवरी गई है इंद्र भगवान के प्रसन्न करिए तब पानी बस कैन के गजे वो मैंने की जलाशय में पानी आए पानी चहल है पानी जीवन है जीवन ही पानी है और जब हमने पर धर्म ग्रंथ में देखी ऐसा था ढेर बना उपनिषद बदे से कठोपनिषद ईश उपनिषद चांदोग्य उपनिषद केन उपनिषद अगर में से गो उपनिषद है कठोपनिषद कथा उपनिषद हिल कोई बोले ला ये उपनिषद जो न यमराज और नचिकेत के बीच के वार्तालाप है त कुछ रिखला एगो राजा के नाम रहल वाजस्रवस्त एगो

0: अचकरा थल तो यजवा में उ एक सौ गौ माता के दान देवत हल तर बेटा नचिकेत बोलत था पापा तू इस सब गाय गौ माता के दान करत हो यज में तो हमरो हमर दान कब करब तो बाप इतना गुस्सा होल कि बोल हम तो के यम भगवान के हाथ में यज कर के डाल दे तो इस सुन के नचिकेत चुन है वो यमराज भगवान नगे गल तो जब यमराज भगवान नगे जा रहा तो यमराज और नचिकेत में वार्तालाप होला गुरु और शिष्य यमराज है गुरु और शिष्य नचिकेत त नचिकेत तीन गो वरदानों के मिलेला एगो वरदान है कि नचिकेत के बाप की क्रोध शांति हो जाए दूसरा वरदान है कि नचिकेत के स्वर्ग मिली और तीसरा वरदान जो है नचिकेत के ज्ञान प्राप्त होला कि मृत्यु के बाद हमने के शरीर के कोंची होला तो ये बहुत ही सुंदर एगो उपनिषद है थोड़ा मौका मिली तो जाइए यूट्यूब पर या गूगल पर टाइप करिए कथोपनिषद कर में ऐसन जोड़ी से यमराज उन्हें अध्यापक के रोल करेला और नचिकेत स्टूडेंट के रोल और यमराज नचिकेत के सिखावेला कि ब्रह्म कौन ची है भगवान के है भगवान कहाँ वास करेला तो ज़रूर पढ़िया जाए उपनिषद जिकर शीर्षक कर कठोपनिषद और अब बेगो गीत सुनब जात जी हाँ मजा कर ले मेरी जान बहुत ही प्यारा सन गाना है गीत अच्छी तरह विश्राम के नाम और कृपति ज्ञान आपन मौदाल बे और ये गीत तो हमने चलावत है इस साथ में गीत कमला दिनु खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ कर चीज़ों फॉर सब परिवार खातिर प्रणव दुखन है गीत और खातिर तो सब परिवार के नाम और हई गीत चली अजय की ओर से भीमला खातिर बहुत बहुत प्यार के साथ और जितना कोई कोशिश करता थोड़ा लाइन ना मिला था कोई प्रॉब्लम नहीं आई गेत तो ना मजा कर ले मेरी जान फिर से ना होगा जवान ओहो हो बुरा बुरा मत करो बुरा है शैतान फिर से मिलो डार्लिंग दिल में है तूफान एकदम जोली गीत है तो लोग जोली जोली लोगों खातिर संग संग आप सब का बोले तो
1: मेरी जान फिर से ना होगा जवान मजा कर ले
0: मेरी जान फिर से ना होगा जवान
1: मिलेंगे मैदान करो और रहो निशान

नचा नचा नचा नचा मजा कर ले मेरी जान, फिर से ना होगा जवान। बुरा बुरा मत करो बुरा।

मजा कर ले मेरी जान, फिर से न होगा जवान, बुरा बुरा मत करो बुरा।

फिर से ना होगा जवान, बुरा बुरा मत करो, बुरा है सांप तो बुरा बुरा नहीं करिए बाप। आज की दुनिया में बहुत बुराई बा, बहुत नफरत बा, जहाँ भी देख बा नफरत नहीं नफरत, काहे से दुनिया होगल बा। हम तो रोज की पूजा के लिए भगवान सबके दिल में प्यार हो, अपना अपन हो, पर सब ले कॉन्ट्रेल के लिए आदमी लोग बड़ी व्योला हो, सब बाप रे इतना हिंसा से भरल काबुल बा, बच के रहिए भैया। रात के समय भी और तू सुना रेडियो मॉरिशस, रेडियो मनोरंजन से जगह अच्छा कार्यक्रम भोजपुरी टड़का, जहाँ पर नाची रह सर, गावी रह सर और ढेर कुछ सिखाई रह सर भी, और तू लोग गीत भी मांगे रह सर, हमने की बचपन के बड़े प्यार से सुनी रह सर। और अब सुना आप तो लगा कि वो कहानी विक्रम बेताल की कहानी, इनकी यार बार जब हम छोटा रहे थे एमबीसी टीवी पर एक सीरियल आवतल, विक्रम विक्रम विक्रम विक्रम बेताल बेताल बेताल बेताल बेताल, विक्रम और बेताल की कहानी थी। कहानी रहल लोक कथाओं की कहानी, एक ही बेताल पच्चीसी बुलाता है, लेकिन में दूगो पात्र बा, एक है राजा विक्रमादित्य जो को साहसी और न्यायप्रिय राजा है, और दूसरी ओर जंगल में एगो उल्टा लटका प्राणी रहल जिसका नाम रहल बेताल, वो घोंची पर रहल। तो राजा विक्रमादित्य बिना डरे जंगल में जात हल, तो एक दिन एक रात का होल वो जन जंगल से जात हल, तो वहाँ पर ही बेताल रहल घोंची में छटक के राजा के कंधा में चढ़ गल। अब राजा तो जो साहसी रहल, तो बेताल बोलक हम तो हर साथ चलब, पर एगो कहानी सुना, पर अगर कहानी के बीच में तू जवाब दे रहा तब फिर से उड़ के घोंचा में चल जा। तो राजा के जो है बेताल राजा के ढेर मना कहानी सुनावेला, 25 को कहानी सुनावेला, पर हर बार राजा से प्रश्न करेला, राजा अपन वादा भुला जाला और उत्तर दे देला, तो फिर से बेताल जाके घोंचे में चढ़ के बैठ जाला। तो यही कहानी है विक्रम और बेताल के, हर वो कहानी में वो शिक्षा रहेला, आगे के लड़का लोग खूब पढ़त रहा विक्रम बेताल कहानी, पुस्तक में भी रहल बहुत देसीने में, और साथ में टीवी पर भी आवत है विक्रम बेताल। तो अब चल सुनम जर को प्यारा सन गाना छोर के मोरिस्वा है, गीत अक्षरावती से मनीषा चामी सिंह की, और सरकर पत्नी और तीन गो लड़का कर माँ का सास ससुर और सब चामी सिंह परिवार के नाम है। गीत चली एकदम खा

सिखों के रतन निहाल के नाम और पापा पत्नी करुणा पापा विजय सब निहाल परिवार के लिए सुधीर जसवा मोहताबा से वन और माँ राजकुमारी राज मन्ना और सब मन्ना परिवार मोहताबा से जिमी दुखिया स्टीव चिबुग लोंग नानो राजा पुलु और सब संगतियालों के नाम और जितना कोई रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन सुना था वो लोग के नाम भी छोड़ के मॉरिशवा एकदम ही जोली गीत आती भगी रहती क्या आवाज़ में

हाँ देखो, ये भी विदेश में बा मॉरिस से छोड़ के गलव सब वहाँ पर काम करे, कोई पढ़े गल बा इटली कनाडा इंग्लैंड तो ढेर कोई अपनी के सुना था, जितना कोई विदेश से अपनी के सुना था सब कोई के नमस्ते। तो लोग के स्वागत बा NBC रेडियो पर, रेडियो मनोरंजन, रेडियो मॉरिशस पर। और अब हम बात करब सा कटहल के बारे में। मुँह में तो पानी भरा ले, कटहल जो न कटहल बैरा सा ये को फल भी है को सब्जी भी है, क्या अंग्रेजी में जैकफ्रूट बोला सा, तई दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन में से एगो है। और बेशक की कटहल जो न एक ये बहुत ही कीड़े से काटी रह सका है कि एक में दाग भरल रहेला और मोटा एक लापो है, तेना जोरी से गोल गोल काट के दाग निकाले के। और कटहल जो है पक्ल कटहल खाए रह सब फ्रूट लेखा, और बकावल कटहल कर तरकारी भी बनेला। तो कटहल के कैसे तैयार कैला सा, कटहल मसाला में आलू डाल के सकब ओके मसाला में लटपट पकाए, कटहल के सकब भूंजे, कटहल के गजाक भी बनेला, कटहल के बेंदाई भी बनेला। और बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना है। और बेशक एकर में कौन सी बा, कटहल में कार्बोहाइड्रेट्स बा, फाइबर बा, विटामिन सी बा, पोटाशियम बा। तो ढेर को कटहर नहीं कुसा खाए के, पर कटहर जो न वो बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अच्छा बनावेला और संतुलित भोजन के हिस्सा में बा कटहर। और पेट के जो है वो अच्छा है कटहर के मदद, तो पेट साफ रहेगा। ये सब्जी भी है जैसे कि हम बोली, और एगो फल भी है, तो डिपेंड कर रहा कि तो लोग कैसे कर इस्तेमाल कर रहे। सर कटहल भर बरिस मोरिस में बाएँ कटहल के बिरयानी में भी, वेजिटेबल बिरयानी में प्रयोग कर रहा सर। कटहल के सरब कर बिया बुई करके खाए भी बड़ी मज़ेदार है, और कटहल के जो कर बिंदाई भी बनेला। तो ज़रूर कटहल ट्राई करके देखिए और बोलिए हमके कैसे बुझा रहा खाना। और अगला गीत सास के करा करा बोलिया, बहुत ही प्यारा सा गाना शोभा नुमान गावतवन है गीत, चाची प्रभावती लोल खातिर, चाची ललिता कुशल जुन रहेला थ्रियोली और चाचा आत्मा राम है गीत, रिहाना हौसनानी के नाम आप रहन फिनिक्स, नतराज राम को रन हवन नोबेल फ्रांस से गीत, और माता जी पिताजी और भाई बहन और सर नोबेल फ्रांस के राम को रन परिवार खातिर, कमला जी नु है गीत हो रो खातिर, और आफे सवन सैंप ऐसे तो चल एक साथ सुने है।

गीतो सास के करा करा बोलिया और सास करा करा बोलिया काहे बोलेगा। अगर सास करा करा बोलिया बोली तो बहु लोग तो लोग कटहर के पका तकारी पका के सास के ख्या दिया वो करा करा बोली नहीं बोली कहे कि कटहर बहुत स्वादिष्ट है। जब सास और से नाराज हुई तब बहु लोग कटहर के तकारी पका के बन सासू माँ के बोलिया खा ल सासू माँ प्यार से बनैले है कटहर के तरकारी। ओए होए कटहर के तरकारी लटपट आलू मसाला में।

0: लड़का तुम्हार जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का
1: गमट धमाल और मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो
2: कंटिन्यूअस
3: म्यूजिक 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस
4: तबल के संग जा लोग प्रोग्राम कैसे लगता तोरा अच्छा लगता ना हमने के गीतवन तो लोग के पास गीतवन अच्छा लगता सुनने के कि नहीं ओए होए क्या बात है क्या बात है सब कोई नाचता गावता झूमता कमरवा डोलावता और ठंडा ठंडा कर लग बात ऐसे ठंडा के मौसम में ऐसे जुरी जुरी गीत ओए होए होए होए जी हाँ रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर तू सुन तो और जी प्रताप सिंह सितालू के प्रोग्राम है भोजपुरी तड़का रात के 11 बजे ले और ये प्रोग्राम रोज के चलेला जाने ना ये प्रोग्राम रोज के चलेला 9 बजे से 11 बजे ले केवल एमबीसी रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर दिमाग के रात के भी ये प्रोग्राम चलता एकदम टकाटक और बोला सक कि हमने के देश में सबको अपन पसंद के लुगा खुशी रहला पहने के जब लुगा के बात कैसे ढेर को सलामत करे के जोरी लिखे के कोई खुशी रहला अपन साड़ी पहने के लहंगा चोरी चूड़ीदार शरारा पुरुष लोग धोती कुर्ता शमीज पहतानों सोत सबको लिखे अपन अपन पसंद बा हाँ कि नहीं और जो लुगा महंगा रहेला तो ढेर जो कर रहा जोगे रहेला कोनो कोनो लुगा सस्ता रहे तो हाल ही फट जला पर कोनो कोनो लुगा जो है वो काफ़ी समय से वो इस्तेमाल करे जितना महंगा रहेला कपड़ा उतना जस्ती दिन जाला ऐसे जुड़ी जुड़ी कपड़ा पहनते रहिए अलामत करते रहिए और सब कोई थोड़ा कॉम्प्लीमेंटरी बोली ये आज तो एकदम चकाचक दिखाते हुआ कहूँ शादी में गेला हरदी में गेला कोई बोल दे रहा पाकिट ब्याह सूरी आज हो जी दो मजे नाकते है ये एक्ट्रेस तो बाप रे बाप तो लोग तब फूल के ठेकुआ हो जाए सर के नहीं खुश है कॉम्प्लीमेंट खप के खुशी रहे ना तो हम यूँ कहूँ जाए सर सज धज के जाए ना सर काहे काहे कि नहीं सज जब धजब सर अरे जब ले जीवित रह तब ले शरीर के छला सुंदर भगवान खुशी रहेला जब हमने अपन शरीर के सुंदर रहता शरीर के साथ साथ मन के भी तरह सुंदर बनाए गए हाँ कि नहीं तगला गीत चली चल लाली सिनेमा देखे जानकी सीसन की ओर से कर बेटा पर तो सब सीसन परिवार खातिर तीना बुना गीत तोहर खातिर तोहर पति दुगो बेटी सब बुना परिवार के नाम बिना कुमस्वामी में बैग से हवन ओकर पति बेटी दामाद बेटा बहू और सब कुपुस्वामी परिवार के नाम विश्वानी बाबूलाल हवन लाखों हजार से गीत हो खातिर तो हर पति तो हर लड़का लोग खातिर सुरमान दुखी मे बैग से हवन गीत तोहरो नाम चल लाली सिनेमा देखे अभी सिनेमा ने देखा अभी गीत सुनब स और जितना कोई हमने के टिकटॉक पर देखे रहा रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर है गीत लोग के नाम आज टिकटॉक पर नहीं है ऐसा आज रेडियो पर है ऐसा ठीक बा रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस सुनते रहा रात के 11 बजे रही

रात के 10:01 और 1 घंटा बाद लोग साथ दे खातिर 11 बजे ले रेडियो मॉन्शस रेडियो मनोरंजन पर हमने जानी ना सर कि चलो कि प्रोग्राम एकदम पसंद करते हो काहे कि इतना प्यार से तो उनकी सुनत हो इतना तादाद में ढेर कोई उनकी सुन ढेर कोई घर पे हो जा ढेर कोई काम करता और उनकी सुनता पर नौकरी स्थल पर जैसे फायर स्टेशन बा फायर सर्विसेज पुलिस स्टेशन कॉल सेंटर मेट्रो सर्विसेज अस्पताल क्लिनिक में ढेर कोई काम सौ रुपया लोग जितना कोई पास आज लेके जाता या पास आज लेके आवाता हमने की सुनाता तो सो फिर भैया धीरे धीरे गाड़ी बनवा चलिए हमने के साथ देते रहिए और हमने यहाँ पर चलो के मनोरंजन करते ही सर और बोल रहे सर कि दुनिया में सबसे बड़ा है दान तो लापे जब मिली हर महीना तो कम से खाली अगर नहीं सको ढेर तक 10 रुपया की कोनो गातो या कौन चीज किन के कोनो को लड़का के दीब या को गरीब आदमी के या को बेवा के या कोई के भी कौन चीज किन के लिए अपन लापे में से तो वो व्यक्ति के थोड़ा आशीर्वाद दे तो तुम्हारे घर में हमेशा पैसा की कमी नहीं हो धन की भंडार हमेशा रही काहे के है जो दान है हमने के धर्म ग्रंथ

Idahal Anju, Burton Casbahas, Mid Lafaya, Casbah. Habit is a natural decent studio making carpula. रात के समय भी ऐसे ही कमर में डुलाईती रही है, नचते गाती रही है और दिन भर की थकान दूर कर हमने की भोजपुरी गीतों के संगम के लोकल ऑडिशन जोरी जोरी गीत गाई लग और बिना से कि दुनिया में कोई पर फीए नहीं करिया, अपन हाथ से सब काम करिया, ये दुनिया में कोई पर भरोसा नहीं करिया भैया। और भगवान तोरा दू गो हाथ दू गोड़ दिलक बना तो अपन हाथ अपन गोड़ के इस्तेमाल करिया, कहे कि कोई थोड़ा मदद करी तो काल के उठे के बोल रही हम तो खातिर हाई कर ले हाउ कर ले हाई, तो तू अपन हाथ से सब काम करिया और कोई पर फीए नहीं करिया। कब कब तोहर पति तोहर से बोल देवेला हमके फाचिकी नहीं करिया, पत्नी बोल देता दिल दुखा जरा ये खाती तोरा मन करता कौन चीज़ खाए के जा फ्रिज देख खोल के निकाल के पका के खा, तोरा मन करता कौन चीज़ पिए के जा फ्रिज देख खोल के निकाल के पिया। कोई पर फीए नहीं करिया, कब कब अपन लड़का लोग बोलब अमेन साहब मुआता लड़का लोग नहीं करेला, कोई कोई के नहीं करी भैया ऐ दुनिया में कोई कोई के नहीं बात, जब भी तोहर गोरा तो अच्छा बापन गोरा से सब अपन काम करिया। अगला गीत जलसा लालबा ओय होय होय जरब ते नाचे सब तरह के संग संग जलसा करब सर है गीत जुन है गो व्हाट्सएप ग्रुप के संग त्या लोग मांगले हवन और जी फैमिली हवन जा और ये ग्रुप में ढेर कोई बात जैसे अगला गीत चली रितिश हमन खातिर आदित्य चटवा अनिता पांचू अंजू किशुन आशील चितंकी अजीजा बाल गोबिन फिर है गीतवा चलावत ईसा भाई गुरु भामा भारती बुलाकी वृंदा पांचू शाकिल प्रयाग सिंह कोथन देवी दागा दीना गिरीश लक्ष्मण गंगा अविन गनु विशाल हिरू कलपत्नी शालिनी कद्दू को बेटी और सब हिरू परिवार कलाईवानी गीतोहर खातिर केशव रिसोल गीतोहर पत्नी तोहर लड़का खातिर कृषि महादू मालिनी दौलत माया मिस बेनी नाबिन उदित परमानन।

0: बिन बुधन कर्मा कर पिताजी और सब परिवार प्रीति बाबुआ प्रीतम भैरव ज्योति और कर बेटी प्रियंका पूजा और कर दामाद राविश सिंह राधा गनु रीता रोशन हरनाम रोशनी बिहारी रोसाई रसोल शैलेश महाबेर सत्यम सुबोल शैलेन बंसी श्यामिनी सिद्दीक सज्जू तैयबा उजागिर उमा जगनायक लू रूसा वीरापेन विकास विनेश सुबन और व्यास शिव खातिर और जितना कोई रात के हमने की सुनाता रहता है गीत तो लोग के नाम झेर कर कुसा गमट करके कनाडा से दीपा तिवारी दुखी धनुकर पति केविन बेटा और सब दुखी परिवार जो कनाडा से हमने की सुनाता रहता है गीत तो लोग के नाम चला जलसा करे
1: रंगीली रात बाहो
0: है गीत अनिता जी के नाम आप फ्लिक ऑन फ्लाक और अनिता लाल जी मोदाल से शोभा वाकवार से शोभा बावली मुझसे और इंदिरा लौतन खातिर गीत चलता जलसा लाल बा सचे के लाली लाल बा आहा।

आज के गमाटिकों को जलसा लाल बा और अब हो जाए थोड़ा सुन बॉलीवुड गपशप। हमने जाना सर कि तो लोग ढेर मना कुछ सीरियल सर बॉलीवुड फिल्म भी देखे के तो सुनने में आल बा की सब फिल्म रिलीज हुई बहुत जल्द। देखो फिल्म के नाम बंदर एक में तू देख बॉबी देओल की ये सपन कम बाक करता है इन द मूवी बंदर। फिर डॉन फ्री मूवी आई डॉन फ्री एक में रणवीर सिंह के देखबा और कॉकटेल टू ई बेगो फिल्म है जो बहुत जल्द आई बड़े पर्दे पर। है जवानी तो इश्क है हयो फिल्म रिलीज हो बहुत जल्द और मैं वापस आऊँगा ये सब नवा फिल्म बार जो अभी बन के तैयार हुआ था बंदर डॉन फ्री कॉकटेल टू है जवानी तो इश्क मैं वापस आऊँगा। और एगो हिस्टोरिकल फिल्म बना था बॉलीवुड में ओकर टाइटल है रामायण। आप तो आज याद रहल रामानंद सागर के एगो सीरियल रहल रामायण त ऊपर आधारित फिल्म रही रामायण पर। एक डायरेक्टर हुआ नीतीश तिवारी और एक संगीत तैयार कर ले हुआ फिल्म के ए आर रहमान और हंस जिम्बेर और राम के रोल में रणबीर कपूर के दिग्गज, सीता के रोल में साई पल्लवी, लक्ष्मण के रोल में रवि दुबे, सनी देओल हनुमान के रोल करियन। हमने तो दारा सिंह के देख रहे हैं सर हनुमान के रोल का। अब रियला देख बस सनी देओल के हनुमान के रोल करल और रावण के रोल में अयन यश। तो एक हिस्टोरिकल मूवी रही कहे कि ये रामायण जो है हमने की धर्म ग्रंथ से जुड़ल बदल देखा सर फिर वहाँ कौन रंग लाए कहे कि आजकल हिस्टोरिकल फिल्म नहीं बनाता पर है फिल्म गो एक्सक्लूसिविटी रही देखब सर फिल्म में कैसे ये लोग काम करिए और देखब सर रणबीर कपूर सच्चे के सखी राम के किरदार निभाए उल्ले पोखरल अरुण गोविल और दीपिका निभा रहा राम और सीता के रोल। तो देखब सर ये फिल्म जब रिलीज हुई तो फिल्म कहाँ ली सक्सेसफुल हुई तो हमने प्रार्थना करते सर जितना फिल्म रिलीज हुई सब सुपरहिट हुई। अभी कहते चलो गीत सुने

वेदिका निहारिका वेदिका निहारिका एक टीवी सीरियल में आ रहा तो लोग जाने रहे सर की है ना हा आई गीत चलावा दे सर जितना कोई कुछ बॉलीवुड फिल्म देखे के बॉलीवुड के गाना सुने के और भोजपुरी के प्रोग्राम सुने के तर जितना भी फैंस बा मॉरिशस में दुनिया भर में जितना कोई हमारा आवाज़ के पसंद कर रहा है हमारे प्रोग्राम खुशी सुने के गीत लोग खातिर संगत या लोग खासम खास वीमा हवन सैंपल से कर माँ कर बहन और सब परिवार और है गीता वेदिका निहारिका चलावत इस दीना जी के नाम साथ में वन प्रतिमा और गुरु जी गंगू भाई रुसाई अपाया विहापेन और जितना हमारा संगत लोग बा जो नब्बे की रात कृष्ण होता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर तू भी गई वेदिका निहारिका वेदिका निहारिका का बोला था चल एक साथ सुने मन करता नाचे के गावे के कमर वर डुलाई के नाचे हो गावे हो लेट्स नाचो

बाप मंजुलू का ज्ञान दे घर में। अब वेदिका निहारिका का करी मंजुलिका चलल बा बाप रे बाप भूल भुलैया ओहो कैप्टन के छोट की चिलापिया मार दिलक बोलता। आई रे हाई।

0: कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का
2: सामदी 6 जून के रहल बीच पार्टी ब्लू वे में रेडियो मॉरिशस नहीं रेडियो मनोरंजन रेडियो मस्ती की रेडियो की ओर से और हमने क्या जे जुगमा पे रहल और जे परी और जे गिनीशा और जे सुमिता फिर हमने की डायरेक्टर रहल नर्मदा जी विकास कौर साहब और धीर श्रोता लोग रहल हमने के ज्वाइन करे वहाँ पर ही ब्लू वे साइड पर बहुत बहुत धन्यवाद तो लोग जा हमने से मिला जा ढेर को के गेम्स में के भाग मिलल और इनाम भी पाइला मदर्स डे स्पेशल के मदर्स डे स्पेशल रहलू कार्यक्रम बीच एंड फन डे पार्टी विद द थीम ऑफ रेडियो मनोरंजन एंड रेडियो मस्ती थैंक्स फॉर कमिंग जितना भी लोग आ रहा बहुत बहुत धन्यवाद जितना श्रोता लोग आ रहा हमने के वहाँ मिले हमने से बात कर ले जा और अच्छा समय भी तेजी से दिन के 1 बजे से शाम के 4 बजे ले याद बना सामने क्या रहा ला? हम तो आ रही चलो के देखे ओए होए क्या बात है ऐसे ही हमने से मिलते रहिए और प्यार खुशियाँ बांटते रहिए और ये बक्का चारों ओर घोर अंधेरा छैलक बार जानी ना सर पर डरने की बात नहीं बा हमने तो लोग के साथ ही सर अब सुनबर कोनो चीज बाहरा में घर के बाहर की कौन चीज गिरा तक की कौन चीज ध्यान नहीं दिया भैया हमने है सर तो लोग के साथ हम हैं तो क्या गम है और बेशक ढेर कोई अभी सोचा था कि लोग अकेले हों सा कि लोग की दुनिया में कोई नहीं बा कोई के दिल टूटल बा कोई कोई के दिल तोड़ दे लगता ये सब होते रह रहा भैया अब देखा कोई के नहीं सकबा बदली अब अगर वो इंसान थोड़ा कोनो खरा खोटा सुना दिलक थोड़ा दिल दुखा गल तो माफ़ कर दिया कि काजे नहीं कैसे बतवा बोल ले हो पर तू दुनिया में अकेला नहीं हुआ ढेर कुछ अकेला अकेला रहेलन से नहीं भगवान तो लोग के साथ बा हमने तो लोग के साथ है सा और हमेशा साथ रह जा कोनो भी प्रॉब्लम हो तो बेशक हमने सब बात करे अगर प्रॉब्लम नहीं इसका सॉल्व करे तो कम से कम एगो प्रॉब्लम रहेगा तब छना बचाई कि जब दिल में बटवा रख बर तो थोड़ा बितरे बितरे खाई लगी तब जाके प्रॉब्लम हो जाला तो अगर कोई थोड़ा दिल तोड़ लग बा कोई बात नहीं ऐसे होला जो कि सबसे ज़्यादा हमने प्यार करे रहा सब ही हमने के दिल तोड़े रहा ये दुनिया के दस्तूर है तो तू फिक्र ना करे तू अकेले नहीं हुआ है हमने तेरों के साथ है सर तू बहादुर हो और करेजियस इंसान हो हमने तेरों के साथ है सर अगर अकेला हुआ तो अपना अकेलापन के दूर करिए हमने के संगे हमने की भोजपुरी गीतों के संगे रात के 11 बजे अगला गीत है कमरिया कमरवा डोलावा गीतवा गैले वन आशीष रामफल बहुत प्यार से और गीत चरावती स्वीति स्वीनी खातिर फिर भी ऑस्ट्रेलिया से हवन अजय और पूनम चिंताराम को डुगवेता बाल गोपाल मॉरिशस नौकर माता जी इंदिरा चिंताराम और है गीतवा रंभाज के नाम जन स्विट्जरलैंड सवन संजय हरिचंद गीत तोहरों खातिर तोहर पत्नी संध्या तोहर बेटी हुविष्का और सब हरिचंद परिवार के नाम चल गीतवा सुने कमरिया

आगे के जमाना में सिंपल खाना सब कोई खाता है, पर सब कोई तंदुरुस्त रहल खुश रहल सर। आजकल जितना सुविधा बा फिर भी इंसान खुश नहीं बा, सब कोई तनावग्रस्त बा, सब कोई की देखभाल था स्ट्रेस में हो सर। इधर भागो उधर भागो, भाग डोर बाप रे बाप भागम भाग। फजर के उठ के बुनेरे उठा, चार रोटियाँ ने चा बनावा, लड़का लोग पारी करा लेकुल जाए के, लड़का लोग जाके लेकुल छोड़ा, फिर तैयार हुआ काम पे जा। काम पे से वापस एक बार तब घर के काम थोड़ा तान करता, बर्तन मांजा लुगा धोवा, लड़का लोग देखा बाप रे बाप इतना स्ट्रेस। ये खाती ढेर कोई नौकर चाकर रखेला, खाए कि नौकर चाकर रखब तो तुहर कमो आराम से हो जाए। अब सब कमो तू ही करब तो कैसे हो बोलत ढेर। घर में पति महोदय रो काम से आवे तो खड़ी सुना लेके बैठ जालन सर टीवी के आगे, और पत्नी के परी सब काम करके तो इसे दुनिया ना करिया हो। पति पत्नी शादी कर साथ फेरा ले रहे हो सर, और साथ फेरा में का बोले रहा सर कि वादा कर बस साथ साथ नहीं भैया। तो जब पत्नी शांत के आल बर्तन धोवाता तो तू सब बर्तन पहुँच के रख दे या को थकारी काट दे पत्नी के हाथ बताए। पर आजकल के जिनिस लोग नौजवान लोग शादी कर रहे तो सोच रहे थे कि पत्नी के जहाँ सब करेंगे, नहीं पति पत्नी दोनों के जहाँ हाथ बटा के ठीक बा। कन और दाल पकई दी हम आगे के जनरली ना साधारण खाना जैसे दाल पका दी, भात पकड़ रहा दाल पका दे रहा मच्छी उच्छी तार दे रहा तो सब कोई बैठ के खा लिया। अभी तक जिन जिन प्रकार के खाना बा बाप रे बाप। फिर भी अब घर में चार जना बा, पति खुज रहा दूसर खाए के, पत्नी दूसर खाए के, लड़का दूसर खाए के। अब पत्नी चार जना के कैसे जीवेगा खाना बनाई। हम तो बोलब सिंपल खाना बना दिया, दाल पका दिया और कोनो चीज तार दिया, भात ही रोटी तब प्यार से खा ली बा। दाल पकाई दी अनिल सिंह रमेश सर और मनहिल अमृता की तो आ गई है वन और गीत चलावती सब कुछ कर दी जो कुछ ही रहेला सिंपल खाना खाई के। हाँ सिंपलिसिटी इज द बेस्ट हाँ कि नहीं। और तो फाचिकियों के काम से अब दाल पका दिला या आलू उतार दिला तब सुन भाजी भून दिला पीमा के अचार सुपेर।

दो चढ़ाव दे जैसे खास रंग खास विदिता के नाम विदिता के और सकल पति और कद्दू को बेटा खातिर और रह की चरावती स हमने तेजस खातिर तेजस की ओर से सब संगत यालो के नाम तेजस सवन में बैग से और है कि तो हमने चरावती स विद्या की ओर से अगर बेस्ट फ्रेंड अनुराधा के नाम और सैंपल्स हवन विदुषी विदुषी की ओर से अकर मंगित राजेश के नाम और लोग गीत पसंद बा डाल पकाई दी तो चलो गीत सुनब सा और तू भी मौका मिली तो दाल पकैया है बोलिए हम क्या क्या माँ बाप दाल पूरी खाई दाल और पूरी है पूरी तारल और दाल क्या बात है रुकर में पीमा के औचार।

0: चलिए भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर। कमर कमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमपीसी रेडियो पर।
1: जैसे रात को के रात की ढेर को की नींद नहीं लग रहा, कोई इधर करवट बदलता, कोई उधर करवट बदलता, तो अब जो करवट बदल छोड़ दा है गीत सुनिए गुजोली की चटनी कैसे बनी फुलरे बिना चटनी कैसे बिना चटनी की बात बोलते सत मॉरिशस में ढेर कोई हर प्रकार की चटनी बनाए वाला पुल डामन की चटनी कोको की चटनी पीमा की चटनी पिपंगाई के लापों की चटनी आलू की चटनी कोतुरमिली की चटनी लामोत की चटनी

आहा, चटनी जुन है एकदम चटकार रहेला। और जब थोड़ा लाफिए भी लगी तो दाल भात रही और तरसुन चटनी खाली बन तो हर मुँह बन जाए, हाँ कि नहीं। खास कर कोको की चटनी में लामों के पत्ता डाल दी बा, पीमामा डाल दी बा, तो एकदम स्वादिष्ट बन जाला। तो जितना कोई कुछ चटनी खाई के गीत है थलो खातिर और चाची भामा हमने के साथ देवतन भामा चाची नमस्ते, चाची राधा हवन मोतबा से वो भी एकदम बढ़िया पकावेलन। फिर चाची चंपा हवन, चाची देविका, चाची देविका राम गत्या एकदम जोली से चटनी बनावेलन की का बोलबा। आ हा, तो चाची चंपा, चाची देविका रामगतिया, चाची राधा शिवालर का गीत तो लो खतीर। कैसे बनी फुल रे बिना चटनी कैसे बनी।

हर बरिस जून जुलाई में सेकेंड टर्म के मॉक एग्ज़ाम्स होला, जैसे कि ग्रेड 9, ग्रेड 11 और ग्रेड 13 के लेकर लोग मॉक एग्ज़ाम्स में भाग लिया सर। तो लेकर लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करिए, रिविजन करिए, ताकि मॉक एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो, क्या कि साल के अंत में तो लोग बरकार एग्ज़ाम ही कर बस। और अभी आजकल छोटा मोटा टेस्ट चला था, छोटा क्लास वन की तरह लोग मांग कर पढ़िए लिखिए, बड़ा आदमी

सब प्रकार के नोट्स बा, वो चाहे जेमिनी हो, गूगल हो, चैट जीपीटी हो, तो इन सब पर थोड़ा नोट्स रख। खास कर हमने की जो इंटरनेट पर तो ढेर मना सुविधा बा, और लाइब्रेरी में तो हर प्रकार के पुस्तक बा, और ज़रूर सबके थ्रू इस्तेमाल करिए ताकि अपन एग्ज़ाम अच्छी तरह से पास हुई बा। और हाँ, एग्ज़ाम में गोगे नहीं करिए, नकल नहीं करिए, सबको अपन अपन पापी में काम करिए। गोगे कर बट तो डिसक्वालीफाई हो जाइबा, जाने रहा कि नहीं, सब कोई जाने रहा। तभी चल रही गीत सुनब जब कुणाल हीरलाल गेर है वह नच दे नच दे। सब अध्यापक और स्टूडेंट्स दोस्तों खातिर अभी ढेर लेकर लोग रात के विजय कराता, साथ में अपन ईयरफोन डाल के अपनी के सुना था वन सा, और ढेर कोई अपन मोबाइल फ़ोन पर सुना था, देखो टीएनटी पर, ढेर कोई राजो पर, ढेर कोई लैपटॉप पर, तो जो भी जरिया से तो लोग हमने के सुना था और हमने की आवाज़ के अपन घर में स्वागत करा था। तो गीत तो लोग के नाम कुणाल हीरलाल गेर है वह नच दे नच दे। गीत चरावती से खास खास निशान सिंह चुबाक के नाम अब्रहलन थोबचिक कर पत्नी कर बेटी दामाद और उमा जगनायक टूरिस का ये रहलन कर बेटी दृष्टि दामाद बहादुर और सब बहादुर परिवार के नाम नच दे नच दे।

बड़ आदमी लोग हमेशा हमने के प्रोत्साहित करे अच्छा काम करे के और हमियों के भी कर्तव्य लड़का लोग के सिखाए के नौजवानों के सिखाए के कि हमेशा अच्छा काम करिए। हाँ, और अच्छा काम करबे तो अच्छा फल मिलेगा। कोई की दिल नहीं दुखाए के, कोई की निरादर नहीं करे के, कोई की डिसरेस्पेक्ट नहीं करे के, सबको के समान रूप से प्यार मोहब्बत दे के प्यार खुशी बांटती रहेगी। और जब जेबा कोई की रानी वैसे में तो दिल से बधाई दिया, शादी में गलवा फ्यौसाए में गलवा तब बधाई दिया, बोलिए बधाई हो बधाई कंग्रेचुलेशन। और जैसे कोई के ड्राइविंग लाइसेंस है तब बोले ओ इट्स आई एम सो हैप्पी फॉर यू है कंग्रेचुलेशन कि तो ड्राइविंग लाइसेंस मिल गए। जब कोई की शादी होला तब बधाई, फिर जब मंगनी होला तब भी फिर भी बधाई, शादी की सालगिरह ओकर में भी बधाई, बधाई हो बधाई। और खास कर कोनो भी खास मौका रहेला तो चेहरा बोले कि बधाई हो बधाई। तो जैसा कोई की शादी की सालगिरह आज और जैसा कोई की शादी होल बा आज या जैसा कोई की जन्मदिन होल बा आज या कोई खास मौका वो खास इंसान आल बा आजकल तोहर लगे तो तलो खातिर बधाई हो बधाई। ललिता गंजाधर की तो गैली हवन और की तो सीमा और सूरज खातिर और साथ में महाराणा प्रताप लीन थो बिर्श के सब हर को परिवार के नाम सबका कथिया परिवार के नाम जोन थियोले रहन और सब जिराखन परिवार के लिए जोन थियोले हवन जा। और हमने के साथ देवत हवन बहुत बहुत प्यार के साथ। और जितना कोई बोला था कि आज हमारे जन्मदिन में कोई हंक नहीं बोला हैप्पी बर्थडे तो हम नहीं बोला था इधर तो लोग के हैप्पी बर्थडे ढेर मारा प्यार जुग जुग जियो और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बधाई हो बधाई।

हई तक संगे भोजपुरी तरह का प्रोग्राम यहीं पर ही समाप्त होता है। कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनट में रात के 11 बज जाए थे। 11 बजे सुन बजे अगला प्रोग्राम सुनहरी पल और रात के 12 बजे से खड़ा फजर के 6 बजे सुन बजे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तरह की मुलाकात यहीं तक, हमने की तरह की मुलाकात हुई कल लेंदी के रात के 9 बजे से 11 बजे यही चैनल पर रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर। और कल हमने टिकटॉक पेज पर भी नजर आवाब जाता, हमने की सक बजा का रात के देखे 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मॉरिशस के टिकटॉक पेज पर और सक बजा सुने रेडियो मनोरंजन रेडियो मॉरिशस पर रात के 9 से 11 बजे ले भोजपुरी तड़का प्रोग्राम में। तक रात तक हमने की इजाजत दे, हमने के सुनना जा, हमने के SMS कर जा, फोन कर जा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने की आवाज़ के अपन घर में स्वागत कर ला जा, शुक्रिया करम मेहरबानी। तक रात तक लेंदी के रात तक हमने की इजाज़त दर और जय प्रताप सिंह सितालू की ओर से सबको की प्यार भरी नमस्ते और सलाम, लव यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते, बाय बाय, शुभ रात्रि।

मसाला पीसे के कर हो मामा के कंच पकाए मच्छी के खाई हो मामा के खाई हो पापा।

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: सुनहरे पल कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए समस्त श्रोताओं को नीतुषा का करजोड़ प्रणाम। एक बार फिर रेडियो मॉरिशस पर आप सभी का हार्दिक अभिवादन, स्वागत है श्रोताओं। आइए आज हम आपको एक ऐसे कलाकार की दुनिया में ले जा रहे हैं। वैसे जब दुनिया की बात चल रही है तो हिंदी सिनेमा की दुनिया में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी अदाकारी के दम पर एक अलग पहचान बनाई है। उन्हीं में से एक थे जीवन, याद आया? कितने विलेनस रोल्स उन्होंने निभाए थे, उनके बारे में आज हम और जानेंगे। साथ निभाते रहिएगा।

जीवन। उनका असली नाम ओमकार नाथ धर था। उनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। बचपन से ही उनके मन में फिल्मों के प्रति गहरा लगाव था। सपनों को पूरा करने के लिए वे मुंबई आ गए और संघर्ष के कठिन दौर से गुजरते हुए फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई।

जीवन ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत छोटी छोटी भूमिकाओं से की, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रतिभा को पहचान मिलने लगी। उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक यानी कि विलेन के रूप में ऐसे यादगार किरदार निभाए कि दर्शक उन्हें देखते ही पहचान जाते थे। उनकी तीखी नजरें, उनका अनोखा अंदाज और प्रभावशाली डायलॉग डिलीवरी उन्हें अन्य कलाकारों से अलग बनाती थी। उनका विलेन रोल कभी सिर्फ डराता नहीं था, बल्कि अपनी अदाकारी से कहानी में जान भी डाल देता था।

जीवन की सबसे खास बात ये थी कि वे सिर्फ विलेन तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने धार्मिक फिल्मों में नारद मुनि का किरदार इतनी बार और इतनी खूबसूरती से भी निभाया कि लोग उन्हें असल जिंदगी में भी नारद मुनि के रूप में याद करने लगे। उनकी मुस्कान, उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व नारद मुनि के चरित्र के साथ इतना घुल मिल गया था कि वे इस भूमिका के पर्याय बन गए। आज भी जब पुरानी धार्मिक फिल्मों की बात होती है तो जीवन का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है।

वैसे अपने लंबे करियर में जीवन ने सौवों फिल्मों में काम किया और हर किरदार को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाया। वे उन कलाकारों में से थे जो किसी भी भूमिका को अपनी अदाकारी से यादगार बना देते थे, चाहे निगेटिव रोल हो, कैरेक्टर रोल हो या धार्मिक किरदार। जीवन हर जगह अपनी अलग छाप छोड़ने में सफल रहे।

श्रोताओं, अभी जो जो गाने आप सुन रहे हैं इन फिल्मों में जीवन नजर आए। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी छवि एक अनुशासित, विनम्र और समर्पित कलाकार की थी। उनके साथ काम करने वाले कलाकार उनके प्रोफेशनलिज्म और सरल स्वभाव की बहुत प्रशंसा करते थे। उन्होंने उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ काम किया और अपनी प्रतिभा के बल पर दर्शकों का प्यार भी जीता।

18 जून 1987 को जीवन इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी फिल्में और उनके किरदार आज भी जिंदा हैं। उन्होंने हिंदी सिनेमा को जो योगदान दिया उसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। विलेन के रूप में उनका प्रभाव, नारद मुनि के रूप में उनकी लोकप्रियता और एक कलाकार के रूप में उनकी समर्पण भावना उन्हें बॉलीवुड के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाती है।

हमें ये सिखा गए कि सफलता सिर्फ मुख्य नायक यानी कि मेन हीरो लीड हीरो बनने में नहीं बल्कि हर किरदार को पूरी शिद्दत और ईमानदारी से निभाने में कलाकारों में शामिल है। उनका नाम हिंदी सिनेमा के उन अमर कलाकारों में शामिल है जिनकी कला और विरासत आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती रहेगी। उनकी याद और उनकी अदाकारी सदा अमर रहेगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।